ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 55 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने को हैं समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के

0: अंकों के स्थापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन। आज सोमवार है और आज की आराधना शिव आराधना के साथ।

भल पर चंद्र से सुशोभित, जटाओं में गंगा का वास। आम समाज से निकृष्ट, सभी को सम्मान प्रेम देने वाले, स्वयं में समाहित किए भोलेनाथ, इतने सरल हैं कि यदि सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए तो वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी आराधना स्तुति के लिए आवश्यक है मन के भाव, सच्ची लगन, सच्ची आराधना और मन से राग द्वेष का तिरस्कार। जिस मनुष्य ने

इस भाव इस धारणा के साथ भगवान शिव की स्तुति कर ली। भगवान शिव उस पर अति प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जीवन में सुगमता स्वतः चली आती है।

0: शिव शंभु तुम्हारी जय जयकार। कार्यक्रम आराधना का शीश भाग लेकर अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: ईश्वर की लीलाएं, उनका जीवन, उनका आचार व्यवहार, ये सब मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही सकारात्मक सोच लेकर के आते हैं। ये मनुष्य में सकारात्मकता भरते हैं, जीवन को मर्यादित करते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को समझाते हैं। जिस मनुष्य ने इस गूढ़ रहस्य को समझ लिया, वो इस भवसागर की माया से पार पा लेता है। प्रभु महादेव ने भी समाज में सृष्टि की अनुपम संरचना प्रस्तुत की है। उन्होंने सृष्टि का प्रतिबिंब दिखाया है अर्धनारीश्वर रूप लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सृष्टि इन्हीं दोनों पर प्रमुखता से आधारित है। उन्होंने अपना आधा शरीर दिया माता पार्वती को और आधे शरीर में स्वयं रहे, जो इस बात

का सूचक है किस सृष्टि में हर जीव महत्वपूर्ण है और हर किसी का महत्वपूर्ण स्थान है। हर जीव सम्मान पाने का अधिकारी है और हर जीव को समान रूप से अपना जीवन जीने का अधिकार है। आइए सुनते हैं शिव पार्वती स्तुति।

ईश्वर हमें सद्बुद्धि दें, हमें सन्मार्ग पर लेकर चलें, हमारा कल्याण करें। इसी कामना के साथ आज की आराधना से अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए राम प्रसाद विस्मिल के विचार।
1: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। इन ओजस्वी पंक्तियों के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक भावना का नाम है। देश के लिए बलिदान हो जाने की भावना, देश को निजी स्वार्थों से ऊपर रखने की भावना। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी के सार तत्व को पूरे सम्मान के साथ, पूरी आस्था के साथ स्वीकार करने की भावना। देश प्रेम उनकी सांसों में बसा था, उनकी रग रग में कूट कूट कर भरा था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयास और अनगिनत बलिदान होते हैं, तब कहीं वो स्वाधीन हो पाती है, स्वाधीन रह पाती है। भारत माता को स्वाधीन करने का संकल्प तो सभी देश प्रेमियों में था, किंतु उनके रास्ते अलग अलग थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित उनके निष्ठावान अनुयायियों ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और समान रूप से असहाय मानी जाने वाली जनता के संकल्प को ही एक अमोघ और शक्तिशाली अस्त्र के रूप में बदल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने देश के प्रति समर्पित सैन्य शक्ति जुटाकर भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियां काट देनी चाहिए। अनेक ऐसे भी थे जो क्रांतिकारी उपायों से उन लोगों को निर्बल करने में विश्वास रखते थे जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था, जैसा शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल आदि अनगिनत बलिदानी क्रांतिकारियों ने किया। बस जैसे भी हो, देश को आज़ाद कराना है, यही उनका लक्ष्य और संकल्प था। ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और बहुत दूर तक चलता चला जाता है। देश ही उनकी पूजा था, उनकी आस्था था, उनका विश्वास था। ये पूजा कोई मंदिर में जाकर करे या मस्जिद में, गुरुद्वारे में करे या गिरजाघर में, इसकी गहराई में कोई अंतर नहीं पड़ता।

0: अंतर डालते हैं वे जो निहित स्वार्थ को देश के हित से ऊपर मानकर चलते हैं, जो ये कहते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। उन्हें किसका डर, अपने लिए तो उनकी कोई कामना ही नहीं है, जो कुछ है सब मातृभूमि पर न्यौछावर है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म तो उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के एक गांव में हुआ, किंतु लालन पालन शाहजहांपुर में हुआ, जहां उनके पिता पंडित मुरलीधर बाद में जाकर रहने लगे थे। बिस्मिल दसवीं कक्षा में थे तभी गेंदालाल दीक्षित की अध्यक्षता में उन्होंने क्रांतिकारी जीवन का श्री गणेश किया। मातृभूमि की मुक्ति के दीवानों के लिए संघर्षों और यातनाओं का मार्ग प्रशस्त था। कई बार उन्हें मृत्यु से साक्षात्कार करना पड़ा, कितनी ही बार पैसा न होने के कारण घास पात खाकर गुजारा करना पड़ा, किंतु वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। आगरा, राजस्थान, नेपाल, जाने कहां कहां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भटकते रहे। संध्या के समय 8 नवंबर की एक रेलगाड़ी हरदोई से लखनऊ जा रही थी। एकाएक काकोरी और आलमनगर के बीच गाड़ी एक खंभे के पास खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने पुकार कर मुसाफिरों से कह दिया कि वे केवल सरकारी खजाना लूटने ही आए हैं, किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का उनका इरादा नहीं है। इसके बाद गार्ड से चाबी लेकर तिजोरी बाहर निकाली गई और लगभग 1.5 घंटे में लूट की धनराशि लेकर क्रांतिकारी वहां से चले गए। 25 सितंबर से गिरफ्तारियां शुरू हो गई और रामप्रसाद बिस्मिल भी पकड़े गए। उन्हें फांसी की सजा हुई और दिसंबर 1927 में गोरखपुर में इस आज़ादी के दीवाने को फांसी पर लटका दिया गया। अंतिम समय मातृभूमि से विदा लेते हुए उन्होंने कहा था, दिल फिदा करते हैं कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, खाने वीरान कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं।
1: अभी आप रामप्रसाद बिस्मिल के विचार सुन रहे थे। अब आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक बातचीत जिसका विषय है धान की नर्सरी की तैयारी। डॉक्टर प्रेमचंद से बातचीत कर रही हैं श्वेता श्रीवास्तव। लीजिए सुनिए।
1: किसान भैया, देखा अपने कार्यक्रम में समय समय पर खेती किसानी के नवाचार होते हैं, नवा नवा तरीका के हमारे विशेषज्ञ भैया लोग आवत हैं और अपन जानकारी देते हैं। ऐसे जानकारी देवे के बारे आज अपने कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेमचंद जी। आप कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज प्रयागराज के सह प्राध्यापक हैं, जौन बताइए हैं कि धान की नर्सरी कैसे तैयार की जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत बा हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानने चाहब कि धान की नर्सरी कैसे तैयार की जाते हैं, हमें सबसे पहले का करे के चाहिए।
2: सबसे पहले किया जाता है बीज का चयन करना चाहिए किसान भाइयों को। बीज का चयन करते समय चाहिए कि जो बीज लें उसकी अच्छी गुणवत्ता का हो और उनकी अंकुरण क्षमता अच्छी हो, और दूसरे नंबर पे इनको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, बीज शुद्ध हो और स्वस्थ हो।
1: तो कैसे कैसे बीज हो, जैसे बाजार में कौन तरह के बीज होते हैं कि जैसे अच्छे धान के फसल हो सके, ओकरे बारे में हमारे किसान भैया लोगों के थोड़ा बता दें कि।
2: हाँ, तो इसके लिए किसानों को क्या करना है कि या तो जहाँ से बीज खरीदें तो सरकारी संस्था हो, प्रमाणित
1: हाँ,
2: बीज मिले।
1: हाँ,
2: और साथ ही साथ इसमें ये ध्यान रखें कि प्रमाणीकरण बीज लें और अपनी स्थानीय प्रजातियां जो धान की हैं उनको वरीयता दें।
1: अच्छा,
2: ऐसा इसलिए कह रहे हैं
1: हाँ,
2: कि आप बाद में इनका उत्पादन होता है मार्केट में बेचने में प्रॉब्लम होती है।
1: अच्छा,
2: हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें किसान
1: मतलब
2: भाई।
1: कहे के कि वही बीज लें जौन के फसल होए के बाद आप

0: आपका बाजार में अच्छा दाम मिल
1: अच्छा दाम मिल
0: सके
1: जाए।
0: और ओकर देखभाल भी आप किसान भैया हर एक कर सकें। तो डॉक्टर साहब के कहे के मतलब है कि ऐसे बीज का चयन करें सर्वप्रथम धान के नर्सरी तैयार करें में। डॉक्टर साहब, बीज के चयन के साथ साथ बीजो उपचार होते हैं
1: हाँ,
0: ओकरे
1: जी
0: बारे में बतावें।
1: बता रहे हैं। तो आपको क्या है कि 1 एकड़ की नर्सरी जैसे तैयार करना है किसान को, तो उसमें 4 किलो बीज लगता है। इसके लिए बीज शोधन में क्या करते हैं कि बीज को 24 घंटे के लिए भिगा देते हैं। तो जब भिगा देते हैं पानी में, तो हल्का सा जर्मिनेशन आ जाता है। तो उसमें कार्बनडाइजम 50 की 10 से 12 ग्राम मात्रा मिलाते हैं, और उसको मिलाते समय ध्यान रखें कि बहुत हल्के हल्के हाथों से मिलाना है, ताकि उसका जो जर्मिनेशन अंकुरण हुआ है, अंकुरित दिख रहा है बीज, वो टूट ना जाए, जिससे आपकी क्षमता प्रभावित, जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा और सीडलिंग पूर्व में तैयार नहीं हो पाएगी। इसका ध्यान रखें।
0: किसान भैया हरे धान के नर्सरी लगावत है, ओमा बीजोपचार बहुत अच्छा तरीका है तैयार करे के पहले ओका भिगोए दे,
1: भिगो
0: बीज
1: दें,
0: का भिगोए
1: चौबीस
0: दे।
1: घंटे भीगा रहना चाहिए,
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: भीगे रहने के बाद देखें धान में तो हल्का सा जर्मिनेशन हो जाता है,
0: अच्छा
1: तो उसको दबा दें, रख दें,
0: हाँ हाँ
1: और फिर जब हल्के हल्के हाथों से कार्बन डाइऑक्साइड 500 की
0: हाँ
1: 10 से 12 ग्राम मात्रा लेकर के हल्के हल्के हाथों से मिलाना है उसको।
0: अच्छा,
1: हाँ, जिससे कि इसलिए
0: तो
1: ऐसा
0: एक जरूर हमारे किसान भैया हरे ध्यान दें।
1: जी
0: और कौन कौन बातों पे ध्यान दे सकते हैं किसान भैया जैसे नर्सरी तैयार करे के समय?
1: जी जी इसमें तो पहले देखना है कि जो बीज आप ले रहे हैं, तो बीज की सफाई हो प्रॉपर, जो अनच अनिच्छित पौधे हैं, जो दूसरी वैरायटी के, वो सब चीज़ें अलग हो, खरपतवार कुछ मिले हों, कुछ और चीज़ें मिली हों, उनको अलग कर देना चाहिए। और फिर इसके बीज का संरक्षण, इसके बीज जो आप बीज रखे हों, सूखे स्थान पर रखें और ठंडा रखें, ठंडी जगह में रखें, नॉर्मल जगह में।
0: अच्छा,
1: हाँ, इससे जर्मिनेशन होता है। और फिर बीज उपचार के लिए मैंने आपको बताया
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: और
0: कौन?
1: बीज प्रक्षेपण होता है। तो क्या होता है प्रक्षेपण में, कि बीज को भिगा दिया जाता है।
0: अच्छा
1: भिगाने से क्या होता है कि इसकी जो अंकुरण क्षमता है वो अधिक हो जाती है। नर्सरी का बेड बनाना,
0: अच्छा
1: हाँ, नर्सरी धान की नर्सरी पहले तैयार की जाती है, तो
0: हाँ
1: नर्सरी बना करने के लिए इसमें है कि 1 एकड़ के लिए, इसके बाद क्या है कि नर्सरी में 1 एकड़ के लिए 25 बाई 25, 25 फुट लंबा, 25 फीट चौड़ा एक प्लाट बना करना चाहिए। उसको गुड़ाई करके और उस पे 100 किलो गोबर की खाद और 3 किलो DAP मिला देने चाहिए। इसको अच्छे से मिला देना चाहिए, और साथ ही इसमें खरपतवार होते हैं, जैसे मौथा है, दूब है, तो इनको उसी समय अलग कर देना चाहिए।
0: अच्छा
1: हाँ, अलग करके खरपतवार रहित 25 बाई 25 तैयार हो जाए सीडलिंग के लिए। तो आप जब भिगा देंगे, फिर उसमें पानी भर देंगे, जुताई कर देंगे, और पटेला लगा के समतल कर देंगे। समतल इसलिए करते हैं कि पानी का भाव एक ही तरफ रहे, और फिर इसके बाद इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है।
0: हमका लागत है कि सबसे पहले जरूरी होते माटी के जांच,
1: जी
0: ओकरे बारे में कुछ हमारे किसान भैया के बतावे कि माटी के जांच कैसे कराए जा सके थे, कब कराए जा
1: जी
0: सके
1: हाँ,
0: थे?
1: माटी की जांच, मिट्टी की जांच कराने के लिए आपके हर जगह क्षेत्र में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जहाँ से आप अपने खेत का नमूना लेके वहाँ लैब में जाके, वहाँ क्षेत्रीय लैब में जाके जमा कर दें, वहाँ से आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, और वहाँ से वैज्ञानिक अनुशंसा कर देंगे, आप इतनी इतनी मात्रा में फर्टिलाइजर आपको रिकमेंड कर देंगे,
0: और उसी हिसाब से
1: उसी
0: खाद
1: हिसाब से आप खाद
0: के,
1: डालें, जिससे अच्छा उत्पादन मिलेगा।
0: बिल्कुल सही बताएं कि ये देखा किसान भैया रे कौनो फसल होए और खास करके धान के फसल में। डॉक्टर साहब, धान के फसल में सबसे ज्यादा जरूरी होते पानी,
1: जी
0: ये जो सिंचाई होते, जो निकासी के व्यवस्था होते, ओकरे बारे में कुछ बतावें।
1: हाँ, ये है कि पानी की समय समय पे निकासी होती रहे, और समय से जो जमीन है वो गीली रहनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगे पानी सूखी रही है, तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और पानी बहुत जलभराव नहीं होना चाहिए, नहीं पौधे खराब हो जाते हैं, सीडलिंग का समय है इसलिए पौधों। और अब कहीं पानी निकासी ऐसी व्यवस्था ना हो, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, मैन्योर डाल रहे हैं, जो भी चीज़ डाली गई है वो बह के दूसरे खेतों में चली जाएगी, इसलिए निकास की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, और कम से कम इतना पानी डाला जाए कि निकासी की समस्या नहीं ना आए।
0: अच्छा, सिंचाई होते धान में वो कब करे के चाहिए, सवेरे के समय या संध्या के समय?
1: हाँ, सिंचाई का समय उपयुक्त समय है सुबह है और शाम को, दोपहर में नहीं करना चाहिए, इसलिए कि टेम्परेचर अधिक होता है तो पौधे को नुकसान होता है।
0: नुकसान हो
1: जी
0: सकते थे। तो
1: हाँ
0: देखा अपन फसल जितनी अच्छी हो, हमारे किसान भैया के आमदनी उतनी अच्छी हो, और चूंकि हमारे दर हम सब अपने क्षेत्र की बात करें तो ओमा धान के फसल महत्वपूर्ण फसल है,
1: महत्वपूर्ण फसल है।
0: ओकरे बारे कौन कौन देखभाल करे के जरूरत पड़े थे, रख रखाव के ओकरे बारे में बतावें।
1: देखिए, पानी देना, खाद देना
0: जी
1: और निगरानी एवं रखरखाव करना, इसमें क्या होता है, नियमित निगरानी करें आप, उसको देखते रहें कि कब खरपतवार है, कौन सा खरपतवार

0: आया है कि आघात है, इसको आप निकलवाते रहें। और दूसरा कि जो फसल पे लगने वाले कीट हैं, यदि आपने देखा है फसल पे कि कहीं कीट लग रहा है, तो उसके नियंत्रण के लिए प्रॉपर दवाइयों का छिड़काव करें।
1: डॉक्टर साहब, दवाओं के छिड़काव से तात्पर्य है कि कौन कौन तरह के छिड़काव किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे किसान भैया रह के जरूर बतावें, जैसे कि कीटनाशक का उपयोग कर सके, सही
0: हाँ,
1: कीटनाशक।
0: कीटनाशक में दो तरह है, आपको या स्प्रे में छिड़का दें या डस्ट में, धूल में आते हैं, तो जैसे भी आपके बाजार में उपलब्धता हो उस हिसाब से ले लीजिए और उसे छिड़काव कर दीजिए आप।
1: अच्छा, मतलब है कि देखा किसान भैया, पानी के व्यवस्था उचित रखें, ओके, निकासी की व्यवस्था उचित रखें, और साथ ही साथ एक बात के ध्यान जरूर देवें कि समय समय पर कीटनाशक दवाएं करें, और जो खर पतवार हो जाते ओकरे निकालने की जरूरत पड़त है कि कैसे हमार फसल जौन है वो सही रहे, ओमे कौनो तरह का कीट पतंगा ना लागे।
0: ना लगे
1: एक और साथ ही साथ डॉक्टर साहब, जौन रुपाई के समय होते तो कब होते, ओकरे बारे में भी बता दीजिए।
0: रोपाई का समय, इस समय ये आप खरीफ चल आने वाली है,

0: और जो खर पतवार हो जाते ओकरा निकालवे के जरूरत पड़त है कि कैसे हमार फसल जौन है वो सही रहे, ओमे कोनो तरह का कीट पतंगा ना लागे,
1: ना लागे।
0: एक और साथ ही साथ डॉक्टर साहब जौन रोपाई के समय होते तो कब होते ओकरे बारे में भी बताए।
1: रोपाई का समय इस समय ये आप खरीफ चल आने वाली है, इस समय आप नर्सरी तैयार करेंगे तो आपकी नर्सरी 20 से 21 दिन में तैयार हो जाएगी ट्रांसप्लांटेशन के लिए।
0: हाँ,
1: खेत में।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: मतलब जब हमारे किसान भैया लोग नर्सरी तैयार कर लेंगे हैं उसे 20 से 21 दिन में रोपाई कर सके, तो रोपाई का उचित समय यह है कि नर्सरी तैयार करें बीजोपचार के 20 से 21 दिन में आप सभी रोपाई कर सके थे से अच्छी फसल हम सभी के प्राप्त कर सके थे। डॉक्टर साहब हमारे किसान भैया अगर और कोनो ऐसे सुझाव देवे चाहें जिससे उनके धान के फसल अच्छी हो सके।
1: कि जब आप ट्रांसप्लांटर करें तो पौध से पौध की दूरी, पौध से पौध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी आप 20 से 25 सेंटीमीटर रखें कि धान की फसल में किल्ले निकलते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो जब अधिक जगह रहेगी तभी ज़्यादा किल्ले निकलेंगे, जब ज़्यादा किल्ले निकलेंगे तो पेड़ चौड़ा होगा और ट्रिलिंग अधिक होगी तो कई बालियाँ आएंगी।
0: अच्छा।
1: तो जब बालियाँ आएंगी तो ग्रेन्स अधिक मिलेंगे, दाने अधिक मिलेंगे, उत्पादन अधिक होगा, उससे किसान को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।
0: उन बातों का ध्यान रखत भाई ध्यान के नर्सरी करें। अच्छा डॉक्टर साहब आप बहुत बढ़िया जानकारी दिए हैं हमारे किसान भैया हरे के, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धान की नर्सरी की तैयारी। किसान भाइयों, अभी आप डॉक्टर प्रेमचंद से श्वेता श्रीवास्तव की ये बातचीत सुन रहे थे। अब आज का कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर वारिदमाला जैन की वार्ता, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग एवं उनसे बचाओ।
1: आयोडीन हमारे शरीर का जरूरी पोषक तत्व है जो कि थायराइड हार्मोन बनाने में प्रयुक्त होता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर को कुछ क्रियाओं जैसे विकास के लिए आवश्यक होता है। वयस्क मानव शरीर में 8 से 12 माइक्रोग्राम पर डीएल आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। आयोडीन हमें दूध, बीन्स, बेरीज, हरी सब्जियां, अनाज, मीट, समुद्री खाने, समुद्री नमक, कॉर्न, आलू इत्यादि में मिलता है। 90% आयोडीन खाने से व 10% पानी से मिलती है, लेकिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी, पानी वगैरह में आयोडीन समान रूप से नहीं मिलती। ऐसी जगहों पर जो फसलें उगाई जाती हैं, उनमें आयोडीन की कमी होती है। जैसे भारत में हिमालय के क्षेत्र गंगा के मैदानी भाग को गोइटर बेल्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन बाद में कुछ शोध से पता चला कि MP, गुजरात और दक्षिण के राज्यों समेत लगभग भारत के ज्यादातर हिस्सों में आयोडीन की कमी है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके लगातार सेवन से थायराइड ग्लैंड आयोडीन को कम यूटिलाइज करती है, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी वगैरह। सामान्यतया आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को लोग गोइटर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं होता। इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जिसे हम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। थायराइड हार्मोन गर्भस्थ बच्चे के विकास के लिए जरूरी होता है। यदि माँ को आयोडीन की कमी है तो बच्चे को एंडेमिक क्रिटिनिज्म यानी बौनापन हो सकता है। जन्म के पहले वह जन्म के 2 साल बाद तक मस्तिष्क का विकास होता है, जिसके लिए थायराइड हार्मोन जरूरी है, और माँ व बच्चे में इसकी कमी से उसका बेन क्षतिग्रस्त हो सकता है। इन बच्चों को नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म, न्यूरोमस्कुलर एवं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी हाथ पैरों में कड़ापन या स्पास्टिसिटी, डायप्लीजिया, क्वाड्रीप्लीजिया इत्यादि हो सकता है। यदि माँ को आयोडीन की अत्यधिक कमी हो तो बच्चे को कई अन्य जन्मजात बीमारियां हो सकती हैं। उसका बच्चा मरा भी पैदा हो सकता है या गर्भपात भी हो सकता है। इसके अलावा

0: पैदा होने वाले बच्चे में मानसिक मंदता, सुनने व बोलने की परेशानी आदि हो सकती है। बड़ों में आयोडीन की कमी होने से गॉइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है एवं ब्रेन के काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वयस्कों में आयोडीन की दैनिक जरूरत 150 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की होती है। आयोडीन से संबंधित बीमारियों एवं समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है नमक का आयोडाइजेशन। इसका फायदा यह है कि हर घर में पूरे साल नमक प्रयुक्त होता है, चाहे किसी भी धर्म, जाति या सामाजिक स्तर का हो, लेकिन ये सही तरीके से होना चाहिए। इसके लिए नमक का आयोडाइजेशन केवल कुछ ऑथेंटिक केंद्रों पर कंट्रोल्ड कंडीशन में ही होना चाहिए। इसकी मात्रा उत्पादन के स्तर पर 30 ppm और घर में उपयोग के स्तर पर 15 ppm से कम नहीं होनी चाहिए। फोर्टिफिकेशन का एक और तरीका है आयोडाइज्ड ऑयल। इसका एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो एक इंजेक्शन 4 साल तक के लिए प्रभावी होता है। लेकिन इसके साथ बड़ी समस्या यह है कि समाज के हर व्यक्ति को मिलना और हर 4 साल में मिलना लगभग असंभव है। अतः सबसे सही तरीका आयोडाइज सॉल्ट का प्रयोग ही है। आजकल कुछ लोग बीपी के डर से अन्य नमक का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन ये गलत फहमी है कि नॉर्मल सॉल्ट से बीपी बढ़ता है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दरअसल ज्यादा नमक, जैसे अचार, पापड़, सलाद आदि में खाने से और ऊपर से नमक लेने में, कम शारीरिक श्रम की वजह से, पसीना कम आने से एवं अन्य कई कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए एक्स्ट्रा नमक ना खाएं, कम नमक खाएं, शरीर से काम करें पर आयोडाइज्ड नमक ही खाएं और स्वस्थ रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वारिदमाला जैन की वार्ता, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग एवं उनसे बचाओ। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:52 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30। इसके अंतर्गत डॉक्टर जूही बेगम से मकाला सुनिएगा मिर्जा हादी रुसवा नावेल उमराव जान अदा के आईने में, और कला में शायर होंगे आफताब अहमद अंसारी। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:00 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शहनाई और बांसुरी का युगल वादन सुनिएगा। सुबह 7:30 शहनाई पर होंगे पंडित अनंत लाल और बांसुरी पर पंडित भोलानाथ। दिन में 12:15 पंडित अनंत लाल का शहनाई वादन होगा और रात 10:30 सुनिएगा पंडित उमाशंकर का सितार वादन। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में ऋचा सक्सेना के स्वर में भजन गीत का आनंद लीजिएगा। सुबह 9:50 पर शाम 7:45 पर संगीता भारद्वाज के गाए भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। वॉयस ऑफ प्रयागराज हमारा ये कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 10:05 पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 10:30। कलाकार होंगे प्रेमचंद, संगीता राय, प्रेमशंकर पांडे और साथी। एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11:00। अपने फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी दिन में 1:15 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 2:30। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे शाम 5:00। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 युवजन सुनेंगे वार्ता

0: पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई सुनेंगे लोक भाषा कविता पाठ। लोक कवि होंगे बरसाती अली, साथ ही कमलेश चंद्र यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमन्त्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+ पुनर्परीक्षा सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रिय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+5,000 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन द्वादश श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87% परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणित सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचनाः एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री

0: आहत्य निर्यात समवाये अमोनिया वायुः श्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति राष्ट्रिय आपद्मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान् फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ

काक भुशुंडी को अखंड भक्ति का वरदान देकर भगवान राम उन्हें अपनी माया से उत्पन्न जगत का रहस्य बताते हुए निज सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, एक ही पिता के अनेक पुत्र अलग अलग स्वभाव और चारित्रिक विशेषताएं लिए होते हैं। कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई वीर योद्धा तो कोई दानी होता है। पिता का प्रेम उन सबको समान रूप में प्राप्त होता है। निरा मूर्ख पुत्र भी पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय होता है। उसी प्रकार मेरा सेवक मुझे प्रिय होता है। अतः सब कुछ त्याग कर हे काक भुशुंडी, तू मेरा भजन कर। इस भांति तुम्हारी गति कालातीत होगी, समय का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु से अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त कर उनके श्रीमुख से निज सिद्धांत की व्याख्या सुनकर काक भुशुंडी का तन मन पुलकित हो गया।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। सुर थे सुरेश वाडकर और ए हरिहरन के, संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन। पहला भजन हमने लिया है फिल्म नरसी भगत से। जी एस नेपाली के बोलों को सुरों में पिरोया है रवि साहब ने। आवाजें हैं हेमंत कुमार, सुधा और साथियों की।

0: अभी आपने ये भजन सुना जिसे हमने लिया था फिल्म शागिर्द से। आवाज लता मंगेशकर की थी, रचना मजरूह की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ फिल्मों से भजन का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी नई और विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की इन योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

0: मंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट UG की पुनर्परीक्षा कल शाम शुचिता के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
2: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर स्टेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का ये सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर शासन से जारी निर्देश के अनुसार अब तक हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि

0: शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न, करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित, अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित अनंत लाल की शहनाई और पंडित भोलानाथ की बांसुरी का युगल वादन। राग है गुर्जरी तोड़ी।

अभी आप पंडित अनंत लाल की शहनाई और पंडित भोलानाथ की बांसुरी की युगलबंदी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अनुपम राय। लीजिए सुनिए इन्हीं कलाकारों की शहनाई और बांसुरी पर बजाई ये धुन।

अभी आप पंडित अनंतलाल की शहनाई और पंडित भोलानाथ की बांसुरी पर बजाइए युगल धुन सुन रहे थे। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता हो गए ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वही स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु

0: परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
1: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC NET जून 2000

0: Talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तहकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन उंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तिहानात का आगाज आज से कराएगी। अमरीका के नायब सदर जेडी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है। और मर्दों के हॉकी में FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसलाकुन उंसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: वजीर आजम ने यह राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस चिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोस शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: वजीर आजम मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अलाक्वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वजीर आजम ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कूनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहाँ इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कूनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया।

0: उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की, जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, मकामी जंगलाती अमले और सयाहों के गाइड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को सदर जमहूरिया ने कूनो में चीता कमान व कंट्रोल मरकज का दौरा किया था और चीता प्रोजेक्ट से मुतालिक एक नुमाइश देखी थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि भारत में फिलहाल 52 चीते हैं, जिनमें से 49 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं। तीनों चीतों को गांधी सागर जंगलाती तहफुजगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया को मवेशियों पर नजर रखने और उनकी ट्रैकिंग के निजाम के बारे में जानकारी दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीतों की बाजाबाद कारी का प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने यौम पैदाइश पर कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लाकर बसाया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से मजीद चीते लाए गए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली ब्रिक्स कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, जिसमें इस ब्लॉक के 11 रुकन मुल्कों के सलामती से मुतालिक सरबराहान शिरकत करेंगे। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, एथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: कॉन्फ्रेंस में सभी अरकान आज दुनिया को दरपेश सलामती के गैर रिवायती चैलेंजेस के मौजू पर तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही वो कौमी सलामती को दरपेश खतरात की नौइयत पर बातचीत करेंगे और सलामती के उभरते हुए खतरात में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वफूद साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल खतरात और मसनूई ज़हानत से पैदा होने वाले खतरात पर भी गौरखोज करेंगे। सभी रुकन ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर और वफद के सरबराहान इंफॉर्मेशन और मवासिलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप्स की हालिया मीटिंग के नतायज का जायजा भी लेंगे। भारत की सदारत का मरकजी मौजू लचक पजीरी, इख्तरा, बाहमी ताउन और पायदारी को फरोग देना है, जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आवाम पर मरकूज विजन की अक्कासी होती है, जिसे 2025 की रियो समिट में पेश किया गया था। चीन ने तस्दीक की है कि उसके वजीर खारजा वांग ई इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए आज से यूजीसी नेट 2026 का इम्तिहान शुरू कराएगी। कौमी सतह की एहलियत का टेस्ट हर रोज 2 शिफ्ट में इस माह की 30 तारीख तक कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी मोड में कराया जाएगा। यूजीसी नेट इम्तिहान उन उम्मीदवारों के लिए कराया जाएगा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन और पीएचडी कोर्सेज के दाखिले के लिए क्वालिफाई करने के ख्वाहिशमंद हैं। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करें और इम्तिहान की सभी तफसीलात के पूरे ध्यान से तस्दीक करें। उसने कहा है कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से पहले अपने इम्तिहान की तारीख, शिफ्ट, वक्त और इम्तिहान के मरकज के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मजीद ये कि पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुकर्ररा इम्तिहानात के मराकिस का पहले से दौरा करें ताकि मकाम और दस्तयाब सहूलियात से वाकफियत हासिल की जा सके। इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान का सवालनामा इफ्शा हुआ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा है कि नीट का इम्तिहान जामे सिक्योरिटी और निगरानी के तहत कामयाबी के साथ मुनक्किद कराया गया। उसने मजीद कहा कि तलबा के लिए इस तरह की गलत मालूमात जानबूझकर फैलाना एक संगीन जुर्म है। सीबीएसई ने 12वीं जमात से मुतालिक मामलात के तस्दीक नामे और दोबारा जांच के नतायज जारी करना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इन नतायज का ऐलान मरहलेवार किया जा रहा है, जिनमें से 87% से ज्यादा दरखास्तों के नतायज का ऐलान कल कर दिया गया। बकिया दरखास्तों के नतायज दीगर मरहलों में जाहिर कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि यह अमल जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। दरखास्त किस मरहले में है इसकी मालूमात results.digilocker.gov.in पर की जा सकती है। सीबीएसई ने तलबा को यकीन दिलाया है कि हर एक दरखास्त एक बड़े, शफाफ और करीबी नजर रखने वाले निज़ाम से गुजारी गई है। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अफवाहों,

0: या गैर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान न दें और वो सही मालूमात के लिए CBSE के सरकारी बयानात पर ही भरोसा करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2026 के पद्म इनामात सिविल अवार्ड की कल दूसरी तकरीब में अदा करेंगी। इस मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के हिस्से के तौर पर आपके लिए 15 खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: आप इस गुफ्तगू का आज और कल 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन ऑफिशियल YouTube पर भी सुन सकते हैं। 19वां मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल मिफ 2026 कल शाम एक शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मुंबई में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने गैर अफसानवी सिनेमा के लिए दुनिया में मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल को एक सबसे पुरवकार फेस्टिवल करार दिया। पोलैंड की दस्तावेजी फिल्म सिल्वर को बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरे में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए पुरवकार गोल्डन कॉन्च एजाज से नवाजा गया। एक रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इत्तलात और नशरियात की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी जनाब प्रभात और दीगर शख्सियात ने मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन फिल्मों को 18 एजाजात अता किए। बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरों में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए माया सॉन्ग को सिल्वर कॉन्च के एजाज से नवाजा गया, जबकि अंडर द स्नो को बेहतरीन मुख्तसर अफसानी फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च एजाज से नवाजा गया। कौमी मुकाबला जाती जुमरों में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च का एजाज आर्म स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अमंगलम कोविल स्ट्रीट को दिया गया, जबकि द लास्ट शेल्टर ने विकसित भारत वंदे मातरम के 150 साल भारत एट द रेट 2026 से मुतालिक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड हासिल किया। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमेरिका के नायब सदर जेरी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में खतरखा पेशरफ्त हुई है, जबकि स्विट्जरलैंड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के मामलों से निपटने के लिए भी सीनियर वफूद की बातचीत हुई। जेरी वांस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुजाकरातकारों के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान स्विट्जरलैंड के सियाहती मकाम बर्जन स्टॉक पर बंद कमरे में बातचीत शुरू की गई। मीटिंग से पहले नामलगारों से बात करते हुए जेरी वांस ने कहा कि मुजाकरात के सबब पहले ही हौसलाकुन नताइज बरामद हुए हैं। मुजाकरात के दौरान इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों समेत इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी गई। मर्दों की हॉकी में भारत ने कल FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हरा दिया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी बेहतरीन क्यादत और शानदार कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
6: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारतीय बहरिया में 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा 3 नए जंगी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल किए। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की, सलामती और खुशहाली सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। रोजनामा इनकलाब ने आलमी योम योग से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, आलमी योगा डे पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत दिगर पार्टियों के लीडरों ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी, योग ने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
0: और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन अंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा।

0: आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार प्रयागराज। आज के अंक के साथ मैं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र। श्रोताओं, आज तारीख है 22 जून और आज का दिन कैलेंडर पर दर्ज है विश्व वर्षावन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के नाम से। अमेजन के जंगलों के बारे में तो आप सबने सुना होगा ना। हालांकि अमेजन के ये जंगल तो ब्राजील में हैं, पर वर्षावन का प्रयागराज से क्या संबंध? संबंध है श्रोताओं, बहुत गहरा नाता है। धरती लगभग गोल है, हवा सब जगह एक है। अमेजन में जो पेड़ सांस लेता है उसकी छोड़ी हुई ऑक्सीजन आपके हमारे प्रयागराज तक भी आती है, क्योंकि हवा को किसी सरहद की बंदिश नहीं है। फिलहाल पहले समझते हैं कि हमारा आज का विषय ये वर्षावन है क्या, जहां साल भर बारिश हो, जहां पेड़ों का घनापन धूप को जमीन तक पहुंचने ना दे। इतने घने पेड़ हों, वही हैं वर्षावन। दुनिया में मात्र 6% जमीन पर हैं ये वर्षावन, मगर कमाल ये है कि दुनिया के 50% से ज्यादा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे इन्हीं वर्षावनों में रहते हैं। एक अकेला वर्षावन मात्र 20 मिनट में इतनी ऑक्सीजन बना देता है कि पूरा प्रयागराज शहर एक दिन सांस ले सके। ये बादल बनाते हैं, मानसून खींचते हैं। वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि अगर अमेजन ना हो तो भारत में बारिश 20% तक कम हो जाएगी। सोचिए फिर हमारा क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा, मानव का क्या होगा, इस सृष्टि का क्या होगा। पर दोस्तों, खबर यह है कि हर मिनट में फुटबॉल के 40 मैदान के बराबर जंगल साफ हो रहे हैं, यानी कि काटे जा रहे हैं। पिछले 50 सालों में दुनिया में लगभग 17% वर्षावन खत्म हो गए हैं, हमने उन्हें खो दिया है, काट डाला है। कारण क्या है? खेती बाड़ी के लिए जमीन बनाना, लकड़ी के लिए खनन और शहरीकरण। जब हम जंगल काटते हैं ना, तो सिर्फ पेड़ नहीं मरते हैं, बाघ, हाथी, हजारों चिड़ियां बेघर होती हैं, कार्बन हवा में घुलती है, गर्मी बढ़ती है। आपने देखा होगा प्रयागराज में भी जून की गर्मी हर साल नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं हमारे इन्हीं वर्षावनों से। आज इतनी गर्मी में हम बार बार आसमान की ओर देख रहे हैं, बादल आ रहे हैं, ये बादल कब बरसेंगे? लेकिन जब मानसून को खींचने वाले, बारिश कराने वाले ये वर्षावन नहीं होंगे, तो ऐसे ही बादल उमड़ घुमड़ कर आएंगे, चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन बारिश कम होती जाएगी। अब बात अगर हम अपने शहर की करें, अपने प्रयागराज की करें, तो यहां भले ही अमेजन ना हो, पर हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे पार्क हैं, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जो सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं, जहां पर कंपनी बाग, भरद्वाज आश्रम, मिंटो पार्क, ये सब जगह ऐसे हैं जहां पर आज भी पेड़ ज्यादा मात्रा में हैं और

ये हमारे शहर के वर्षावन हैं। यमुना किनारे बबूल और नीम के पेड़, ये हमारे शहरी वर्षावन हैं। हमारे यहां कुंभ मेला लगता है, इतने सारे लोग आते हैं, इतने लोगों को साफ हवा, छांव, ठंडक कौन देता है? यही पेड़ देते हैं। संगम पर जो ठंडी हवा चलती है उसका क्रेडिट गंगा यमुना के साथ साथ इन पेड़ों को भी जाता है। तो आज हम मना रहे हैं विश्व वर्षावन दिवस। इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? हमारे पुरखों ने, हमारी प्रकृति ने कितनी बड़ी प्राकृतिक संपदा हमें दी थी, जिसमें हमें पर्याप्त मात्रा में बारिश थी, पेड़ पौधे थे, छांव थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। लेकिन आज हम धीरे धीरे इनको काट करके, इनको नष्ट करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक भयानक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आवश्यकता है हम सब फिर से जागरूक हों, हम फिर से पेड़ लगाएं। एक पेड़ लगाएं जिनमें नीम हो, पीपल हो, आम, अमरूद, जो जगह मिले वहीं हम इन पेड़ों को, इन पौधों को रोप सकते हैं। कागज बचाना चाहिए, हमें कागज पर दोनों तरफ लिखना चाहिए, जो भी हमारे पास रद्दी कागज हो उसको रिसाइकल करने के लिए भेजना चाहिए। एक टन कागज बचाने से आप यकीन करेंगे 17 पेड़ बचते हैं। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, हमें इन्हें क्यों लगाना चाहिए। बच्चों को पार्क में ले जाना चाहिए, पेड़ों से मिलवाना चाहिए। जो आज पेड़ का दोस्त बनेगा वो कल धरती को बचाएगा। दोस्तों, हमारे आकाशवाणी का भी जो प्रमुख वाक्य है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके भले की बात। और पेड़ों से बड़ा भला कौन कर सकता है? वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे हमें जीवन देते हैं। तो आज जब अपने काम धाम से निवृत्त होकर आप घर लौटें, तो अपने गली के सबसे पुराने पेड़ के नीचे 2 मिनट खड़े हो जाइए, उसे थैंक यू बोलिए, और हाँ, कल से उसे रोज एक लोटा, एक मग पानी दीजिए। और जैसे ही बारिश शुरू हो जाए, जहां भी आपको मौका लगे वहां एक पौधा जरूर रोपिए। यही आज जो हम वर्षावन दिवस मना रहे हैं, इसको मनाने का जो हमारा उद्देश्य है, जो ध्येय है, तभी पूरा होगा जब हम जागरूक होंगे कि हम पेड़ पौधों को काटेंगे नहीं, कटने नहीं देंगे, नए पेड़ पौधे रोपेंगे और एक संतान की तरह नए पौधे को पालेंगे, पोषेंगे। श्रोताओं, वर्षावन के साथ साथ आज एक और भी खास दिन है। आज के दिन हम मनाते हैं विश्व ऊंट दिवस। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और आज भले ही हम डीजल पेट्रोल की वाहन दौड़ा रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारा सारा काम इन्हीं पशुओं के माध्यम से होता था। और आज भी तमाम ऐसी जगहें हैं जहां इनकी उपयोगिता उसी तरीके से बरकरार है, क्योंकि मनुष्य कितना भी विकास कर ले वो प्रकृति से आगे नहीं जा सकता, वो ऊपर वाले की संरचना से बेहतर रचना नहीं कर सकता। तो हम पेड़ पौधों के साथ अपने पशु पक्षियों की भी देखरेख करें, उनकी सुरक्षा करें। और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है कि हम अपने श्रोताओं के कुछ संदेश भी ले लें, जो सुविचार आप हमें भेजते हैं उन पर भी कुछ बातचीत हो जाए। तो सबसे पहला हमें जो संदेश मिला है वो है विष्णु टेलर जी का, और आपने दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हमें ये संदेश भेजा है। आपने लिखा है कि हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बीते हुए कल की चिंता छोड़िए, आज को बेहतर बनाने का संकल्प लीजिए। आपके साथ हैं रितिका मिस्तकीन जी, चंद्रकला जी, गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्तकीन, आरोही, प्रियांशी।

सोनी जी, बिल्कुल सही बात है। हम हर रात को जब सोएं तो ईश्वर का धन्यवाद करें और पुराने दिन हमने जो गलतियां की हैं उनसे हम सीख लें। नई सुबह नए दिन हम उन गलतियों को ना दोहराएं और फिर से एक नई शुरुआत करें, क्योंकि जब जंग है तो उसे लड़ना पड़ेगा और जो लड़ेगा नहीं वो भला जीतेगा कैसे। तो हमें हर सुबह नई ऊर्जा नई ताकत के साथ नए जोश के साथ अपने कर्मपथ पर निकलना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। नारायण लाल साहू जी हमें संदेश भेज रहे हैं और आपने हमें भेजा है माँ बलेश्वरी धाम सांकरा जिला राजनांदगांव से, और आपने लिखा है पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कर्म ही पूजा है। जी हाँ, आज हमारा जो विषय था उसी पर आपने लिखा है। आपके विचार हम सबको ज़रूर मानना और समझना चाहिए। नीरा त्रिपाठी जी ने कई संदेश हमें लिखे हैं, एक संदेश आपका ले लेते हैं कि समय दौड़ रहा है, जीवन सिमट रहा है, जान पहचान बढ़ रही है परंतु अपनापन घट रहा है। जी हाँ, एक दौर था जब लोगों का वक्त आपस में बातचीत करते गुजर जाता था और आजकल हम पास पास बैठे हुए भी अपने अपने मोबाइल में मस्त रहते हैं। जीवन का रस तो अपनेपन में ही है, वो खुशी किस काम की जिसे हम बांट ना सकें, और वो दर्द कैसा जिसे बांटने के लिए हमारे पास लोग ना हों। तो आप सबको संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसी प्लेटफॉर्म पर आप अपने सुझाव अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजिएगा। फिलहाल अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

नमस्कार प्रयागराज की आज के अंक के साथ मैं था आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र कुमार सिंह और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सुंदरम तिवारी। फिलहाल अब दीजिए अनुमति, नमस्कार प्रयागराज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म डर से। आवाजें हैं हरिहरन और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है शिव हरि ने।

लीजिए सुनिए उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है विजू शाह ने और फिल्म का नाम है गुप्त।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यह तभी संभव हुआ है जब आपने अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि अब फाजिलनगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा, हम इसकी मान्यता देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान शुरू होगी तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिले की अन्य विधानसभाओं में भी जनसभा करेंगे।
1: भगवान महावीर से नाम होगा, भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है।
0: इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। जनसभा को क्षेत्रीय सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन तथा अन्य स्थानीय विधायक गण ने संबोधित किया। बाद में कुशीनगर स्थित निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा युवाओं के लिए आधुनिक कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना तथा किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री एवं कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कुशीनगर में सांसद विजय दुबे एवं राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह व विधायक गण के साथ केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं सुशासन की उपलब्धियों को साझा किया।
2: पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। हमारी जो लखपति दीदी हैं, वो अपने सरकार से मुख्यमंत्री युवा योजना के अंतर्गत जो उनको लोन मिलता है, अपने तो रोजगार पा रहे, दूसरे को भी रोजगार देने का काम करते हैं।
0: इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर सूचना विभाग द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय उपलब्धियों संबंधी तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी एवं स्टॉलों का उन्होंने उद्घाटन व अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी की अध्यक्षता में कुशीनगर जिले की हाटा तहसील में महिला उत्पीड़न की समस्याओं पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई के दौरान कुल 23 आवेदन सामने आए, जिसे संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु भेजा गया। महिला आयोग की सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा, आंगनबाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम व वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कुशीनगर जिले में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत अवकाश प्राप्त विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने अपना प्रभार नवागत अधिकारी अवकाश प्राप्त कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी को अपना कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों ने पुष्प मालाएं भेंट कर विंग कमांडर सक्सेना को भावभीनी विदाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों एवं कार्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुशीनगर में उनका कार्यकाल अत्यंत सुखद एवं यादगार रहा है तथा सभी का भरपूर स्नेह, सहयोग और सम्मान प्राप्त हुआ है।
3: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
4: कालीन और पर्यटन के लिए पहचान रखने वाला मिर्जापुर अब औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। जिले में 78,148 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पहुंचा हुआ है। इन निवेशों से न सिर्फ उद्योगों का विस्तार होगा बल्कि 13,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। जिले को अब तक 192 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 104 परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए चयनित किया गया है। इनमें 25

0: 1625 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रदेश की योगी सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पौधारोपण का महाअभियान की अभी हाल में ही शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अभियान के तहत रोपे गए पौधों को 100% सुरक्षित रखा जाए और आम जन को पौधारोपण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जाए। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद में पौधारोपण अभियान को तीज त्योहारों और संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के वनों की स्थापना के साथ ही विशिष्ट प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे, जिससे आम जन पौधारोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी जागरूक हो सके। वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत जिले में कुल 87,50,015 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। प्रभागी वनाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत जिले में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए मानसून में 5 वनों व 2 वाटिकाओं की स्थापना वन विभाग व अन्य विभागों द्वारा की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जड़ी बूटियों और औषधि पौधों का रोपण होगा। इसके अलावा समरफ वन, समृद्धि वन, कपिल वन एवं ऊर्जा वन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर जनपद के बरकछा में वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय पौधों का रोपण किया जाएगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मणिहान रेंज में कप्फा झरना के पास रक्षाबंधन वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर भाई बहन मिलकर फलदार पौधों का रोपण करेंगे। इसके अलावा उद्यान विभाग की ओर से आम भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए लोगों को फलदार पौधे रोपने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसी तरह ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खंड में सहजन का भंडारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के तहत आम जनों को रोपने के लिए सहजन के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सहजन के औषधि गुणों से आम जन को रूबरू कराते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के लिए जागरूक करना है। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी गत दिनों मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के कामों को गिनाया। कहा, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों मिर्जापुर के BLJ ग्राउंड में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा विकसित भारत प्रदर्शनी व जनपद के विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों तथा स्थानीय उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने देवरी ब्लॉक हलिया मिर्जापुर में भूमि पूजन कर हरबरा MP बॉर्डर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चौड़ीकरण व उच्चीकरण इन दिनों कार्यों के शुभारंभ की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत भी थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा गत दिनों विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया, विकास और जन कल्याण की कामना की। दर्शन के उपरांत AK शर्मा ने विद्युत विभाग के कार्यों पर प्रकाश डाला और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।
2: स्मार्ट मीटर जो है वो प्रीपेड मोड में नहीं बल्कि पोस्ट पेड मोड में चल रहे हैं और कहीं कोई मीटर को लेकर की समस्या नहीं है। गर्मी का सीजन है, थोड़ा लोड बढ़ने से कई बार ट्रिपिंग होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। विंध्याचल जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अगर 20 घंटे बिजली आ रही है और 2-4 मिनट के लिए कहीं किसी की आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें बिजली की व्यवस्था में थोड़ा विक्षेप होता है, नहीं तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी 20 घंटे कम से कम बिजली और शहरी क्षेत्रों में तो 24 घंटे बिजली हम देने का।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देशगान।

अभी आप संवेद सुरों में ये देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नजर आती हैं। यही वजह है कि उमराव जान अदा उर्दू नावेल का एक ऐसा लाफानी शाहकार है जो अपने हमरा अपने खालिक को भी हयात जाविदा अता करता है।
1: अभी आप मकाला समात फरमा रहे थे और अब समात फरमाइए जनाब आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम।
2: गजल का मतला पेश खिदमत है कि एक दिन कटेगा जड़ से शजर उसके बाद क्या, एक दिन कटेगा जड़ से शजर उसके बाद क्या, बिखरेगी धूप होगा सफर उसके बाद क्या, बिखरेगी धूप होगा सफर उसके बाद क्या, उठेगा एक हुजूम कयामत हर एक सू, उठेगा एक हुजूम कयामत हर एक सू, होगी जमीन जेर व जबर उसके बाद क्या, होगी जमीन जेर व जबर उसके बाद क्या, और आंखों में पाल रखे हैं जो ख्वाब जिंदगी, आंखों में पाल रखे हैं जो ख्वाब जिंदगी, टूटेंगे सारे ख्वाब अगर उसके बाद क्या, टूटेंगे सारे ख्वाब अगर उसके बाद क्या, और कायल नहीं जो लोग वफाओं की राह के, कायल नहीं जो लोग वफाओं की राह के, मिल जाए भी जो उनको डगर उसके बाद क्या, मिल जाए भी जो उनको डगर उसके बाद क्या, और मीज़ान अदल तुमने तो नीलाम कर दिया, मीज़ान अदल तुमने तो नीलाम कर दिया, हाथों में होगा तेगो सिपर उसके बाद क्या, हाथों में होगा तेगो सिपर उसके बाद क्या। और ये मक्ता देखिएगा कि एक शख्स ले गया मेरे ख्वाबों का आफताब, एक शख्स ले गया मेरे ख्वाबों का आफताब, अब आए भी जो उसकी खबर उसके बाद क्या, अब आए भी जो उसकी खबर उसके बाद क्या। एक गजल और देखिए पेश करता हूँ। पेड़ पर मुंतशिर घोंसला देखकर, मतलब है कि पेड़ पर मुंतशिर घोंसला देखकर, गम से पत्थर हुई फाख्ता देखकर, गम से पत्थर हुई फाख्ता देखकर, अब फूल शाखों पे कुछ और खिलने लगे, फूल शाखों पे कुछ और खिलने लगे, तितलियों का हसी मशगला देखकर, तितलियों का हसी मशगला देखकर, और शब की आंखों में भी रोशनी बढ़ गई। बतौर खास देखिएगा कि शब की आंखों में भी रोशनी बढ़ गई, चांद का झील में आईना देखकर, चांद का झील में आईना देखकर, और फूल पत्तों से बाहर निकलने लगे, फूल पत्तों से बाहर निकलने लगे, शबनमी धूप का दायरा देखकर, शबनमी धूप का दायरा देखकर, और दिल की वीरान दहलीज महकी बहुत, दिल की वीरान दहलीज महकी बहुत, आपके लब पे एक कहकहा देखकर, आपके लब पे एक कहकहा देखकर, और धूप ने ओढ़ ली शाम की चादरें, धूप ने ओढ़ ली शाम की चादरें, अब्र का टूटता हौसला देखकर, अब्र का टूटता हौसला देखकर, और लफ्ज कागज पर थक कर बिखरने लगे, लफ्ज कागज पे थक कर बिखरने लगे, रंग गिरता रहा हाशिया देखकर, रंग गिरता रहा हाशिया देखकर, और एक दरिया किनारे से वापस हुआ, एक दरिया किनारे से वापस हुआ, रेत पर प्यास का हादसा देखकर, रेत पर प्यास का हादसा देखकर, और उम्र भर जिसको तामीर करते रहे, उम्र भर जिसको तामीर करते रहे, खाक में मिल गया जलजला देखकर, खाक में मिल गया जलजला देखकर, फिर निकलने को है आफताब एक नया, फिर निकलने को है आफताब एक नया, शब का बिखरा हुआ सिलसिला देखकर, शब का बिखरा हुआ सिलसिला देखकर। आइए हजरात एक गजल और पेश खिदमत है। मतलब मुलाजा कि अपना वजूद खुद ही मिटाने से क्या मिला, अपना वजूद खुद ही मिटाने से क्या मिला, जलता हुआ चराग बुझाने से क्या मिला, अपना वजूद खुद ही मिटाने से क्या मिला, जलता हुआ चराग बुझाने से क्या मिला, और जो वक्त था वो रेत की सूरत निकल गया, जो वक्त था वो रेत की सूरत निकल गया, यादों के नक्श दिल में बनाने से क्या मिला, यादों के नक्श दिल में बनाने से क्या मिला, वो शख्स उम्र भर का मुसाफिर ही रह गया, वो शख्स उम्र भर का मुसाफिर ही रह गया, घर छोड़कर जहां को बसाने से

क्या मिला, घर छोड़कर जहां को बसाने से क्या मिला, और खुद साख्ता उसूल की जंजीर तोड़कर, खुद साख्ता उसूल की जंजीर तोड़कर, गैरों के दर पे सर को झुकाने से क्या मिला, गैरों के दर पे सर को झुकाने से क्या मिला। दरिया बुझा रहा था समुंदर की प्यास को, दरिया बुझा रहा था समुंदर की प्यास को, सहरा को सब्ज बाग दिखाने से क्या मिला, सहरा को सब्ज बाग दिखाने से क्या मिला। और अपनों के दरमियान भी तन्हा खड़े रहे, अपनों के दरमियान भी तन्हा खड़े रहे, ऐसे हुजूम शहर में आने से क्या मिला, ऐसे हुजूम शहर में आने से क्या मिला, अपना वजूद खुद ही मिटाने से क्या मिला, जलता हुआ चराग बुझाने से क्या मिला। एक गजल के दो तीन शेर पेश कर

समुंदर की प्यास को सहरा को सब्ज बाग दिखाने से क्या मिला, सहरा को सब्ज बाग दिखाने से क्या मिला, और अपनों के दरमियान भी तन्हा खड़े रहे, अपनों के दरमियान भी तन्हा खड़े रहे, ऐसे हुजूम शहर में आने से क्या मिला, ऐसे हुजूम शहर में आने से क्या मिला, अपना वजूद खुद ही मिटाने से क्या मिला, जलता हुआ चराग बुझाने से क्या मिला। एक गजल के दो तीन शेर पेश कर

0: सुहानी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अभी आप आफताब अहमद अंसारी का कलाम समाअत फरमा रहे थे, और इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया गया। इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया निकहत सिद्दीकी ने।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए

0: अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार हैं ऋचा सक्सेना। इनके स्वर में लीजिए, पहले सुनिए ब्रह्मानंद जी की ये भक्ति रचना।

अभी आपने कबीर दास जी की रचना सुनी ऋचा सक्सेना के स्वर में। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल

0: खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
0: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेदिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में एफआईएच प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज।

नमस्कार संगम की पावन धरती, मैं हूं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र। और आज की सुबह की शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन आज हम एक संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या है? स्वच्छ प्रयागराज, स्वस्थ प्रयागराज। दोस्तों कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां ईश्वर का वास है।

और हमारा प्रयागराज तो खुद तीर्थराज है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, अक्षयवट, हनुमान जी का लेटे हुआ स्वरूप, इतनी पवित्र धरती, अगर यहां पर गंदगी रहे तो फिर किसे अच्छा लगेगा। कुंभ 2019 याद है ना आपको, या फिर अभी पिछले साल हमने जो कुंभ देखा, करोड़ों लोग आए थे, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। यूनेस्को ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली थी कि इतना बड़ा आयोजन और इतना साफ सुथरा कैसे। तब हमारे सफाईकर्मी भाइयों ने, प्रशासन ने और आपने हमने मिलकर दिखाया था कि प्रयागराज कर सकता है। इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज कर सकता है प्रयागराज, और इतनी बड़ी भीड़ द्वारा उत्पादित कूड़े कचरे को भी पलक झपकते ही साफ कर सकता है प्रयागराज। हर 10 मीटर पर डस्टबिन, हर घंटे साफ सफाई, गंगा में एक बूंद भी गंगा पानी नहीं। लेकिन दोस्तों, कुंभ तो 12 साल में आता है, असली परीक्षा तो रोज होती है। कटरा की गलियां, सिविल लाइंस की सड़कें, कीटगंज का बाजार, दारागंज के घाट, ये रोज साफ रहें तब हम कह सकेंगे स्वच्छ प्रयागराज। एक आम भारतीय रोज, अगर आंकड़ा देखे तब की बात है कि एक भारतीय रोज लगभग आधा किलो कचरा करता है, और हमारे प्रयागराज की आबादी के अनुसार अगर देखें तो रोज लगभग 750 टन कचरा। अगर ये कचरा कहीं सड़कों पर आ जाए तो फिर बीमारी तो फैलेगी ही, और इस बीमारी से अगर हमें बचे रहना है तो इस कूड़े कचरे को भी हमें साफ रखना है। और ये जिम्मेदारी न सिर्फ सफाई कर्मियों की है, न सिर्फ प्रशासन की है, अपितु शहर में रहने वाले हर नगरवासी की है। क्योंकि कहा जाता है कि साफ सफाई सिर्फ करने से नहीं होती, बल्कि रखने से होती है।

और श्रोताओं, स्वच्छता और स्वास्थ्य ये दोनों सगे भाई हैं, तो बात कर लेते हैं स्वस्थ प्रयागराज की। अब देखिए, गर्मी अपने चरम पर है, ये समझिए कि दिन में बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है, इतनी तपन है, धूप बिल्कुल शरीर से लिपटने लगती है। तो ज़रूरी है कि इस मौसम में भी हम स्वस्थ रहने की जो टिप्स हैं उन्हें ज़रूर अपनाएं और स्वस्थ रहें। लेकिन अगर गंदगी वाली बात करें तो देखिए, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जगह जगह पर पानी भरेगा, अगर उसमें पॉलीथीन कचरा तैरेगा तो मच्छर पनपेंगे, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये सब गंदगी के दोस्त हैं। और फिर ये जो पानी भरता है, भाई नालियाँ तो पूरे शहर में हैं, सब जगह नालियाँ बनी हुई हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं, फिर ये पानी रुकता क्यों है, ठहरता क्यों है? क्योंकि इनमें फंसता है कचरा, और उसमें सबसे प्रमुख है पॉलीथीन। अब ये पॉलीथीन पहुंचती कैसी है नालियों में? आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। शहर में इतनी जगह डस्टबिन बने हुए हैं, घर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था है, फिर भी हम इतनी जागरूकता नहीं दिखा पाते कि ये पॉलीथीन नालियों में ना जाने पाए। जब ये चली जाती है तो नालियाँ चोक होती हैं, पानी रुकता है, मच्छर पनपते हैं, और फिर घर घर बीमारियाँ होती हैं। तो हो गया ना सफाई और स्वास्थ्य का गहरा नाता। 2016 में प्रयागराज में अगर बात करें तो डेंगू के 1200 से ज़्यादा केस आए थे। वजह थी जगह जगह पर जल जमाव और कचरा, अस्पताल भर गए थे। और हर साल हम बारिश के मौसम में देखते हैं कि मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। उसके लिए आवश्यकता है कि हम समय से उसके लिए सतर्क हो जाएं। जैसे कि बारिश का मौसम अभी आने वाला है तो हम देख लें कि हमारे घर में कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां पर पानी इकट्ठा होता हो, हम उन जगहों को साफ सुथरा कर लें, कहीं पर भी पानी का ठहराव ना होने दें। कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी ही विष बनता है, बहता हुआ पानी तो खुद ब खुद स्वच्छ हो जाता है। तो ज़रूरत है कि हम अपने घरों में पानी का जो ठहराव है वो कहीं ना होने दें, और जब भी बारिश शुरू हो जाए तो कूलर के टैंक वगैरह को खाली कर दें, वहाँ पर भी पानी भर के ना रखें। और इसके साथ एक सच ये भी है कि हमारे शहर के ही कुछ मोहल्लों में कुछ लोगों ने, मोहल्ले की जो टीम बनी, समिति बनी, वहाँ पे कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम हर दिन किसी एक दिन को उन्होंने निर्धारित किया कि इस दिन एक घंटे वहाँ के युवक, वहाँ के नागरिक श्रमदान करेंगे। और नतीजा ये मिलता है कि वहाँ पर एक भी ऐसे मच्छर जनित बीमारियों के मामले सामने नहीं आते। तो ये मिसाल भी हमारे शहर ने पेश की है, प्रस्तुत की हम सबके सामने। अब आवश्यकता है कि हमारा पूरा शहर इस भाव को, इस सोच को अपनाए। सफाई कर्मी सुबह आते हैं, हमारे घर द्वार को, सड़कों को साफ करके चले जाते हैं, नालियां साफ हो जाती हैं, लेकिन गंदगी जो होती है वो किसी एक समय में तो नहीं होती है, वो तो दिन भर चलती रहती है। तो यदि हम नागरिक जागरूक हो जाएंगे कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, या कहीं गंदगी है तो हम अपने मोहल्ले के लोग उसके लिए सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो फिर वो गंदगी बढ़ नहीं

जाएगी, वो गंदगी पसरेगी नहीं, जो भी कचरा होगा वो डस्टबिन में जाएगा, तो मोहल्ले घर मोहल्ले नालियाँ साफ़ रहेंगी, तो फिर भला बीमारियाँ कैसे आएंगी। तो ये मिसाल जैसे कि हमारे शहर में कुछ मोहल्लों ने प्रस्तुत की है, तो इसको पूरे शहर को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा घर द्वार मोहल्ला सड़कें साफ़ रहेंगी तो हम बीमारी से बचे रहेंगे। और जो पानी हमारे घरों से निकल कर बाहर जाता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ भी उस पानी को साफ़ सुथरा किया जाता है और फिर वो नदियों में छोड़ा जाता है। लेकिन अब हम इस पानी को तो साफ़ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन जब हम नदियों पर जाते हैं, हमारा शहर समृद्ध है माँ गंगा यमुना के जल से, जो पौराणिक धार्मिक पवित्रता तो लिए ही हुए हैं, साथ ही अगर उसमें फिर भी कहीं गंदगी हो रही तो हमारी आपकी कमियों की वजह से हो रही है, तो हम सीधे तौर पर इन नदियों में कूड़ा कचरा ना डालें, जिससे ये धाराएं अविरल रूप से अपनी स्वच्छता के साथ अपनी पवित्रता के साथ हमारे साथ साथ जहाँ जहाँ बहती हैं वहाँ वहाँ जन कल्याण करती हुई चलें।

श्रोताओं, अगर आप भी अपने मोहल्ले में कोई स्वच्छता से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के कोई अच्छी पहल करते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। आकाशवाणी का पता तो आपके पास है ही, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, फिर भी एक बार बता देते हैं 800

04926250। अगर आप स्वच्छ प्रयागराज, स्वस्थ प्रयागराज इस थीम के तहत, इस विषय के तहत कोई अच्छी पहल करते हैं अपने मोहल्ले में, तो हमें ज़रूर लिख करके बताइएगा, जिससे हम और सुनने वालों तक आपकी उस पहल को साझा कर सकें। तो आइए आज कुछ छोटे छोटे संकल्प लेते हैं जो बड़े बड़े कारनामे करके दिखाएंगे। ये वादे तो बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े, बहुत सार्थक हैं। जैसे कि हमें घर में दो डस्टबिन रखने चाहिए, गीला कचरा अलग डस्टबिन में और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में। गीला कचरा जैसे सब्जी फल के छिलके, खाना, और सूखा कचरा कागज, प्लास्टिक बोतल। गीला जो कचरा है उससे खाद बनेगी, और सूखा कचरा जो है उसको रिसाइकिल किया जाएगा और उससे जो है फिर से नई चीज़ें बन करके तैयार होगी। हमारे यहाँ जो गाड़ी भी आती है ना सुबह सुबह कचरा लेने, वो भी अलग अलग कचरा लेती है, सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग। और दूसरा संकल्प हमारा क्या है कि हम पॉलीथीन को ना कर दें, क्योंकि भैया ये पॉलीथीन ऐसी चीज़ है जो लगभग 500 सालों तक नहीं गलती है। बाजार जाएं जब, तो साथ में कपड़े का थैला ले जाएं। जैसे कि हमने कहा ये पॉलीथीन 500 साल तक नहीं गलती है, और फिर यही पॉलीथीन जब हम कचरे के रूप में यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, या फिर अगर हम घर के बाहर जहाँ कूड़े का ढेर लगता है वहाँ भी डाल देते, तो हवा के साथ उड़ कर यहाँ वहाँ नालियों में चली जाती है, नालियों को चोक करती है, उन्हें जाम करती है, नदियों में पहुँचती है, मछलियों के पेट में जाती है, जानवर खाते हैं उनके पेट में जाती है, और सब तरीके से ये सिर्फ नुकसान ही करती है। तो जहाँ तक संभव हो पॉलीथीन को ना कहें। एक चीज़ और कि ये गुटखा, खैनी, पान खाकर दीवारों को लाल करना हमें बंद कर देना चाहिए। ये सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि तमाम तरह की बीमारियां भी फैलाते हैं। प्रयागराज स्टेशन, सिविल लाइन्स, हम कई जगह ऐसे देखते हैं जहां की दीवारें बिल्कुल लाल करके रख देते हैं लोग। ये तीर्थराज प्रयागराज को शोभा नहीं देता है। अगली बात, हमें अपने नदियों के घाट साफ रखने चाहिए। संगम नहाने जाएं तो फूल माला कपड़े आदि वहाँ पर ना छोड़ें, उनको किसी दूसरी जगह पर व्यवस्थित कर दें। पूजा अर्चना करें, माँ गंगा को अपने फूल अर्पित करें, उसके बाद उनको निकाल करके किसी दूसरी जगह पर रखें। ये घाटों पर जब पड़े रह जाते हैं तो वहाँ पर सड़ करके गंदगी होती है। गंगा साफ रहेंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। नमामि गंगे सिर्फ नारा नहीं है बल्कि हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। तो हमारा देश स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, हमारा प्रयागराज स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, तभी हम दुनिया के सामने खुले मन से कह पाएंगे कि ऐसा है हमारा प्रयागराज और ऐसा है हमारा देश।

मैं प्रयागराज का नागरिक संकल्प लेता हूँ कि न गंदगी करूँगा न करने दूंगा। अपने घर मोहल्ले शहर को साफ रखूँगा, क्योंकि स्वच्छ प्रयागराज होगा तभी स्वस्थ प्रयागराज होगा। वॉइस ऑफ प्रयागराज के आज के अंक के साथ मैं था आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया अभय कांत तिवारी ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। शुरुआत कर रहे हैं प्रेमचंद और साथियों के स्वर में इस देवी गीत से।

104 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 MHz पर। लीजिए अब सुनिए प्रेम शंकर पांडे के स्वर में ये देवी गीत।

0: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए प्रेम शंकर पांडे के स्वर में ये कहरवा।
1: धाई के नरम कलैया।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं वंदना श्रीवास्तव और आज मैं बात करूंगी भारतीय सिनेमा के पहले और इकलौते सुपरस्टार राजेश खन्ना की। आइए सफर की शुरुआत करते हैं साल 1969 की फिल्म आराधना के इस अमर गीत से, जिसने किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जोड़ी को हमेशा के लिए अमर कर दिया।

श्रोताओं, इस गाने में काका का वो तिरछी गर्दन हिलाना और आंखों का जादू, बस पूरा देश उनका दीवाना हो गया था। राजेश खन्ना का मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट था। जब वो स्क्रीन पर आते तो थिएटर में सिक्कों की बारिश होती थी। चलिए अब रुक करते हैं साल 1971 की उस क्लासिक फिल्म की तरफ जिसने हर किसी की आंखों में आंसू ला दिए। आनंद बाबू का वो संवाद याद है ना, पुष्पा, आई हेट टीयर्स।

श्रोताओं, सलील दा का संगीत, मुकेश जी की मखमली आवाज और स्क्रीन पर जिंदगी को खुलकर जीने वाले आनंद, इस गाने का एक एक शब्द दिल को छू जाता है। राजेश खन्ना ने हमें सिखाया कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आरडी बर्मन यानी पंचम दा, इस तिकड़ी ने जो जादू बिखेरा उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। आइए सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का ये सदाबहार तराना।

श्रोताओं, आंखों में थोड़ा सा गम और चेहरे पर वही बेमिसाल कशिश। राजेश खन्ना ने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में देकर वो रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उनकी रोमांटिक फिल्में एक तरफ और उनका संजीदा अभिनय एक तरफ। साल 1972 में आई फिल्म अमर प्रेम में उन्होंने प्यार की एक नई परिभाषा लिखी। आइए सुनते हैं पंचम दा की धुन पर किशोर दा का गाया ये लाजवाब गीत।

चिंगारी कोई फड़के। सचमुच जब जब काका स्क्रीन पर आए, दर्शकों के दिलों में भावनाओं की चिंगारी भड़क उठी। वक्त बदलता गया, दौर बदलते गए, लेकिन राजेश खन्ना का वो करिश्मा कभी कम नहीं हुआ।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज आपने अभिनेता राजेश खन्ना पर फिल्माए गए गाने सुने। फिल्में थीं आराधना, आनंद, कटी पतंग, अमर प्रेम और सफर। इसी के साथ एक ही कलाकार कार्यक्रम समाप्त करने की वंदना श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

और अब प्रीतम के संगीत निर्देशन में सुनिए सईद कादरी की रचना। फिल्म का नाम है लाइफ इन अ मेट्रो और आवाज़ सोहम की।

और अब अरिजीत सिंह को सुनिए फिल्म राब्ता में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है और संगीत प्रीतम का।

0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों

उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्किक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Ministers and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The national security advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force, STF, in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarasava-Nakur road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi and a firing-cum-robbery case in Chandauli district. Global crude oil prices declined sharply by up to 3% today after talks between the United States and Iran concluded in Switzerland, easing concerns over supply disruptions and raising hopes of increased Iranian oil exports. International benchmark Brent crude fell more than 2% to around $79 a barrel, while U.S. West Texas intermediate crude traded nearly $75 per barrel, a decrease of 3%. The decline came after senior U.S. and Iranian officials reportedly wrapped up the first round of talks aimed at extending a fragile ceasefire and reducing tensions in the region. The Intermeteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The Met Department has predicted heavy rainfall over Bihar, Odisha, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Konkan, Goa and Lakshadweep until tomorrow. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. And with that, we end this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात में 10:30 पर सुनिएगा पंडित उमा शंकर का सितार वादन और दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे पंडित अनंत लाल का शहनाई वादन। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा दिन में 12:30 पर। बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगे दिन में 1:15 पर और बच्चे नन्ही दुनिया कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:00। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा श्रोता रिया सेन गुप्ता की वार्ता सुनेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई कमलेश चंद्र यादव और साथियों के गाए लोकगीत सुनेंगे और लोकभाषा कविता पाठ करेंगे बरसाती अली। हिंदी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में राजेश मिश्र की वार्ता प्रसारित की जाएगी स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य तिलक का योगदान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगी संगीता भारद्वाज। विज्ञान जगत कार्यक्रम में रात में 8:30 पर आज आप डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह से दीपक राय की बातचीत सुनेंगे। विषय होगा 12वीं के बाद मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के अलावा करियर की संभावनाएं। रात में 9:30 पर गजलों पर आधारित कहकशा प्रोग्राम आप सुनेंगे। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे।

और अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुनिए। अनिल मिश्रा सूचित करते हैं कि खुशबू दिनांक 3 सितंबर सन 2025 से लापता है। खुशबू की आयु लगभग 18 वर्ष, रंग गोरा और चेहरा गोल है। वो हरे रंग का टॉप और काले रंग का पैंट पहने हुए हैं। खुशबू के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। सुशीला मिश्रा, पत्नी अनिल मिश्रा, जनपद प्रयागराज। पता एक बार फिर सुन लीजिए। सुशीला मिश्रा, पत्नी अनिल मिश्रा, थाना हंडिया, जनपद प्रयागराज। एक और खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। सुशील कुमार सूचित करते हैं कि सुमन देवी दिनांक 26 मई सन 2026 से लापता हैं। सुमन देवी की आयु लगभग 35 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, दोहरा बदन, रंग गोरा और चेहरा गोल है। सुमन देवी के मिलने की सूचना कृपया इस पते पर दें। सुशील कुमार, थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी। मोबाइल नंबर है 7755847929। मोबाइल नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7755847929। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं सुन रहे थे।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित अनंत लाल का शहनाई वादन। पहले सुनिए शहनाई पर राग शुद्ध सारंग। कलाकार हैं पंडित अनंत लाल।

अभी आप पंडित अनंतलाल से शहनाई पर राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे और अब राग मुल्तानी सुनिए। शहनाई पर कलाकार हैं पंडित अनंतलाल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित अनंत लाल का शहनाई वादन सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आरंभ करेंगे इन खूबसूरत लेकिन जिंदगी की वास्तविकता को दिखाती हुई इन पंक्तियों के साथ। आप जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियां किसी ने लिखी हैं। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। फुर हो गई फुर्सत, अब तो सबके पास काम बहुत है। उजड़ गए सब बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है। बंद हो गई चिट्ठी पत्री, फोनों पर पैगाम बहुत है। आदि हैं एसी के इतने, कहते हैं बाहर घाम बहुत है। झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है। मट्ठा दही नहीं खाते अब, कहते हैं जुकाम बहुत है। भाई ऐसा जुकाम मुझे भी हो गया है, क्योंकि बदल रहा है मौसम। तो भाई अपना आप सब खूब ध्यान रखिए, ताकि आपको इन सब परेशानियों से ना गुजरना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, और हम आ गए हैं पहले गीत की ओर। और इस गीत की फरमाइश की है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो।

रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान हसीना बानो और एलिजा नायाब, तहसील नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और इनके परिवार के अन्य सदस्य, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, रितु सिंह, संकल्प और कृषव सिंह। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का पारसमणि फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, दुर्गेश्री जायसवाल। इन्होंने एक मैसेज लिखा है, रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही आपने, और साथ में इन्होंने फरमाइश कर दी है ससुराल फिल्म के इस गाने की। लेकिन इस गीत को और भी लोग सुनना चाहते हैं। ये श्रोता हमारे हैं कांकेर से, फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, मध्य प्रदेश सनावत से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और इनके परिवार के अन्य सदस्य, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्व, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। तो चलिए आपकी पसंद का सुनते हैं ससुराल फिल्म का ये गाना।

एक शाकी हो नेग्लेक्ट किया, अरे ये किस काम आएंगे, लेकिन वही काम आ जाते हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें कमज़ोर हिफाजत में बहुत ही महफूज रहती हैं, जैसे कि मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। तो भाई किसी भी चीज़ को छोटा मत आंकिए, क्या पता एक दिन वही छोटी चीज़ आपके बहुत काम आ सके। तो छोटी छोटी चीज़ों की भी कदर करना सीखिए। और हम आ गए हैं अपने अगले गीत की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है और फिल्म का नाम है मशाल। आवाज़ है लता मंगेशकर किशोर कुमार की। मशाल फिल्म के इस गाने की फरमाइश हमें की है बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार और विमल। पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, दिव्यांशु डब्ल्यू जी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। पलासी से सेवा लाल कामत, पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु लाडी, आर बी खेड़ा, शालनी वाणी, टिवांशी, जीवन बुक और इनके परिवार के अन्य सदस्य। मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, नलनी पाटिल, आजिक्य, आदित्य और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो चलिए सुनते हैं मशाल फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में कि हम जिन चीज़ों को छोटी समझकर या ये हमारे किसी काम के लायक नहीं है, इनको समझकर दूर कर देते हैं या उनकी कदर नहीं करते हैं। ये सामान भी हो सकते हैं, ये इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक वक्त हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जिस चीज़ को हमने

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि आजकल के जो रिश्ते हो गए हैं वो नौकरी की तरह हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नौकरी की तरह रिश्ते हो गए हैं। अगर आपको बेहतर ऑफर मिले तो लोग चेंज कर लेते हैं, सही बात है ना? तो चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। छत्तीसगढ़ से देव

आजकल के जो रिश्ते हो गए हैं वो नौकरी की तरह हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नौकरी की तरह रिश्ते हो गए हैं। अगर आपको बेहतर ऑफर मिले तो लोग चेंज कर लेते हैं, सही बात है ना? तो चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी। डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। नई दिल्ली कीर्ति नगर से मानसी, अनिल, गौरव, कविता और इनके परिवार के अन्य सदस्य। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयन बाबू। आप सब सुनना चाहते हैं एतबार फिल्म का ये गाना।

चलते चलते हम आ गए हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, और अंतिम गीत की जो फरमाइश आई है वो है बाबूगंज से गुलाब प्रजापति, नरेश प्रजापति और इनके परिवार के अन्य सदस्य, पुलिस लाइन प्रयागराज से गोविंद कनौजिया, मधु कनौजिया, गौरी कनौजिया, हनी कनौजिया और पाला कनौजिया, भिलाई से उत्तम सिंह जंघैल, मोरस जंघैल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदनी, सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका और अंजलि, हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गाना।

0: अभी आप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे, आपकी पसंद, प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 1 बजने को है, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग

0: 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्तेसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar arrived in Mongolia today for an official 2-day visit. In a social media post, Dr. Jayashankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivpur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the 2-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
2: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
1: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi, and a firing-cum-robbery case in Chandauli district. In Jharkhand, at least 8 people were killed and several others injured in multiple

0: खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 81 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर-आला ने कहा कि फिरोजाबाद और अलीगढ़ तरक्की और लोगों को बाइख्तियार बनाने के एक नए बाब का मुशाहिदा करेंगे। उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की 81 तरक्यासी मंसूबों और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की लागत के 85 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के इस्तेफादा कुनिंदगान में घर की चाबियां तकसीम की जाएंगी और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट, चेक और आलात वगैरह भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने न्यू इंडिया की मिसाल पर चलते हुए अपनी एक नई अलग पहचान बनाई है। डबल इंजन वाली हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बुंदेलखंड तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर-आला ने महोबा और बुंदेलखंड में 697 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 88 तरक्याती प्रोजेक्टों और हमीरपुर ज़िले में 636 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 75 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-आला ने कहा कि बुंदेलखंड की तरक्की रियासती हुकूमत की तरजीह है। इस सिलसिले में बुंदेलखंड में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का अहाता किया गया है। जनाब योगी ने कहा कि बुंदेलखंड जल्द ही मिज़ाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
1: गुज़िश्ता रोज़ बैनुल अक़वामी योगा डे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में योगा पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर

0: ज़रा वक्त लेकर आना, हम कई बात लिए बैठे हैं, कुछ ख्वाब कुछ ख्वाहिशें और कुछ हसरतें लिए बैठे हैं।
1: तो आज के इस गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में हम अपने वक्त पर आ पहुँचे हैं, तो आप भी जहाँ कहीं भी हो, घर ऑफिस या कहीं भी, तो अपने वक्त के कुछ लम्हे हमारे प्रोग्राम के नाम कर हो लीजिए हमारे साथ, अपनी रेडियो सेट को ऑन कर।
0: क्यों? क्योंकि आज है गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आपके लिए बातें खास। तो स्वागत है आपका आप अपने मनपसंद प्रोग्राम में। मैं रचना
1: और मिशेल
0: स्वागत करते हैं आप सभी का। नमस्कार। हाँ देखो शैल भाई, स्वस्थ और सफल जीवन की ओर एक सकारात्मक कदम बढ़ाने के लिए हमें जीवन में परिवर्तन हमेशा बड़े बड़े प्रयासों से नहीं मिलता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से मिलता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था ना कि बातें हैं आपके लिए खास, तो भाई अच्छी बातें समय के साथ हमें बड़े परिणाम देती है।
1: बिल्कुल रचना, हमारी रोज़ की दिनचर्या में शामिल कुछ सकारात्मक आदतें केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं बनाती, बल्कि हमारे मानसिक संतुलन और हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारा आत्मविश्वास, सभी की गुणवत्ता को बढ़ाती है। हर दिन छोटे छोटे सुधार भविष्य में कई गुना लाभ देते हैं।
0: सही कह रही हो। जैसे सुबह उठने की जल्दी आदत है ना,
1: ये सबसे पहली आदत होनी
0: चाहिए। होनी चाहिए कि जब छुट्टियां होती हैं या कई बार हम आलस में जो है घर में रहते हैं, या छुट्टी है या घर में तो देर से उठ जाएंगे, तो उसमें क्या होता है
1: कि सारा रूटीन डिस्टर्ब
0: हो जाता है और फिर सारा दिन हम ही लोगों को परेशान होना पड़ता है। दूसरा, नियमित व्यायाम। अब नियमित व्यायाम भी महिलाएं नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? कभी कभी क्योंकि भाई बच्चों को स्कूल भेजना है या घर में खाना बनाना है, कुछ भी काम आ गया तो भाई टाइम टेबल सेट

0: कर लीजिए।
1: लेकिन मैं तो रचना ये भी कहती हूँ कि नियमित व्यायाम करना जरूरी है, मानते हैं इस बात को, लेकिन हमारी जो गृह लक्ष्मियाँ हैं या हम लोग, हम बहनें हैं, उनको जब टाइम मिले, जरूरी नहीं कि हमको मॉर्निंग में ही व्यायाम करना है तो करना है ना, लेकिन जब भी हमें
2: सुबह से लेकर रात तक जब भी समय मिले तो
1: उसमें हम अपने लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम कर सकते हैं।
2: और दिन भर पर्याप्त तो पानी भी
1: पीना
2: चाहिए,
1: ये तो बहुत जरूरी है,
2: है ना। और कुछ रोज नया सीखना और करना चाहिए। जैसे खाली समय में उठा लेते हैं मोबाइल और मोबाइल को हम लोग बैठकर देखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, है ना, अच्छी बात बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल
2: है,
1: सही कह रही
2: है ना? तो क्या करना चाहिए, कुछ नई चीज़ें। जैसे आजकल मैंने देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही मैंने देखा है कि आजकल जो पुराने हुनर थे ना, क्रोशिया का या स्वेटर बिनना या मतलब ऊन से ही कई तरह के आर्ट की चीज़ें बनाना, तो आज उसके लिए ना बहुत बैक पिंस बन रही हैं, की रिंग बन रही है, डॉल्स बन रही हैं। इस समय वो इतनी अलग चीज़ें दिख रही हैं उससे कि मैंने देखा ब्रोच है। तो अब आपके अंदर जैसे हुनर है तो आप कुछ नया सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं, अगर ये वाला हुनर अभी बच्चों को कम आता है तो। ये आप जो पुराने समय के हुनर हैं उसको आप जो है सिखाने की कोशिश करिए, यानी कुछ रोज नया सीखिए, करिए और लोगों को भी कराइए। और साथ में संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है ना शैल?
1: बिल्कुल
2: जरूरी है, क्योंकि भाई अगर हम अपने खाने को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है
1: भाई, हम बीमार पड़ेंगे, हम अस्वस्थ जब होंगे तो हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, और जाहिर सी बात है जब हम बिस्तर पर पड़ जाएंगे तो हमें एक मानसिक टेंशन भी हो जाएगा कि अरे अब कैसे काम होगा, तो हम शारीरिक मानसिक दोनों तरह से हम बीमार हो जाएंगे।
2: और सकारात्मक सोच विकसित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो है हम काम करते करते एकदम झुंझला जाते हैं, थक जाते हैं और मन किसी काम में, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, तो क्या होता है कि बैठ करके हमको आराम से सोचना चाहिए, आराम से करना कि जो चीज़ हम कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं, नहीं
1: अपने आप से आप बात करिए, तब आपको सही जवाब मिलेगा कि जो आज दिन भर की जो हमारी दिनचर्या रही है उसमें हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, तभी हम जब उसको ठीक करेंगे, जहां गलत समझ में आएगा जब ठीक करेंगे तभी हमारे अंदर वो पॉजिटिव थिंग आएंगी।
2: बिल्कुल, वही पॉजिटिव बातें आएंगी, तभी हम पॉजिटिव बातें अपने आस पड़ोस में भी कर पाएंगे, लोगों से भी कहें, जो निगेटिव लोग होते हैं उनसे तो दूर ही रहना चाहिए, कि जो आ करके कहें कि अरे तुम ऐसा काम कर रही हो तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा, तो भाई जो कोई भड़काने वाला काम करे तो नहीं, अपनी आदतों में सुधार करिए। और कुछ ऐसे काम करिए जिससे कि आपको बहुत मानसिक सुख और संतोष मिलता है,
1: भाई वो बुरी आदत छोड़ने से होगा,
2: छोड़ होगा। तो जैसे पेड़ पौधों की देखभाल, किचन गार्डन आप बना लीजिए छोटा सा, अगर घर में जगह नहीं है टेरिफ गार्डन बना लीजिए, कुछ छोटी छोटी सब्जियां उगाइए, फूल के पौधे आपको पसंद है उनको थोड़ा टाइम दीजिए, बात करिए जा करके, तो उससे भी बहुत मानसिक सुख मिलता है। म्यूजिक सुनिए, है ना,
1: ये सबसे अच्छी दवाई है
2: अपनी आदतों में बदलाव करने का। और अगर आपके पास भरपूर टाइम है तो भाई उसके लिए सामाजिक कार्य करना बनता है, है ना,
1: बिल्कुल बनता है भाई, 100% बनता है
2: ना, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे सामाजिक कार्य जैसे पशु पक्षियों की देखभाल और जैसे जानवरों की देखभाल, और कहीं एक संस्था से जुड़ जाइए, किसी जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं,
1: कुछ भी जो आपकी रुचि के अनुसार हो आप उसे कर सकती हैं।
2: आस पड़ोस में बुजुर्ग हैं, उनके पास बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, तो आप जो है आप मदद कर सकते हैं, उनकी भी मदद कर सकते हैं। अब हम कौन सी आदत छोड़ें इस बारे में हम शैल बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक छोटा सा गीत।
1: तो चलिए बहनों, सुनते हैं ये गीत।

0: कुशल, तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है भाई। हमें भी बहनों से बातें करना बहुत
1: बहुत
0: अच्छा
1: पसंद
0: लगता
1: है
0: है,
1: भाई। और
0: और आज हम लोग कुछ अच्छी अच्छी बात लेकर आए हैं और बातें ही करेंगे बहनों के साथ में। तो अब हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी आदतों से कैसे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, तो अब कौन सी आदतों को हमें छोड़ना भी होगा,
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि देर रात जागना। हम लोग ज़्यादातर देर रात जागने की कोशिश करते हैं, काम करते करते टाइम हो जाता है महिलाओं का, लेकिन उसके बाद सोचते हैं कि अरे मी टाइम भी तो चाहिए,
1: हाँ, तो थोड़ा सा मोबाइल देख
0: तो थोड़ा
1: लिया।
0: सा मोबाइल देख लिया या कुछ बुक पढ़ ली या कुछ। तो भाई सुबह तो डिस्टरबेंस हो ही
1: हो
0: जाएगा
1: ही
0: ना।
1: जाएगा।
0: चलिए अभी आजकल तो बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो कोई बात नहीं, अगर लेट उठ गए तो सब काम लेट हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैनेज क्या करना पड़ता है, हम महिलाओं को ही करना पड़ता है। अगर ऑफिस जाने वाले हैं या कहीं भी हैं, घर में ही हैं, तो पति को ऑफिस जाना है, परिवार में लोगों को ऑफिस जाना है, तो अगर हम लेट उठेंगे तो सारा काम हमारा लेट आ जाएगा। तो इसलिए देर रात जागना जो है छोड़ें, है ना, जैसा कि ज़्यादा मोबाइल और

0: सोशल मीडिया का उपयोग हमेशा ही कह रहे हैं कि उसको नहीं करना चाहिए। और नकारात्मक सोच, अगर हम खाली बैठते हैं ना
1: तो
0: तो
1: हमें
0: हम
1: हाँ
0: सोचते
1: पूरी तरह से
0: रहते
1: दिमाग में खराब बातें ही आ रही
0: खराब
1: है,
0: बातें
1: अच्छी तो
0: आती
1: कहीं से
0: हैं,
1: आती ही
0: ये
1: नहीं
0: मेरे
1: है।
0: संग ऐसा कर रहा है तो वैसा कर रहा है, आज मैं ये नहीं कर पाई तो वो नहीं कर पाई, ये नहीं हुआ
1: और
0: तो
1: जहां नकारात्मक सोच आ जाती है वहां हम तुलना भी एक दूसरे से करने लगते हैं, है ना।
0: हाँ जो है ना, तुलना करना बहुत, कि उसके घर में ये है, आज उसके घर में ये बना तो हम, मैंने ये नहीं किया, ये उसने ये चीज़ खरीदी तो मैंने ये चीज़ नहीं खरीदी, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी गंदी आदत होती है टालम टोल की आदत,
1: यानी
0: कभी
1: किसी भी काम को और आगे कर लेंगे या अभी
0: हाँ
1: बाद में कर
0: बाद
1: लेंगे।
0: में कर लेंगे, तो नहीं भाई, आप जो काम कर रही हैं, मान लीजिए आप किचन में खाना बना रही हैं तो सफाई भी साथ साथ करती चलिए,
1: हाँ
0: क्योंकि अगर आप छोड़ देंगी कि थोड़ी देर बात करेंगे तो फिर वो थोड़ी देर बाद ही हो जाता है ना। और आलस, बैठे हैं तो बैठे ही रह गए, पता चला दूध उबल के गिर गया या कुछ
1: दिमाग से उड़ गई
0: दिमाग से उड़ गई
1: बात।
0: बात, या फोन में बात करने लगे तो दिक्कत हो गई, है ना। और आजकल देखा है ज्यादातर घरों में जंक फूड बहुत बनता है,
1: बहुत
0: बहुत
1: ज्यादा।
0: ज्यादा बनता है, तो उसको बनाइए लेकिन अपने तरीके से बनाइए, और उसको मतलब
1: हेल्दी
0: हेल्दी
1: बनाइए
0: बना
1: हमें।
0: दीजिए उसको, वो सारी चीजें ना डाल करके, घर की चीजें, प्याज टमाटर ये वो डालकर,
1: जो
0: ग्रीन
1: घरेलू चीजें
0: वेजिटेबल
1: हैं वो
0: घरों
1: डालिए
0: चीजें
1: आप।
0: डाल करके उसको बनाकर खाइए और खिलाइए, तो वो ज्यादा अच्छी होगी।
1: बिल्कुल।
0: अब भाई छोटी छोटी आदतों में बदलाव से देखिए बहुत लाभ भी होता है, शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहती है ना शैल,
1: बिल्कुल, तो आलस
0: और
1: नहीं आएगी इससे,
0: आलस नहीं आता है, और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती
1: वजन नियंत्रित
0: है
1: रहता
0: ना।
1: है।
0: और अगर हमारा मन बेहतर रहता है, अच्छा रहता है, सकारात्मक सोचते हैं तो बेहतर नींद भी आती है
1: जाहिर सी बात है।
0: अच्छी
1: और जब
0: बातें
1: बेहतर
0: करने
1: नींद
0: से।
1: आएगी, तो अभी हमने कहा था ना कि वजन नियंत्रित रहता है, तो जब हमें पर्याप्त नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा वेट भी अपने उस बैलेंस पर रहेगा।
0: बैलेंस पे रहेगा। और मानसिक लाभ क्या होता है, मानसिक लाभ ये होता है कि इससे हमारी छोटी छोटी आदत में बदलाव, हम अपना किसी चीज में अपना मन लगाते रहेंगे तो तनाव और चिंता में कमी होगी, कि भाई ठीक है हर की लाइफ में परेशानी आती है या कुछ चीजें रहती हैं कि जिनको एक महिला को ही हैंडल करना रहता है सुबह से शाम तक, तो भाई नहीं, तनाव लेके नहीं करना चाहिए, है ना, उसको आराम से स्मूथली निपटाना
1: भाई
0: चाहिए।
1: रचना, अगर मैं अपनी बात करूं तो सही बताएं, कुछ लोगों का भी कहना है कि तुम कोई काम का टेंशन नहीं लेते, तुम्हारे माथे पे लकीर क्यों नहीं आती है, अरे इतना बड़ा काम है कैसे मैनेज करोगी, अरे हो जाएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा हाथ पैर चलाएंगे, हो जाएगा, थोड़ा समय ही तो लगेगा ना।
0: हाँ, तो बस तुम्हारे अंदर ना आत्मविश्वास है, और आत्मविश्वास जिसके अंदर होता है, आत्मसंतोष जिसको मिलता है कि हम ये काम कर लेंगे, तो वो जिंदगी को अपनी ना छोटी छोटी आदतों से स्मूथली चलाता रहता है, उसको पता नहीं चलता है। अब लेकिन मेरे अंदर देखो ये बात नहीं है, मैं मुझे कोई काम करना होता है या कुछ भी मेरा, मुझे लगता है नहीं, पहले ये काम परफेक्ट करके रख लो, उसके अंदर घबराहट होने
1: घबराहट हो
0: लगेगी,
1: जाती तुम्हें।
0: बेचैनी हो जाएगी, नहीं पहले पूरा सब परफेक्ट हो जाए उसके बाद फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, तो ये मेरे अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी है, जिसको कि मुझे बार बार मैं सोचती हूँ कि डेवलप करूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। और देखो ये मेंटल लेवल, भावात्मक संतुलन बनाना भी आज के समय में बहुत
1: बहुत
0: जरूरी है,
1: जरूरी
0: क्योंकि
1: है।
0: देखा जा रहा है कि महिलाएं ज्यादातर जो है डिप्रेशन में भी आ जाती हैं, कि अरे हम तो हाउसवाइफ हैं, हम घर में काम ही करते चले जा रहे हैं और हमारी कदर नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा उन्हें, तो भाई सबसे बड़ा काम आपका है, आप
1: आप
0: सब
1: खुद
0: से
1: अपने आप को किसी से कम क्यों तोल रही
0: क्यों
1: भाई,
0: कर रही हैं।
1: आपकी वजह से तो आपका घर चल रहा है,
0: हाँ
1: परिवार चल रहा है, और जो लोग बड़े व्यवस्था से अपना काम कर रहे हैं वो आप ही की वजह से तो कर रहे
0: आप ही की
1: हैं।
0: वजह से रहो, तो भाई आप डिप्रेशन में मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, और कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए, जैसे कि बताया कि कई तरह के हुनर हैं उनको निखारिए, घर में छोटे छोटे व्यवसाय कर लीजिए, कुछ भी आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ कर लीजिए, और काम करने में एकाग्रता और हमारी स्मरण शक्ति भी बेहतर होती है अगर हम इस तरह की बातें करते हैं, अपने मन को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। और एक बात और, सही समय पर सही
1: काम
0: है ना। इसलिए याद रखें, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में है, दैनिक दिनचर्या में है, जो हमारे जीवन को नई दिशा

0: देती है, क्योंकि हमारे बचपन के संस्कार,
1: हाँ
0: हमारे द्वारा बचपन में सीखी गई अच्छी बातें, अच्छी आदतें, हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारे भविष्य को बेहतर बनाने का आधार बनते हैं। क्यों शैल?
1: बिल्कुल सही कह रही रचना। देखो, आलस से जो है ना वो नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। हम अस्वस्थ आदतें छोड़कर अगर सभी चीज़ों को अपनाएं जो कि पॉजिटिव थिंक है उसको हम अपनाएं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी ज़िंदगी स्वस्थ और खुशहाल बेहतर की ओर जाएगी, है ना। और जो ये छोटी छोटी बातें ही जो है ना वो अच्छी आदतों में भी बदलती है। हर पल हर दिन और अच्छा समय ही मिलकर हमारे जीवन को संवारता है, निखारता है।
0: हाँ, तो शैल देखो, ये तो बात हमने की छोटी छोटी आदतों का विकास। और अब देखो, बल जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि घर की एक महिला होती है, वो सारा सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ती है। तो खाली महिला ही नहीं, कुछ हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं वो जो होते हैं वो इमोशनल लेबर कहलाते हैं। रिश्ते केवल हमारे प्रेम, विश्वास और साथ का नाम नहीं होते, बल्कि उनको बनाए रखने के लिए देखो हमें भावात्मक प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि परिवार में, दोस्ती में, चाहे विवाह स्थल में हम किसी के घर जाते हैं, या आस पड़ोस में, या कोई सामाजिक उत्सव कहीं पर भी है, तो जहाँ आपकी भागीदारी बढ़ चढ़ कर रहती है कि भाई ये है तो ये हमारा सारा काम आसान कर देंगे, है ना। तो जहाँ आप काम करते हो वहाँ संबंधों में अक्सर कुछ लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, विवादों को सुलझा देते हैं। घर परिवार में अगर कुछ समस्या होती है या कोई बात होती है, या हर समय के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सभी हर प्रकार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए वो काम करते हैं। तो देखो, ये ना दिखने वाले, मतलब जो आपका लेबर है, जो नहीं दिखने वाला है, वो भावनाओं से जुड़ी मेहनत को इमोशनल लेबर कहते हैं।
1: लेकिन रचना, हम लोग इमोशनल लेबर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा मेरे भी इमोशनल को समझ लो कि हमारे इस समय क्या मेरा मन
0: तुम
1: कह रहा
0: क्या
1: है।
0: सुनना चाह रही हो भाई? मैं समझ रही हूँ, बातें तो आज हमारे पास करने के लिए हैं, तो एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: नई साथी हाथ बढ़ाना, बात सही है कि अगर हम जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी काम की ओर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन रिश्तों में मजबूती आएगी, वो भावनात्मक जो इमोशनल हम बात कर रहे हैं उसमें भी मजबूती आएगी, है
1: बिल्कुल।
0: ना। और कोई
1: और
0: भी
1: जो अगर आपके लिए कर रहा है तो उसकी बातों को बिल्कुल बिल्कुल आपको मतलब मजबूती से
0: पकड़
1: पकड़ के
0: के
1: रखना
0: रखेगा। और देखो कोई कार्य भी ऐसा भी है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन रिश्तों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। इमोशनल लेबर तो अब आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अपनी और दूसरे को संवेदनाओं और भावनाओं को संभालने के लिए मानसिक और भावनात्मक प्रयास जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे परिवार के सदस्यों की चिंताओं से सुनना, किसी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना, विशेष अवसरों पर जैसे जन्मदिन हो या
1: जन्मदिन
0: शादी
1: शादी
0: विवाह
1: विवाह
0: हो
1: पार्टी
0: या
1: में,
0: कोई भी पार्टी हो, तो उन कार्यक्रम की योजना बनाना, है
1: भाई
0: ना?
1: जो जो जिस काम में निपुण होता है ना शैल, उसको ही तो ये काम घर परिवार में मिलता है,
0: वो जो
1: है ना।
0: हाँ बिल्कुल। और जो ज्यादातर मेन जो मुखिया होता है
1: या जिसके अंदर वो गट्स होता है, चाहे वो
0: हाँ,
1: कोई
0: हाँ,
1: भी परिवार, मान लो कभी ऐसा नहीं है बड़े नहीं कर पाते तो बच्चे उस काम को संभालते हैं,
0: कहीं कहीं
1: बच्चे
0: बसता ही
1: नहीं
0: कह रही
1: संभालते हैं
0: हाँ
1: तो बड़े संभालते हैं, मतलब
0: बिल्कुल।
1: जो जिम्मेदारी लेता है वो आगे जो है बढ़ता
0: और
1: है,
0: ये तभी संभव है जब हम रिश्तों में अपने संवाद को बराबर
1: बनाए
0: बनाए रखें,
1: रखें।
0: कम्युनिकेशन मतलब हमारा
1: बहुत
0: रहे।
1: जरूरी
0: हाँ
1: है। और तनावपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य और समझदारी से काम करके दिखाना चाहिए, अक्सर ये जिम्मेदारी के बिना की औपचारिक अपेक्षा में भी निभाया जा सकता है।
0: हाँ
1: यानी घर में या कहीं भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सही सिचुएशन को हर समय अच्छी तरह से डील कर
0: डील
1: लेता है,
0: कर लेता
1: जैसा
0: है
1: कि बताया, चाहे वो परिवार में बच्चा हो चाहे बड़ा हो
0: क्योंकि
1: चाहे
0: भाई वो
1: कोई हो।
0: देखो देखा जाए तो बहुत ही अनुभवशील व्यक्ति होता है जिसको ये पूरी जिम्मेदारी दी जाती है
1: दी
0: ना। उसके
1: जाती
0: अंदर
1: है।
0: अभी तुमने कहा ना कि वो गट्स होते हैं, तो बात तो सही है। और जब सकारात्मक पक्ष होगा तो जाहिर सी बात है हम एक दूसरे के लिए सोचेंगे, है ना, इमोशनल हम लोग टच होगा, सभी
1: तो
0: चीजें
1: उसके
0: हैं।
1: कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं, तुमने अभी पहले बताया था, और
0: हाँ
1: नकारात्मक होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं सकारात्मक पक्ष क्या
0: हाँ
1: है। रिश्तों की मजबूती पर हर समय ध्यान देना होगा भाई, घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो उससे बुरा भी लग जाता है।
0: हाँ
1: हर संवाद को हर समय बेहतर बनाएं, जैसे एक मी टाइम निकाल लें, मतलब टेबल पे बैठ के, चाहे लंच का टाइम बना लें चाहे डिनर का टाइम बना लें, और जैसे कि जो है छोटी छोटी समस्याओं का हल निकालें बैठ कर।

0: और गलत फहमी बिल्कुल ना रखें, है ना।
1: ये हाँ,
0: और
1: ये
0: जब टेबल पे बैठे तो मतलब एक दूसरे से खुला संवाद
1: खुला
0: करें।
1: संवाद का मतलब यही है कि अगर हम एक टेबल पे बैठे हैं तो जाहिर सी बात है अपने अपने विचार आप खुद रखिए वहाँ पे, है ना। जो
0: चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो, समाज में अगर आप ऑफिस में हैं या कोई आप कोई ऐसी जगह गए हैं जहां पर जो है आप बैठे हैं, आपकी राय ली जा रही है, तो उसमें सामंजस्य बनाए रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और सहानुभूति का विकास बहुत जरूरी है दूसरों के प्रति, क्योंकि अगर जो काम करता है ना तो उसको लोग कभी कभी देखो झल्ला की बात भी सुना देते हैं, बहुत चीजें कर देते हैं।
1: लोग कहते भी ना, अरे जो करता है वही मार खाता है ना,
0: ना।
1: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए,
0: नहीं होना चाहिए भाई। उसके प्रति सहानुभूति का भी विकास करना चाहिए और जो कर रहा है उसके उसको अपने अंदर रखनी चाहिए। मानसिक सुरक्षा की भावना, यानी दूसरों की हर बात और स्थिति को हर तरह से समझ कर उसे सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना चाहिए कि ये देखो ये हमारे लिए हर काम में आगे से आगे बढ़ कर के काम कर रहा है, तो हम जो है करें। और अब इसका नकारात्मक पक्ष भी
1: यानी
0: है,
1: दूसरा पहलू है
0: कि ये भाई ये साथ जो अगर जिम्मेदारी ओढ़ लेता है ना व्यक्ति, तो उसको भावात्मक थकान बहुत हो जाती है,
1: बहुत ज्यादा,
0: क्योंकि सारी जिम्मेदारी ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, मतलब इतने सारे काम होते हैं कि परेशान हो जाता है।
1: और इसी
0: और
1: से
0: एक
1: जो है,
0: ही और एक ही जब जब परिवार में जैसे कुछ आयोजन होता है या ऑफिस में कोई आयोजन होता है या कुछ होता है, तो उससे क्या है रिश्ते भी असंतुलित हो जाते हैं। ये हो जाते हैं कि यही
1: यही
0: काम
1: कर रहा हम क्यों आगे
0: हम क्यों
1: करने दो
0: उसको, वो कर रहा है तो है ना। और अपने ऊपर ध्यान ना देना, पूरे टाइम मतलब काम में लगे रहना अपना, ना खाने पीने का ध्यान देना ना कुछ करना।
1: रचना जिसको जिम्मेदारी दी जाती है अगर वो इंसान काम करता है ना, तो उसको ये लगता है ना कि अगला आदमी कुछ उसमें कमी ना निकाल पाए, तो जाहिर सी बात है वो अपने
0: अपनी
1: ध्यान नहीं दे पाएगा
0: ना करना। और तनाव हताशा और निराशा भी कभी कभी आ जाता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया और बाद में मुझे क्या बुराई मिल रही है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए दोनों में और अपने आप में संतुलन बनाए कर चलने के लिए अपनी भी भावनाओं को जरूर महत्व दें। रिश्तों में जिम्मेदारियों का बंटवारा जरूरत पड़ने पर सबकी सीमाएं तय कर दें, खुलकर हर बात पर बातचीत और अपेक्षा पर चर्चा करें और दूसरों के प्रयास की सराहना करें। और सबसे खास बात यह है कि हर चीज में अपने लिए समय जरूर निकालें। इसलिए
1: इमोशनल लेबर रिश्तों का महत्वपूर्ण पहलू है ना। ये
0: भार किसी एक व्यक्ति पर
1: नहीं होना
0: चाहिए।
1: कोई भी एक व्यक्ति हो उस पर भार नहीं देना चाहिए, बल्कि अभी हमने गीत बजवाया था साथी हाथ बढ़ाना, तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस काम को अंजाम देना चाहिए।
0: बिल्कुल, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए ताकि एक पर भार पड़ने का वो हताश और निराश और असंतोष का कारण ना बन पाए। इसलिए स्वस्थ रिक्शे वही हैं जो सभी मिलकर सभी जगह जिम्मेदारियों को बांटकर एक दूसरे के प्रयासों को पहचाने, सभी का सम्मान करें, उनकी मेहनत की कद्र करें और आपसी रिश्तों को जीवंत और सार्थक बनाएं। और अब हम क्या सार्थक बनाएंगे, अपने कार्यक्रम को सार्थक बनाएंगे, आगे अपने उसके ओर बढ़ते हैं। अब ले चलते हैं एक नए कार्यक्रम की ओर, यानी
1: वो कार्यक्रम है
0: भोर।

तनु, ऐसा हम में से कई लोगों के साथ कई बार होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें। जैसे दिमाग पूरी तरह से किसी विचार से चिपक गया हो, मैं कहूँ, और वो परेशान कर रहा हो, हमारे दिमाग को भारी कर रहा हो, हमें कोई बात समझ में नहीं आती। हम किसी से कोई बात कहते हैं, वो हमें सुझाव भी देता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, दवाइयां की नहीं। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है। मैं इसको इस तरह से कहूं कि किसी अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लेने जैसा है, जहां मालूम पड़ता है कि कोई खिड़की भी नहीं। और जब ऐसे कमरे को जब मैं कमरे को

0: अब दिमाग कह रही हूं, जब आप खोलते हैं तो इस तरह की आवाजें, सांस नहीं ले पाते अच्छी, मींस लोग भागते हैं क्योंकि उससे बहुत गैस और अजीब सी चीजें निकलती हैं। ऐसे में इंसान सोचता है कि फिर से खुद को बंद कर लेते हैं, क्या रास्ता रह जाता होगा?
1: मुझे लगता है कि खुद को बंद कर लेना तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और इस तरीके से अगर हम परिस्थितियों से भागते रहे तो वो बदलेंगी नहीं और शायद उसका रूप और ज्यादा बिगड़ जाए। तो उस अंधेरे कमरे से हमें कदम बाहर निकालना ही होगा।
0: तब एक बात आपसे साझा करूं?
1: हाँ,
0: कई बार ऐसा मैंने महसूस किया है, जैसे मेरे जीवन में कुछ लोग हैं, मेरे एक सर हैं, गुरुवर भी हैं,

0: और ज्यादा बिगड़ जाए। तो उस अंधेरे कमरे से हमें कदम बाहर निकालना ही होगा।
1: तो एक बात आपसे साझा करूं?
0: हाँ,
1: कई बार ऐसा मैंने महसूस किया है, जैसे मेरे जीवन में कुछ लोग हैं, मेरे एक सर हैं, गुरुवर भी हैं, उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि बेटे अगर कुछ समझ में ना रहा हो, न कुछ सुनने की इच्छा हो, न करने की इच्छा हो, बस एक बात जो मैं कह रहा हूं, भले तुमको करने में लाख कष्ट होता हो, ऐसा लगता हो कि ये तुम नहीं हो, तुम्हारा दिल छलनी छलनी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो पूरे विश्वास के साथ कर देना, वहां से आगे बढ़ जाना। यकीन मानिए तनु, मैंने ऐसा कई बार किया है, और अब मैं सोचती हूँ कि जब दिमाग उस स्थिति में नहीं है कि मैं कुछ अच्छा सोच सकूं, तो जो गुरुवर हैं उनकी बस बात मान लेना कि जब हम देख ही नहीं पा रहे हैं, वो तो देख रहे हैं ना, कर देती हूँ। करने के बाद अजीब सी शांति मिली है।
0: वही चीज मैं कह रही हूँ ना आपसे कि हमें एक कदम बाहर निकालना ही होगा, आगे बढ़ना होगा, हम उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। बस हमें ये देखना है कि अगर उस परिस्थिति में हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद पे काम कर सकते हैं। कि हम खुद को संयमित रखें, खुद को हम टूटने ना दें, और हम खुद को इस तरीके से संभालें कि समय के साथ जब कभी वो परिस्थिति बदलेगी, तो हम खुद को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर चुके होंगे कि फिर भी उसकी जो छाप है वो हमारे ऊपर रह ना जाए। वो कहते हैं ना कई बार कि जब कोई बहुत भयानक तूफान आए, आप उसे नहीं रोक पा रहे हो, तो आप सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अपने कमरे के अंदर चुपचाप बैठ जाओ और उस तूफान को पार हो जाने दो।
1: तनु, ये बात कहना बहुत आसान है, जब पड़ती है ना तो पता चलता है, और ये सच है कि दिल दुखता है,
0: बिल्कुल
1: ये महसूस की हुई बात है। लेकिन साथ ही में जब मैंने ये महसूस किया कि नहीं, गुरु जी ने बोला है तो, और ये गुरु जी कोई और नहीं, वो मुझे बचपन से मुझे उन्होंने पढ़ाया है, वो है मेरे आचार्य हैं, अचानक से उनकी बात, उनकी छवि जब मन में लेती हूँ, न जाने क्यों कदम बढ़ाने का मन करता है, और मैं सिर्फ बढ़ाते समय ये सोचती हूँ कि नहीं, बढ़ा तो देना है क्योंकि उन्होंने बोला है। क्या और लोग भी अगर ऐसा करेंगे कि देखिए दुख तो रहेगा, लेकिन अगर वो किसी को याद करें, स्मरण करके आगे बढ़ना चाहें, तो बढ़ जाएंगे।
0: बिल्कुल, जब हमें खुद पे भरोसा कम होने लगे, तो किसी ऐसी शक्ति पे भरोसा करें जो हमारे साथ हमेशा रहती है, जिसने आज तक हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया है। होता क्या है कि जब हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए या थोड़ा सा गड़बड़, तो हम ये सोचने लगते हैं कि बस अब यही है। नहीं, बहुत कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ है।
2: अभी बहनें सुन रही थी भोर कार्यक्रम के अंतर्गत किम कर्तव्य विमोड़ की अवस्था, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता और तनु आर्य की।
3: और शैल, देखो आज हमने बोला था ना कि बातें ही बातें, और वो भी खास बातें हैं, खास मुद्दे हैं हमारे पास भाई, क्योंकि आज एक विषय पर और हम बात करने जा रहे हैं। अब बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व पर भावात्मक उपेक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई, बच्चों की परवरिश केवल उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं होती है। देखो कि खाली उन्हें अच्छा भोजन दे दिया, अच्छे कपड़े दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दिया, तो सब पूरा हो गया। इसके साथ साथ उनकी भावात्मक जरूरत को भी समझना और पूरा करना आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में बदल गई है, ऐसा नहीं हो पा रहा है।
2: बिल्कुल सही कह रही रचना। कई बार माता पिता अपनी व्यस्त दिनचर्या, नौकरी तनाव या जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि बच्चों की भावना

0: को पर्याप्त समय नहीं दे पाते।
1: हाँ.
0: बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें किस बात से खुशी मिलती है, किस बात से दुख पहुंचता है, उन्हें किस समय सहारे की आवश्यकता है, ये बातें अनजाने में नज़रअंदाज हो जाती है। इसे ही हम भावनात्मक उपेक्षा कह सकते हैं।
1: हाँ, और कभी कभी क्या होता है, मेट पे भी हम छोड़ देते हैं तो भी बच्चा जो है हमको नज़रअंदाज करने लगता है। भावात्मक उपेक्षा का असर धीरे धीरे बच्चे के व्यक्तित्व पर दिखाई देने लगता है। ऐसा बच्चा अपने मन की बात कहने में हमेशा हमसे झिझकने लगता है। उसके मन में ये भावना घर कर सकती है कि उसकी भावनाओं की कोई
0: अहमियत
1: अहमियत
0: ही
1: ही
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है। उसका आत्मविश्वास बच्चों का कम होने लगता है और स्वयं वो दूसरों से अपने को कमतर आंकने लगते हैं।
0: और देखो रचना, कुछ बच्चे जो है ना अंतर्मुखी हो जाते हैं, वो अपनी भावनाओं को दबाकर रखने लगते हैं और दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वहीं कुछ बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सैल या आक्रामक भी बन सकते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है क्योंकि वे अपने भीतर के दुख और अकेलेपन को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते
1: और
0: हैं।
1: ऐसे में वो क्या होता है कि वो चले जाते हैं सोशल मीडिया की ओर। अब वो जो
0: हाँ
1: है अकेलापन दूर करने के लिए मोबाइल और फोन और चीज़ों का इस्तेमाल करके वो उसमें से तकनीक खोजने लगते हैं। और आजकल तो बहुत ही टेक्निक डेवलप हो गई हैं उसमें, मोबाइल में उसमें, कि वो उनसे अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। तो श्रोताओं, बचपन में मिले प्यार, अपनापन और भावना की सुरक्षा जो होती है वो आगे चलकर बच्चे के व्यक्तित्व के मजबूत नींव बनाती है। यदि यह नींव कमजोर रह जाती है ना, तो बच्चे भविष्य में रिश्ते बनाने, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई का सामना करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी बातों को ध्यान सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें एहसास दिलाएं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी बच्चों को केवल सलाह की नहीं बल्कि हमारे धैर्य, समझ और स्नेह की आवश्यकता होती है।
0: तो याद रखिए, बच्चे शब्दों से कम और व्यवहार से अधिक सीखते हैं। जब हम उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें प्यार और सुरक्षा का एहसास कराते हैं, तब हम केवल उनका वर्तमान ही नहीं बल्कि उनके भविष्य को भी मजबूत बना रहे हैं।
1: बिल्कुल, इसलिए इन्हें ऐसा वातावरण दे जहाँ वो डर के बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, बात कह सके, ये महसूस कर सके कि उनके माता पिता या परिवार के हर परिस्थिति में हर परिवार का सदस्य उनके साथ है। क्योंकि भावात्मक सुरक्षा जो है बच्चा को आत्मविश्वासी, संवेदनशील और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: करता है। तो भाई हमने इतनी अच्छी
1: अच्छी बात
0: बातें
1: बता।
0: करी है ना।
1: तो अब बच्चों के लिए एक गीत तो बनता ही
0: बिल्कुल भाई,
1: है ना
0: बिल्कुल।
1: भाई, हम बड़े भी सुन रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, तो एक गीत प्यारा
0: चलो
1: सा।
0: सुनते हैं।

कुशल भाई, बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमने ये प्यारा सा गीत सुनवाया, क्योंकि बच्चे भी मन के सच्चे होते हैं और अपने होते हैं। और साथ में हमारा कार्यक्रम

0: जो है सुनने के लिए आप हर जगह सुन सकते हैं। आप एक ऐप है न्यूज़ ऑन AIR ऐप, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाकर, ताकि आप हमें
1: आसानी से सुन
0: सुन सके कहीं
1: सकें।
0: भी हो, आप देश विदेश कहीं भी हो, आप हमारे कार्यक्रम को सुन। और देखो अब घड़ी हमको इशारा कर रही है कि चलने का वक्त हो गया है, तो अब लेते हैं बहनों से विदा और कहते हैं
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रूपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा

0: लोकसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदार

0: सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को

0: अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं, जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन

देशों से आते हैं। तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताज़ा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
1: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
0: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं

0: उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद दीदी। बच्चों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी छुट्टियां बची हुई हैं।
0: बिल्कुल बच्चों, जहां करते हैं ज्ञान कल्पना और मनोरंजन की रंग बिरंगी बातें। मैं हूँ आपकी दीदी शेर
1: और मैं आपकी दीदी रचना। और हम लोग बहुत दिन बाद लेकर आए हैं एक बेहद रोचक विषय पर आपके लिए जानकारी। बच्चों रंगों रंगों का प्रभाव क्या होता है आपको पता है? अगर हमारे पास आंखें भगवान ने दी है तो वो क्या है, अनमोल चीज है। जिनके पास आंखें नहीं होती है ना तो वो महसूस
0: नहीं कर पाते
1: नहीं कर
0: हैं।
1: पाते ना कि
0: बिल्कुल
1: रंग क्या चीज होती है। तो जरा सोचिए, हमारे को जो है भगवान ने अनमोल चीज दी है तो हम उससे सब चीज देख सकते हैं, सब चीज जो है समझ सकते हैं कि ये दुनिया कितनी सुंदर है ना।
0: बिल्कुल।
1: अगर रंग नहीं होता तो बच्चों क्या ये दुनिया इतनी सुंदर लगती? नहीं लगती ना। रंग हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। खिलते हुए फूल, नीला आसमान, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी तितलियाँ और इंद्रधनुष के साथ ये रंग सभी हमारे जीवन में खुशियाँ और ऊर्जा भर देते हैं। जैसे बच्चों का फेवरेट कलर होता है ना दीदी, कुछ कुछ, किसी का लाल होता है, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का, ज़्यादातर बच्चों का रंग गुलाबी रंग पसंद का
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: सही। और बच्चों क्या आप जानते हैं कि सिर्फ रंग देखने में अच्छे नहीं लगते बल्कि ये हमारे मन भावनाओं और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं।
1: यानी ये बच्चे देखकर अट्रैक्ट होते
0: हाँ
1: हैं।
0: इसे ही तो हम रंगों का प्रभाव कहते हैं।
1: और बच्चों जैसे लाल रंग देखकर हमें ऊर्जा यानी ताकत जैसे साहस जैसा लगने लगता है, यानी वो मन में एक तरंग भर देता है, उत्साह का एहसास कराता है। वैसे ही पीला रंग भी खुशी और आशा और रचनात्मकता का प्रतीक नहीं, यानी पूजा रचनात्मकता, ऐसे कि जो है हम पीला रंग हमेशा जो है पूजा में
0: इस्तेमाल
1: करते
0: करते
1: हैं। पीली
0: और देखो
1: हल्दी,
0: हरे रंग
1: पीला
0: की बात
1: कपड़ा।
0: आती है तो हरा रंग प्रकृति, शांति और ताजगी से जुड़ा है ना, इसलिए हरियाली देखकर मन प्रसन्न होता है। और नीले रंग की बात करें तो मन को सुकून और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। वहीं नारंगी रंग जोश, उत्साह और सकारात्मक चीजों को संदेश देता है।
1: और बच्चों रंग हमारे पहनावे, पढ़ाई के वातावरण और हमारी जो मनोदशा होती है ना उस पर भी असर डालते हैं, क्योंकि जितना अच्छा रंग होगा उतना अच्छा हमारा मूड हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए अपने आसपास ऐसे रंगों को शामिल करिए जो आपको खुश और शांत बनाए और हर चीज में आपका मन लगे।
0: और साथ ही एनर्जी से भरपूर रखें, है ना भाई। देखो अभी आपने अनमोल चीज की बात करी जिससे हम रंगों को महसूस कर सकते हैं, तो भाई वो आंखें हैं। आंखें स्वस्थ हैं तो रंगों का हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिनकी आंखें नहीं हैं वो
1: उस
0: रंगों
1: चीज
0: को
1: महसूस
0: नहीं
1: कर
0: पाते हैं।
1: मान लीजिए आपको किसी बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां लाइट ना हो, रोशनी ना हो, तो वहां आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा महसूस, अंधेरा महसूस करेंगे। तो बच्चों आइए हम ये संकल्प लें कि अपने जीवन को अच्छे विचारों, मुस्कान और सकारात्मक सोच और सुंदर रंगों से भरें, क्योंकि जैसे जैसे इंद्रधनुष के बिना आसमान अधूरा लगता है वैसे ही बच्चों आपका जीवन भी है। आपका जीवन रंगों से भरा होना चाहिए, क्योंकि अगर रंग नहीं होंगे हमारे जीवन में तो वो फीका फीका सा लगेगा।
0: बिल्कुल। और देखो इसी रंगीन संदेश के साथ चलो बच्चों को सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत, है ना।

0: बम बम बोले भाई। देखो शैल, मस्ती हो गई ना ये गाना
1: भाई,
0: सुनकर। और
1: छुट्टियों का मौसम है तो
0: हाँ,
1: बच्चे मस्ती करेंगे ही।
0: करेंगे ही, कहीं झरने को देखने गए होंगे तो रंग बिरंगी मछलियां देख रहे होंगे, तो कहीं रंगों का प्रभाव देख रहे होंगे, तो कहीं हरियाली देख रहे होंगे। अब देखो हरियाली से बात आती है कि जहां जहां बच्चे हिल स्टेशन में घूमने गए होंगे वहां बारिश आ
1: आ
0: चुकी है,
1: चुकी है।
0: बट हमारे यहाँ नहीं आई है। लेकिन अब हम बच्चों को बताने जा रहे हैं मानसून के बारे में। बच्चों, लंबी गर्मी के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं ना, और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, और बारिश की बूंदें धरती को भिगो देती हैं, तो समझ लीजिए कि मानसून आ गया है। और ये देखो जुलाई जो है, ये जून से जो है
1: अगस्त तक।
0: अगस्त तक का मौसम जो होता है वो बारिश का ही मौसम होता है, उसको मानसून वाला मौसम कहते हैं।

0: अरे अब देखो रचना, अब बारी आती है भाई, जब मानसून की बात कर रहे हैं तो बच्चों को बताना जरूरी हो जाता है ना कि मानसून क्या है ना। तो बच्चों आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा, तो हम आपके जिज्ञासा को शांत करते हैं कि मानसून उसे कहते हैं कि जब मौसमी हवाओं जो वर्ष के अलग अलग समय पे अपनी दिशा बदलती रहती हैं और अपने साथ खूब बारिश लेकर आती हैं। भारत में मानसून सामान्यतः जून से सितंबर तक रहता
1: और वो
0: है।
1: नदी से पानी लेकर के भाप बन करके उड़ती है
0: बादल
1: और
0: के साथ,
1: बादल
0: तब
1: के साथ बादल
0: बारिश होती है।
1: बारिश होती है। बच्चों गर्मियों में धरती बहुत जल्दी गर्म जाती है और जबकि समुद्र अपेक्षा के ठंडा रहता है। इस तापमान के अंतर के कारण समुद्र से नमी से भरी हवाएं भूमि की ओर ले जाती हूँ और ये हवाएं जो है बादलों का निर्माण करती हैं, यानी बादल बनाती हैं और फिर वर्षा होती है। इसी प्रक्रिया को मॉनसून कहते हैं। और ये सबके लिए कितना जरूरी होता है, किस किस चीज के लिए दीदी?
0: भाई सबसे पहले तो बारी आती है किसानों के लिए, क्योंकि किसान जो खेती करते हैं ना तो उन्हें बारिश की ज़रूरत होती है, तो ये मौसम उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसका वो पूरे साल इंतज़ार करते हैं
1: फसलों के लिए।
0: तो किसानों के लिए मानसून बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश फसलें वर्षा के पानी पर ही निर्भर करती है।
1: और देखो बारिश नदियाँ तालाब और जलाशय भी भर जाते हैं। हमारे जीवन में पानी कितना महत्व रखता है, तो ये मानसून से ही हमको अपने छत पे भी सब जगह जो है पानी का कलेक्शन करना
0: चाहिए।
1: उसके बाद उसको हमको शुद्ध करके इस्तेमाल
0: करना चाहिए। और देखो इसी मानसून में पेड़ पौधे जीव जंतु को भी एक नई जिंदगी मिलती है,
1: जीवन मिलता है। और कितना अच्छा लगता है, लगता है ना जब बारिश आती है तो नाचे छम छम उसमें दौड़े और मट्टी में कूदे और सोंधी सोंधी जो है खुशबू लें, कितना अच्छा लगता है।
0: मतलब मौसम ठंडा सुहावना हो जाता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों मानसून केवल बारिश का मौसम नहीं होता बल्कि प्रकृति की अद्भुत प्रक्रिया होती है। यानी हर मौसम का होना बहुत जरूरी होता है जो धरती पर हरियाली ताजगी और नई उम्मीद लेकर आती है ना बच्चों?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भाई लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि बारिश अगर आ जाए तो भैया ज्यादा भीगना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बीमार हो जाएंगे। और ये मौसम जब गर्मी और थोड़ा सा मिला जुला होता है ना बच्चों, जब बारिश वाला मौसम, तो उसमें फोड़े फुंसी भी निकल आते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जगह जगह पानी भर जाते हैं, कीड़े मकौड़े उसमें पनप जाते हैं। तो बच्चों अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
0: देखो
1: है ना?
0: सेहत का ख्याल रखिए, बखूबी रखिए जैसे कि दीदी कह रही हैं आप, लेकिन मस्ती भी मत छोड़िए क्योंकि ये मौसम है बच्चों की मस्ती का, है ना। आप मस्ती को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, तो इससे आपकी मस्ती भी अच्छी होगी और स्वास्थ्य भी बना रहेगा, तो जिससे कि हम मानसून का बहुत ही अच्छे से
1: स्वागत करें जब वो आए। लेकिन दीदी अभी तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मानसून कब आएगा अपने शहर में, कब आएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी बता दें कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो अभी ये बच्चे जो है ना खेल खेल में खूब दौड़ते हैं, फिर क्या करते हैं आकर पानी पी लेते हैं ठंडा ठंडा, तो उससे भी तो गला वगैरह पकड़ लेता है ना। तो इस बात का बच्चों ध्यान रखो कि आप दौड़ दौड़ के खेलो ज़रूर, क्योंकि खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, जरूरी था। मगर ये याद रखो कि हमको दौड़ के पानी नहीं पीना है, जब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है,
0: 5 मिनट का रेस्ट करिए, फिर आराम से पानी पीजिए,
1: पानी पीना है। और तुरंत एसी और कूलर से निकल के बाहर मत जाइए, उससे भी आपको नुकसान करता है ना। और क्या दीदी, और क्या ध्यान रखना है गर्मी में, कि जो है अच्छे ठंडे ठंडे चीज़ें पीना है, जैसे कि बेल का शरबत है, छाछ है ना, सारी चीज़ें, मतलब सब गर्मी से
0: तरल पदार्थ
1: का सेवन ज़्यादा करिए और जंक फूड से दूर रहिए। और अब भैया हमें इशारा कर रहे हैं कि चलने का वक्त हो गया है, तो बच्चों आपसे लेते हैं विदा और तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद बच्चों।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं हम लेकर आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अभिषेक,
1: और मैं हूं आपकी दोस्त साक्षी। एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने खास प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 5:15 और आपने भी चैनल ट्यून कर ही लिया होगा, इस उम्मीद के साथ कि आज के सुनहरे सफ़र को हम खूब सूरत बनाएंगे थोड़े नए और ताज़े एहसासों के साथ।
0: क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद हर युवा के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस पर हम अक्सर खुलकर बात नहीं करते हैं। वो विषय है सेल्फ लव, यानी खुद से प्रेम और आत्मविश्वास का महत्व।
1: दोस्तों, आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी, उनकी उपलब्धियों और उनकी खुशियों को देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं?
0: बिल्कुल साक्षी, इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दरअसल साथियों, सेल्फ लव का मतलब खुद को सबसे बेहतर या सबसे परफेक्ट समझना नहीं होता है। इसका मतलब है अपनी खूबियों और कमियों दोनों को एक्सेप्ट करना और खुद का सम्मान करना। तो सीधा सवाल बनता है कि आखिर सेल्फ लव है क्या?
1: असल में कई बार होता ये है अभिषेक कि अक्सर लोग सेल्फ लव को स्वार्थ समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। स्वार्थ में हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, जबकि सेल्फ लव हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें सिखाता है कि जैसे हम अपने दोस्तों या परिवार से प्यार करते हैं, वैसे ही खुद के प्रति भी दयालु रहें और ईमानदार रहें।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये बात सच है कि अगर हम खुद को ही महत्व नहीं देंगे तो दूसरों से सम्मान और प्यार की उम्मीद करना थोड़ा और भी मुश्किल लगने लगता है।
1: और दोस्तों, अगर बात करते हैं आत्मविश्वास की, तो आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज़ में ही निपुणता हासिल हो, बल्कि इसका मतलब है ये होना चाहिए कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस बात पर हमें विश्वास होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई बार हम किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू या मंच पर बोलने से सिर्फ इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अब बात यह है कि कोई भी युद्ध विजय करने से पहले भाई उसे लड़ना तो पड़ता है, बाकी लोगों का क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए निरंतर आगे बढ़ते रहना।
1: दोस्तों, ये बात याद रखिए कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी असफलताओं का सामना ज़रूर किया होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं आत्मविश्वास और असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, जिसको अपना कर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
0: और साथियों, यही आत्मविश्वास हमें गिर कर दोबारा उठना सिखाता है। और साक्षी, कई बार होता है ना कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं ना कहीं ये हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को अफेक्ट करता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक पौधा होता है ना, हम उसको लगा के छोड़ देते हैं और उसको लगाने के बाद हम हर रोज़ उस पर पानी देते हैं, उसको पानी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और एक दिन वो पौधा बड़ा हो जाता है और खुद

0: देता है, फल देता है। तो कहने का मतलब हमको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे वो पौधा किसी से अपनी कंपेयर नहीं करता, तुलना नहीं करता, लेकिन एक दिन आखिर वो फल देता ही जरूर है। तो
1: बिल्कुल
0: इस तरह से हमें भी अपने जीवन को ढालना चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि जैसे हर पौधा है तो हर पौधे का फल अलग होता है,
0: बिल्कुल।
1: फल वो फल अलग देता है, उसके फूल अलग होते हैं। वैसे ही हम ह्यूमंस में क्या होता है कि एक वर्ड होता है एप्टीट्यूड, है ना, यानी सबके अंदर उसका खास एप्टीट्यूड होता है, उसका खास टैलेंट होता है। तो आप उसको पहचानिए,
0: बिल्कुल
1: ना कि दूसरों से अपने को कंपेयर करिए, उस एप्टीट्यूड को पहचानिए और उस पर काम करिए। जब आप उसको निखारेंगे ना, तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा। फिर आपको खुद ये फील होगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी फील्ड में अगर बेटर कर रहा है, तो मैं भी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, या अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हूँ।
0: बिल्कुल साथियों, और इस एप्टीट्यूड को अपनाकर, इस अप्रोच के साथ हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन साक्षी, अपने प्रोग्राम को भी तो बेहतर बनाना है ना,
1: बिल्कुल
0: तो लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और अपने श्रोता साथियों को सुनवाते चलते हैं ये गीत।

0: वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे सेल्फ लव के बारे में, है ना अभिषेक?
1: बिल्कुल
0: तो दोस्तों एक बात गौर करने की है कि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ हमें लोगों की सफलता, उनकी खुशियाँ और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं और एक चकाचौंध की दुनिया दिखाई देती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं दिखाता, केवल उसका एक हिस्सा दिखाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए दूसरों की चमक देखकर खुद को कभी कमतर समझना बिल्कुल सही नहीं होता है साक्षी, क्योंकि हम होता क्या है ना, सोशल मीडिया का यूज़ जब ज़्यादा करते हैं, दूसरों की लाइफ को हम देखते हैं तो लगता है कि हमारी लाइफ ऐसे क्यों नहीं है। हम उसको कनेक्ट करते हैं दूसरों की लाइफ से और अपनी कंपेयर करने लग जाते हैं, जो कि कतई सही नहीं होता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आपकी यात्रा आपकी है, आपका संघर्ष भी आपका है और आपकी सफलता भी निश्चित तौर पर आपकी ही होगी। तो ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी होता है कि सेल्फ लव और आत्मविश्वास को कैसे विकसित किया जाए।
0: और इसे अभिषेक आपने कहा कि हम बार बार कंपेयर करते हैं अपने आप को ना
1: बिल्कुल
0: दूसरे से, कंपेयर कर करके, तो इस कंपैरिजन की वजह से ना जो हमारी क्वालिटीज़ होती है ना, तो वो जो हमारी नेचुरल क्वालिटीज़ होती है उसको हम हाइब्रिड बना देते हैं, मिक्स
1: एग्जैक्ट
0: कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी क्वालिटीज़ को, अपने जो आपका जो ऑरा है उसको बरकरार रखिए और दूसरों से कंपेयर मत करिए अपने आप को, है
1: बिल्कुल
0: ना? और ऐसा कुछ बनिए कि सामने वाला भी लगे कि यार आपको देख कर यार हाँ क्या पर्सनैलिटी है। तो ये
1: मतलब कंपैरिजन ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, कोई कोई सीख मिले।
0: हाँ
1: तो वो जो कंपैरिजन होगी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को, हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएगी।
0: और इस चीज़ को कंपेयर करना नहीं कहेंगे हम, मुझे लगता है अभिषेक, कि हाँ उस जो सामने वाले की पॉजिटिव चीज़ें हैं हम उसको अपने अंदर उसको लाने की कोशिश करेंगे।

0: और नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे.
1: डेफिनेटली इट विल बी अ पार्ट ऑफ लर्निंग.
0: बिल्कुल. तो इसके लिए कुछ सरल बातें हैं दोस्तों जिन्हें आप अपना सकते हैं, जैसे कि अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें
1: और अपनी गलतियों को सीखने का अवसर माने
0: और नकारात्मक सोच से दूरी बनाए
1: और साथ ही अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद से सकारात्मक बातें करें, क्योंकि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता है, ये हमारे ही भीतर से जन्म लेता है. और सेल्फ लव कोई मंजिल नहीं होती बल्कि एक कंटिन्यूस यात्रा है. जितना आप खुद को समझेंगे और स्वीकार करेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे.
0: दोस्तों दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है. आपकी पहचान, आपकी प्रतिभा और आपकी संभावनाएं ही विशेष बनाती हैं आपको. इसलिए खुद को कम मत आंकिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए. खुद से प्रेम कीजिए और जीवन की हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए कीजिए.

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नए झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके? सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
7: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
7: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
6: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
8: साक्षी, हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के पहले अंक में सेल्फ लव और खुद से आत्मविश्वास के बारे में, कि आखिर कितना जरूरी है अपने आप से
9: खुद को जोड़ना
8: और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, है ना। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारी नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, कभी कहानियाँ जो हमें कुछ ना कुछ नया सिखा जाती हैं, कभी कविताएं जो हमारे मन को हल्का करती हैं, सरल बनाती हैं और कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन प्रदान करती हैं। तो आज भी हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही कविता पाठ, और हमारे पाठक जी हैं अर्चित कुमार तिवारी। तो आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये कविता पाठ।
10: प्रस्तुत है मेरी पहली कविता, जीवन का सत्य। रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है, कहो इसे कर्मों का फल तुम या किस्मत की रेखा है। रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है, कहो इसे कर्मों का फल तुम या किस्मत की रेखा है। अनुभव में डूबी थी आँखें, चलना सिखा रही थी सांसें। अनुभव में डूबी थी आँखें, चलना सिखा रही थी सांसें। पल पल गिर के सांसों को उठते हुए मैंने देखा है, रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है। मृत्यु के उस जटिल नियम को तोड़ रही थी वो सांसें। मृत्यु के उस जटिल नियम को तोड़ रही थी वो सांसें। कुछ मोड़ रही थी वो सांसें, झकझोर रही थी वो सांसें। कुछ मोड़ रही थी वो सांसें, झकझोर रही थी वो सांसें। हार रही उन सांसों को, हार रही उन सांसों को, जीते हुए मैंने देखा है, रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है। वो उंगली जिसमें दम्भ नहीं ना उठने का अभिमान रहा। वो उंगली जिसमें दम्भ नहीं ना उठने का अभिमान रहा। मृत्यु अटल है, मृत्यु परम है, उसने भी शायद यही कहा। शांत सरल इस उंगली में कुछ हलचल मैंने देखा है। शांत सरल इस उंगली में कुछ हलचल मैंने देखा है। रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है, कहो इसे कर्मों का फल तुम या किस्मत की रेखा है। रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है। कानों ने कुछ भी नहीं सुना, कानों ने कुछ भी नहीं सुना, ओंठों ने कुछ भी नहीं कहा। कानों ने कुछ भी नहीं सुना, ओंठों ने कुछ भी नहीं कहा। मेरे हिस्से में जो भी था आज वो सब कुछ नहीं रहा। मेरे हिस्से में जो भी था आज वो सब

0: कुछ नहीं रहा, खामोश पड़े इन ओठों को यह कहते हुए मैंने देखा है। खामोश पड़े इन ओठों को यह कहते हुए मैंने देखा है, रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है, रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है। अब अटल मृत्यु की चिर गम पर सांसों ने प्रस्थान किया, अटल मृत्यु की चिर गम पर सांसों ने प्रस्थान किया, काया पड़ी रही धरती पर सांसों ने ब्रह्म का ध्यान किया, काया पड़ी रही धरती पर सांसों ने ब्रह्म का ध्यान किया, थकी और हारी सांसों को, थकी और हारी सांसों को जाते हुए मैंने देखा है, रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है, मृत्यु अटल है मृत्यु परम है कहते हुए मैंने देखा है, रुके रुके से पैरों को चलते हुए मैंने देखा है, कहो इसे कर्मों का फल तुम या किस्मत की रेखा है, या किस्मत की रेखा है। प्रस्तुत है मेरी दूसरी और अंतिम कविता, कहाँ है किसान।
1: लहलहाती फसल झूमते आमदल, लहलहाती फसल

0: तो दोस्तों, अभी हमने सुनी कविता पाठ, जीवन का सत्य, कर्मों का फल और किसान की मेहनत और उसका फल। ये दोस्तों जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो जिससे हम सभी जुड़े हैं, चाहे वो किसान की मेहनत हो। वो फल सिर्फ वो नहीं उठाते हैं अभिषेक, उनसे हम सब जुड़े हैं।
1: बिल्कुल
0: और हर कहते हैं ना कि सिर्फ हर एक क्षेत्र का इंसान, हर जिस जिस जिस जगह पे, चाहे वो हर उम्र का इंसान हो, वो उस चीज़ से जुड़ा है। तो ऐसी कविता सुनकर दोस्तों, हम इसलिए ऐसा प्रयास करते हैं कि आपके लिए ऐसे सेगमेंट लाएं जो जिससे आपको भी प्रेरणा मिले और हमें भी प्रेरणा मिले।
1: बिल्कुल, और जिस अंदाज में, जिस भाव से अर्चित कुमार जी ने अपनी कविताओं को पिरोया है, वाकई में कहीं ना कहीं हमें अंदर से मोटिवेट करता है। और उस विषय से जो उन्होंने रिसाइट किया अपनी पोएम में, कविताओं में, वो हमें जोड़ देता है।

0: अब बात करते हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, एक ऐसे लेखक, कवि, नाटककार और समाज सुधारक जिन्होंने हिंदी भाषा को एक नई पहचान दी।
1: जो आज हमारे प्रेरणापूर्ण सेगमेंट में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की।
0: दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। सिर्फ 34 साल की छोटी उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को इतना समृद्ध किया कि आज भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।
1: और साथियों, सबसे खास बात ये कि उन्होंने हिंदी को केवल एक भाषा नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को जागरूक करने का सशक्त माध्यम बनाया। उनका प्रसिद्ध वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के शोल।
0: दोस्तों, अपनी भाषा का सम्मान और ज्ञान ही व्यक्ति और समाज के विकास की नींव है। और भारतेंदु जी केवल कवि नहीं थे बल्कि एक जागरूक पत्रकार भी थे। दोस्तों, उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और अंग्रेजी शासन के नीतियों पर खुलकर लिखा।
1: उनका एक प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा आज भी लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था और गलत नेतृत्व के प्रति सचेत करता है। और गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये सब उस समय किया जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। उन्होंने साहित्य को समाज परिवर्तन का एक मजबूत हथियार बनाया।
0: दोस्तों, आज के युवाओं के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन कई प्रेरणाएं देता है। पहली प्रेरणा, अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करें।
1: दूसरी ये कि ज्ञान और लेखनी का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए।
0: और तीसरी प्रेरणा, कम उम्र कभी भी बड़े काम करने में बाधा नहीं बनती।
1: एब्सोल्युटली, एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपके इरादे मजबूत हों तो कम समय में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। भारतेंदु जी इसका सबसे सशक्त और सटीक उदाहरण है।

0: दोस्तों, आज जब हम सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी मातृभाषा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल साक्षी, क्योंकि मॉडर्न बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
0: और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो मॉडर्निटी है ना, जो हमारी संस्कृति है, हम उसमें मॉडर्निटी को खोजें, हम फ्लेक्सिबल बने, लेकिन ये ना समझे कि हमारी जो चीज़ें हैं वो रूढ़िवादी हैं, है ना, और हमें दूसरी चीज़ों के ही सीधा मॉडर्न समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए। और साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, साहित्य और विचारों की शक्ति समाज को बदल सकती है, और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है।

0: तो दोस्तों अब बारी है हमारे कल के सवाल जवाब की। हमारा कल का सवाल था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान यानी जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश कैंपेन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था।
1: और दोस्तों हमारा आज का जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A यानी आर्टिकल 371A भारतीय राज्य के किस विशेष दर्जे से संबंधित है? और आप हमें अपना उत्तर दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर जो कि है yuvvani@gmail.com पर, और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8004926250 पर।
0: इसी के साथ मुझे यानी अभिषेक को
1: और मुझे यानी साक्षी को
0: दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युव वाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप

0: मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। पहले एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ही ग्रामीण भाई सुनेंगे बरसाती अली से लोक भाषा कविता पाठ। शाम 7:00

कर 31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा राजेश मिश्र की वार्ता, स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य तिलक का योगदान। शाम 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा संगीता भारद्वाज के स्वर में गीत और भजन। 8:20 पर होगा कार्यक्रम विज्ञान जगत, इसमें हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह से दीपक राय की बातचीत, जिसका विषय होगा 12वीं बाद मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के अलावा करियर की संभावनाएं। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां सुनिएगा 9:30 पर और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा पंडित उमा शंकर का सितार वादन। ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। कल दिन में 3:55 से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने के पर आधारित आयोजन का सजीव प्रसारण। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार से की गई बातचीत, जैविक उर्वरकों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह की वार्ता होगी हीट स्ट्रोक का होम्योपैथिक उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित गणेश प्रसाद मिश्र का गायन। दिन में 12:15 पर पंडित गोपाल दास का क्लैरियोनट वादन और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर आपको सुनवाएंगे पंडित नारायण राव व्यास का गायन। सुबह 10:05 पर कार्यक्रम लोक माधुरी में सुनिएगा राधेश्याम कुशवाहा और साथी इसके अलावा रंजना त्रिपाठी के स्वर में लोकगीत। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी फरहानूर से गीता सिंह की बातचीत, खाना पकाने की आधुनिक विधियां और बारीकियां। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे सियाराम मिश्र से रामायण पाठ। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर रामजी मिश्र से उनका काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुन सकते हैं सुषमा त्रिपाठी के स्वर में गीत और भजन। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का समय होगा 9:30 पर और 10:00 होगा कार्यक्रम खेल दर्पण, इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। शन्नो जिनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, ये दिनांक 17 मार्च 2026 से ग्राम माथपुर पुरा मुफ्ती कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें गीता देवी से, जिनका मोबाइल नंबर है 9118947900। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9118947।

7900. मुस्कान, जिनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 4 फुट 6 इंच, रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 3 अप्रैल 2025 से ग्राम बिसौना, थाना एयरपोर्ट, कमिश्नरेट प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें जीत लाल से, जिनका मोबाइल नंबर है 8957873640। नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 8957873640।

अनिल कुमार सरोज, जिनकी उम्र है 17 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, इकहरा मजबूत जिस्म, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये दिनांक 17 मई 2026 से, ग्राम नौबस्ता सल्लालपुर करारी कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। कलावती, ग्राम नौबस्ता, पोस्ट सल्लालपुर, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी। आशीष केसरवानी, जिनकी उम्र है 35 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल है। ये दिनांक 10 अप्रैल 2026 से, मीरापुर अतरसोया प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें श्री जगदीश प्रसाद केसरवानी, निवासी 381/3C मीरापुर, थाना अतरसुईया, जनपद कौशाम्बी। ये थी खोई हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। डीजे सुनिए देश गान।

0: आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिम बंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णं अर्थसंकल्पनापत्रं उपस्थापितं, यस्मिन् सामाजिक कल्याणं आधारभूत संरचना विकासं आजीविका सृजनं समेत्य अनेकाः महिला केन्द्रित योजनाः

0: मन्नू भैया।
1: भैया दिनेश देखा कुल ठीक बा, मुला गर्मी देखा हो खूब पड़त बा, या बहिन घाम बड़ा कर्रा लगत है।
0: एक बात समझाया भैया, तो बात ये बा कि अगर जेठ में ना गर्मी पड़े तो का माघ में पड़े।
1: भाई देखा हो गर्मी तो पड़बे करी, मुला हमारे कहे का मतलब ये है ना कि खेती किसानी बड़े निकले के तो पड़त है।
0: हाँ।
1: तो देखा पंच भैया किसान भैया थोड़ा सा संभल के निकलें और अपने आप के धूप और गर्मी से भी बचावे के जरूरत है।
0: हाँ ये बात तो तुहार दम कि भाई देखिए हर काम भाई माघ में जाड़ा पड़े जेठ में गर्मी पड़े, काम हर महीना में करे के बा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन मौसम के हिसाब से आपन बचाव कर,
1: बचाव कैल बहुत जरूरी बा।
0: घरे से निकले पानी पी के निकले, गमछा उमछा बांध के निकले,
1: खूब बढ़िया से एकदम तोप ढक के निकले,
0: कपड़ा उपड़ा पहन के निकले। और भाई हम कहते घामे से लौट के आवे तुरंत ही ना कि ठंडा ठंडा
1: ना
0: पानी
1: ना एकदम हकासल पकासल भैया लेके जो है कि लोग खूब पानी ढरकाई लेते हैं तो बड़ा नुकसान करते हैं।
0: वही नुकसान
1: थिराए जाए थोड़ा सा आराम से हो जाए, हाथ मुंह धुल लें
0: और मौका लगे कुछ खाए लें,
1: कुछ खाए लें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पेट खाली न रखे,
0: कुछ खाए के तब पानी पिए।
1: भैया देखा एक बात बताई कि अपन जो धरती बा भैया
0: जी जी,
1: और कदम कदम पर देखा तो जो है वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करे के पड़त है
0: जी,
1: हमें
0: जी।
1: तो है सबके है, चाहे भैया वो पेट्रोल के रूप में होके, चाहे डीजल के रूप में होके, केरोसिन के रूप में होके, बिजली के रूप में होके, कोयला के रूप में
0: जी,
1: होके
0: जी।
1: लेकिन ई कुल देखा जितना भी ऊर्जा के सब स्रोत हैं भैया, एक भंडार बड़ा सीमित है।
0: हाँ
1: सीमित भैया, कुछ समय बरे बा। और भैया देखा हो अब इन बात खूब लोग प्रयोग करत हैं, और देखा तो भैया जो है कि कदम कदम पर एकदम जो है कि ऊर्जा का प्रयोग करत लोग चलते हैं।
0: भाई देखा एक बात यह हो था ना भैया कि जौन चीज़ एक निश्चित बा और एक दायरे में बा, अगर वही में से रोज खर्चा करा तो वो तो कमई होए ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया कम हुई तो मुला देखा यही लिए भाई देखा धीरे धीरे धीरे धीरे अब सौर ऊर्जा की तरफ लोग बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सौर ऊर्जा के देखा बढ़ावा दिया जात बाटे, सरकार भी तरह तरह का प्रयास है मन कई रहत बार
0: जी जी।
1: मुला देखा एकर का महत्व बा, का फायदा बा। सबसे बड़ी बात यही है कि आपन जितना भी स्रोत हैं भैया ऊर्जा का, सबकर एक प्रकार से देखा जाए तो संसाधन सीमित बा
0: जी,
1: लेकिन सौर ऊर्जा भैया असीमित बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये कबो खत्म होके वाला ना, नहीं ना। बा
0: भाई जब तक सूरज चांद रहे तब तक सौर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब तक भैया धरती रही है। और साथे साथे देखा जो सौर ऊर्जा का प्रयोग लोग करते हैं ना
0: जी जी,
1: तब पर्यावरण के ही बहुत अच्छा मित्र है भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कार्बन का उत्सर्जन भी देखा है हमारे बहुत कम होता है, किफायती भी है भैया, काफी कम लागत बा, एक रख रखाव में भी काफी जो है कि कम समय और कम खर्च लगत है।
0: बिल्कुल,
1: और देखा तो भैया आज के समय में सरकार भी तरह तरह के यहाँ पर जो है कि छूट जम देखा हो लगवाओ थे लोग ना छत पर, हाँ उस सोलर वाला लोग लगवाओ थे जो कि
0: भैया हमें एक बिना बहुत जगह की जरूरत नहीं ना,
1: बहुत जगह कभी जरूरत
0: ना, छत पे लगवा ले, द्वारे लगवा ले, मोहर लगवा ले, कोने लगवा ले, जहाँ जगह हो
1: बिल्कुल बिल्कुल लगवा ले। और देखा यहाँ पर तरह तरह का छूट मिलते है,
0: ऊपर लगा रहा तो नीचवा की जगह खाली रहा तो चाहिए।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, जगह भी खाली रहते है, एक रख रखाव बहुत कम खर्च में निपट जाते भैया, और साथे साथे तरह तरह का देखा ऐप पर छूट भी मिलता है। मुला देखा एक बात कहे के जरूरी बा ना कि हमें तुहें सबके अब सोचे के जरूरत बा
0: जी,
1: कि केवल हम कहें कि मान लग सरकार की तरफ से पहल किया जात बा, रेडियो के माध्यम से देखा एकर जो है कि प्रचार प्रसार भी किया जाता है। मुला जब तक हम तो सब पंच भैया ना चेती हैं, वो सोलर पैनल ना लगवाई है, सौर ऊर्जा के प्रयोग अपने जीवन के शैली में ढाले की जरूरत है भैया रोजमर्रा के जीवन में, तब तक देखा कोनो बहुत बड़ा फायदा ना हुई। तो हम तो कहें कि देखा तमाम लोग जो बिजली का बिल देते हैं है, कितना ज्यादा खर्चा होते हैं, अगर मान ला कि वो लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करें तो निश्चित तौर पे देखा तो उनका खर्च कम हुई,
0: बिल्कुल कम हुई,
1: बचत भी हुई उनके कुछ, और साथे साथे देखा ऐसे पर्यावरण का भी संरक्षण हुई। तो हम तो कहें कि अभी कुल जो परंपरागत स्रोत है ना वो स्रोत से दूर हटे की जरूरत है, और बिजली पर जो निर्भरता है लोगों का ना, कहें कि बिजली भी कैसे बनता है भैया, बिजली में भी कहीं ना कहीं अलग तरह का ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, कोयला का प्रयोग किया जाता है, और ये सब बिल्कुल अपन जो पेट्रोलियम पदार्थ है भैया उकर मात्रा एक तरीके से अपन जमीन के अंदर बहुत सीमित है भैया। और देखा दिन पर दिन एक कर महंगाई भी कौने स्तर पर बढ़त चल जाते हैं। तो अगर भाई आत्मनिर्भर बने के बाद, स्वावलंबी बने के बाद, और अपन कुछ खर्चा बचाए के आर्थिक रूप से समृद्ध बने के बाद,
0: बिल्कुल,
1: तो सबके भैया सोचल जरूरी है, और सौर ऊर्जा के महत्व के जाने और सौर ऊर्जा

0: के अपने जीवन में अपनावे की जरूरत है,
1: जी
0: अपने
1: जी
0: दिनचर्या में शामिल करे की जरूरत है। ऐसे देखा तो चतुर्दिक फायदा पंच भैया सब कर हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हम कहे थे भैया एक बात ही बताओ, आज पंचायती में पंचन के काका सुना हुआ है।
0: अब भैया देखा पंचैती आज जो है अपन भरल पुरल बा पूरा है, और लोक भाषा कविता पाठ भी हुई, एक थे बतकही भी बा, बातचीत भी बा है बर्मी कंपोस्ट के बारे में।
1: जी,
0: मुला भाई कहा अगर तो हम एक पहले एक थे गवनई सुनवा दें, कमलेश चंद यादव और संघातिन कर
1: सुना दे
0: विकास
1: सुना
0: गीत
1: दे
0: बा
1: सुना दे भैया, कुछ गीत गाने हो तो फिर पंचायत सजे।
0: सुना भैया।

0: हाँ भैया
1: देखा भैया, गौने ही तो हो गए।
0: जी।
1: अब देखा एक बात, खेती किसानी के काम में देखा इस समय तो कुल धाने जोर पड़े बा,
0: हाँ
1: और साथे साथे धान का नर्सरी है।
0: हाँ बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: बहुत से लोग देखा अपन धान का नर्सरी डाल चुके हैं और एक तरीके से तैयार हो रहत बा, तैयार हो गए बा। मुला जे लोग भी अपन धान का नर्सरी तैयार कर लिए बाटे भैया, चाहे धान का नर्सरी लगा लिए हैं डाल लिए हैं, तो ज़रूरत बा कि ओकर ए समय में समुचित देखभाल करें।
0: जी।
1: हैं कहें कि देखा नर्सरी पर ही अपन पूरा का पूरा जौन धान का फसल होता ना बाद में चल के, और ओकर जौन पैदावार होता वो निर्भर करत है। तो जरूरी बा कि ऐसे समय में कुछ खास बातन पर, जैसे नमी, नमी पर ध्यान रखें, साथे साथे भैया ओकर पोषण और कीट के नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें। और कहती भाई देखा बराबर ओके नियमित रूप से देखे के पड़ी,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: कौनों भी अगर ओमन मान ला कि जैसे समस्या आवत है, तो कौनों भी से अगर समस्या आवत है, जो विशेषज्ञ लोग हैं कृषि के वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि रक्षा इकाई केंद्र पर जाए के जो न कि वो समस्या के बतावें और ओकर निदान करें। भाई देखा 10-12 दिन के बाद हल्की से जो न कि यूरिया भी लोग दे देते हैं ओमन,
0: हाँ
1: और अगर पीलापन देखे तो भैया जिंक का छिड़काव करें। अच्छा जौन भी तरह का अगर कोनो दिक्कत लगे, सामान्य रूप से अगर ओकर बढ़वार ना होते या पत्ती में कुछ पीलापन दिखत है, तो संपर्क करके ओकर तुरंते के तुरंते उपचार करें
0: भैया,
1: ओकर।
0: सबसे जरूरी बात तो ये बा ना, क्योंकि गर्मी तेज बा, धूप तेज बा, तो जोन जहाँ भी नर्सरी डाए हों, जहाँ भी बेहन डाए हों, वहाँ खेत का नमी न जाए पावे।
1: नमी बिल्कुल नहीं, मेड़बंदी यही लिए बहुत बढ़िया रहे के चाहिए
0: हाँ
1: कसके, और साथे साथे भाई देखा जब तक रोपाई न हो जाए
0: तब तक दो
1: तब
0: दिन चार
1: तक,
0: दिन के अंतर
1: हाँ
0: पे
1: बिल्कुल
0: हल्की
1: एकदम
0: सिंचाई
1: अपन
0: जरूर
1: सिंचाई
0: करें।
1: जो कि करें, जो से कि पानी का स्तर उमन
0: जी जी
1: हमेशा
0: जी
1: बना रहे, और
0: बिल्कुल
1: नर्सरी देखा अपन अगर दुरुस्त रही है तब अपन फसल भी बढ़िया हुई और पैदावार भी उसे
0: बिल्कुल
1: बढ़िया हुई। तो
0: बिल्कुल
1: इस समय
0: बिल्कुल
1: बा ओकरे उचित देखरेख का, और ये लिए भाई एकदम बिल्कुल संध्या सवेरे हम कहें कि खेत पर जाए, डांडे जाए
0: हाँ
1: और ओके देखे ओकर निगरानी करें।
0: जी।
1: तो भैया ऐसे जो है कि अपन नर्सरी बेहतर रही, बढ़िया रही, और बाद में जो है कि अपन धान का फसल बेहतर हुई।
0: जी
1: भैया देखा बातचीत तो होत रही,
0: हाँ
1: लेकिन लोक भाषा कविता पाठ बा आज बरसाती अली का, कहते हैं कि पंचन भाई के सुनवाई दिया
0: सुना
1: करें।
0: दे सुना दे।
1: तो सुना भैया, तू सुना और पंचो सुने।
2: बारिश के समय बिल्कुल आ गया है, अई बारिश वाला पानी कौनो सूरत से बह के जाए न पावे, ऐसी अपन तालाब गड्ढा ये सब भर लिया। तो यही पर हम आपको एक कविता सुनाई थे, सुने। बरसत है बदरा, बरसत है बदरा, घेरे चारों ओरी बरसत है बदरा।

तलौना भर जाए तो बहाय कौनु ओरी, बरसत है बदरा घेर चारु ओरी, बरसत है।

छोरी धरती के कोखी झुराय नहीं पावै, धरती के कोखी झुराय नहीं पावै, गढ़ही गड्ढा भर जाए झुराय नहीं पावै, गढ़ही गड्ढा भरा झुराय नहीं पावै, साफ रखा तलौना साफ रखा तलौना, प्लास्टिक रहै न कौन ओरी, बरसत है बदरा घे।

अली कहत हैं बढ़ी जाए कुल रार, जरी जाए धरती सूरज आँख जब तरेरी, बरसत है बदरा घेर चारू ओरी, बिजुरी चमकत है बिजुरी चमकत है बहुत जोरी जोरी, बरसत है बदरा। पंचो दूसर देखें, आपन ही हिंदुस्तान देश बहुत प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है, हर मौसम ही बा, दुनिया भर में जितना भी मौसम है वो हिंदुस्तान में अकेले बा, ये जान लें आप। आगे देखें आप, दुनिया में हर जगह से प्यारा हिंदुस्तान हमार आए, दुनिया में हर जगह से प्यारा हिंदुस्तान हमार आए, रंग रंग कै माटी बाटे शीतल साफ बयार आए, रंग रंग कै जंगल बाटे पेड़े कै भरमार आए, रंग रंग कै मनई बाटन सब क्यों मिल रखवार आए, दुनिया में हर जगह से प्यारा हिंदुस्तान हमार आए।

पै रखवार आहाय, जमी से लेके आसमान तक हर जगह पहरेदार आहाय। पानी के रास्ता मा से नाव लहे तैयार आहाय, केहो वर्दी माँ केहो बिन वर्दी सब जन मानस रखवार आहाय, केहो वर्दी माँ केहो बिन वर्दी सब जानस मन रखवार आहाय।

देख के थर थर कांपे, जब किसान के हाथ कुदारी बा ट्रैक्टर से जोतें आपन खेत, नहर के पानी जारी बा, नहर के पानी जारी बा। एह देश में हर मौसम बा बरखा कै पड़त फुहार आहे, एह देश में हर मौसम बा बरखा कै पड़त फुहार आहे। यही देश मा चेरा पूंजी बा ज्यादा पड़त फुहार आहे। खड़ा हिमालय सीना ताने सबसे ऊंच लीलार आहे, तीन तरफ दरिया से घेरा।

मन हमार आए। पंचो आगे देखा, चांद यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ा थे, लेकिन अपने वैज्ञानिक जब चांद से लौट के आए तो बताएं कि नहीं, चांद खूबसूरत तो ही है, लेकिन वहाँ पे ना तो पेड़ है, ना तो हवा है, ना तो पानी है, कुल गड्ढा धूल यह सब कुछ बा। तो लड़कियन के हम चांद के थोड़ा सैर करा दी, देखें आप सुने।

चला लरी को तू है दिखाई, चला लरी को तू है दिखाई, चंदा मामा के घर दिखाई। चला लरी को तू है दिखाई, चंदा मामा के घर घुमाई। दूर से देखे माँ अच्छा लागे, लगे जा नानी के दिखाई। ऊबड़ खाबड़ पाथर गड्ढा बना भरा कुल इहे दिखाई। पाथर धूल हर जगह मिलत है, सूखा बंजर हर जगह दिखाई, सूखा बंजर हर जगह दिखाई। चंदा के आंगन मा पेड़ नहीं बा, ना कौनो हरियाली बा। चंदा के आंगन मा पेड़ नहीं बा, ना कौनो हरियाली बा। यही लिए ना हवा मिले पानी।

0: ना बा, ना कतहूँ खुशहाली बा। मौन धरे बा चंदा मामा, ना कुछ बोले ना कुछ सनकै। मौन धरे बा चंदा मामा, ना कुछ बोले ना कुछ सनकै। ना बानर कुछ कूदे फांदे, ना कोयल चिरई चहके। आधा हिस्सा माँ अंधियार आहे, बस आधा हिस्सा ही चमके। जे गैन वहाँ पे इहे बताएन, चंदा मामा के ऊपर धरती लौके। जे गैन वहाँ पे इहे बताएन, चंदा मामा के ऊपर धरती लौके। जब चंदा मामा के घर ऐसे मनई घर बनई कैसे। चंदा मामा के घर ऐसे तो मनई घर बनई कैसे। ना पानी के नहर वहाँ बा, बिन पानी जी ब्या कैसे। मामा के आंगन घर बनवा, मनई मन मा ठाने ऐसे। हार नहीं मानत मनई, सपना पूरा होए ऐसे। हार नहीं मानत बा मनई, सपना पूरा होए ऐसे। पंचो आगे देखा, चिरई हमारे आपके घर के आसपास हमेशा रहत रही हैं और वो बाटी, लेकिन इनका संख्या लगातार घटत चली जाती है। ए पर सोचे के बहुत ज्यादा जरूरत बाटे, जैसे अपने गीत खत्म हो गए, लुप्त हो गए, अपना ही दिखाई पड़ते हैं, ऐसे दूसर चिड़ई के नंबर ना इतिहास के पन्ना में जाए पावे, एकरे बारे सोचे के जरूरत है। सुने आप,
1: जंग लड़त चिड़ई बाटी, जंग लड़त चिड़ई बाटी। आपन जान बचावै का टुकुर टुकुर चारु मुँह देखें। आपन जान बचावै का गौरैया अब टुक टुक देखें। खुंथा कहाँ बनावै का इनकी जान पे आफत बढ़िया। रहन सहन बचावै का, रहन सहन बचावै का। गिद्ध राज जंग हारी गैन अब कतहूँ नजर नहीं आवत। गिद्ध राज जंग हारी गैन अब कतहूँ नजर नहीं आवत। बहुत बड़ा बलशाली पक्षी आसमान तक रहन धावत। रावण से लड़ी गवा आसमा, पंजय पंजा रहन मारत। मीठा जहर असर कई गवा, जीवन बचा नहीं कौनो हालत। कुछ पागल हैं ये धरती पे जहर।

मन पै बढ़ गया आफत, सरकार तो कुछ अहै चेते, मूल जनता अबे अहै सोवत, हवा बयार मा धुआं मिला बा, यहू से रोग बढ़त बाटे, साफ तालाब नदी नाही बा, यहू म जहर बढ़त बाटे, दोना पत्तल प्लास्टिक कै कचरा, यहू से जहर बढ़त बाटे, जल प्रदूषण बढ़त अहै, यहू से चिरई कै जीवन घटत अहै, जल प्रदूषण बढ़त आहे, यहू से चिरई के जीवन घटत आहे, जंग लड़त चिरई बाटी, आपन जान बचावे का, टुकुर टुकुर चारियों मुंह देखें। पंचो आगे देखें, पहाड़ पहाड़ बहुत हितकारी है, और रंग रंग पहाड़ है, कतो सूखा है, कतो बर्फ ओढ़े है, कतो एकदम हरियर पेड़ से लदा है। आगे सुने, माटी तोहरे रूप निराला, माटी तोहरे रूप निराला, बड़ा बड़ा सब तोहरे पाला, कतहूँ कै माटी पाथर बनती, आपन गुण सब ओह माँ भरती, पर्वत बहुत रूप माँ होतय, रंग तरह तरह के रंग माँ होतय, कौन पर्वत सूखा रहतय, ऊह पर झाड़ पेड़ ना उगतय, कौन पर्वत मन का भाए, ओ पर हरे पेड़ लहराए, कौन पर्वत बर्फ लपेट।

के टकराए। इंद्र देव कै बादल सेना, पर्वत लड़त है ताने सीना। इंद्र देव कै बादल सेना, पर्वत लड़त है ताने सीना। उमड़ घुमड़ कै बादल आवै, उमड़ घुमड़ कर बादल बरसे। रेगिस्तान दो बूंद कतरसे, बड़ी बड़ी जौन नदियाँ निकले। जीवन देती सबको नदियाँ, पर्वत है हमदर्द हमारा। जीवन कै बना आए सहारा, आदि समय से आज तलक। रक्षक अली रहा सहारा, रक्षक अली रहा सहारा। माटी तो रहे रूप निराला, बड़ा बड़ा सब तो रहे पाला। पंचो माँ, माँ सबके है और सबके बहुत प्यारी माँ है। मनई से लेके जानवर तक माँ बहुत प्यारी होते। हम तो देखत हैं जन्नत राह माँ घूमत फिरत। हम तो देखत हैं जन्नत राह माँ घूमत फिरत। घाम गर्मी बरखा जाड़ा ओस माँ घूमत चलत। अपने सब घर से निकालिन, चल यहाँ से दूर जा। भीख के टुकड़ा पे देखे ठोकर का सहते फिरत। अपना मुकद्दर मान के हम लाल का

ता झर झर पानी, पर्वत इतना है हिकारी, यही से होते बरसा भारी। मानसून कै तेज हवाएं, इन्हीं से आकर

माघो मत फिरत पाथर दिल सब होई गयन, पाथर दिल सब होई गयन है जे जिगर के टुकड़ा है। अब कहाँ जाई खुदारा पास सब अपने राहत, राई राई पाई पाई बांट कर सब लय लेहन। वृद्ध आश्रम भेजत हैं पक्का घर अपने।

0: का घर मा राहत, माई कहे मुँह ना खुले, माई कहे मुँह ना खुले, बद्दुआ के वास्ते अली ने देखा है माई के अरमान सब जलते जलत। हम तो देखत हैं जन्नत राह मा घूमत फिरत, घाम गर्मी बरखा जाड़ा ओस मा घूमत फिरत, भीख के टुकड़ा पे देखे ठोकर का सहते फिरत।
1: हाँ भैया देखा
2: देखा ये लोक भाषा कविता पाठ रहा बरसाती अली का।
1: जी जी
2: अब भैया देखा एक बात, बार बार जितने लोग कृषि के विशेषज्ञ हैं वैज्ञानिक लोग हैं और बार बार जो उन्हें की कहत हैं, एक प्रचार प्रसार भी बहुत बढ़ चढ़ के हो ही रहा बाकी, भैया रासायनिक खाद पर निर्भरता लोगों के कम करे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और भाई देखा जैविक खाद का लोग प्रयोग करें, बर्मी कंपोस्ट का लोग प्रयोग करें, तो देखा आज वही विषय पर बड़ी अच्छी एक जानकारी बा कि बर्मी कंपोस्ट तैयार करने का विधि का बा, कौन ढंग से होके तैयार किया जाए।
1: जी जी।
2: एक पर देखा ब्रह्मदेव सिंह से अवधेश मिश्र का बातचीत है, हम कहीं कि पंच भैया की सुनवाई दिया।
1: बिल्कुल सुना दो, तो जरूर बहुत जरूरी काम है।

0: हाँ देखे भैया, अपने किसान भैया बहनी खेती किसानी करत हैं। और मुला एक बात बा, अगर हमरे किसान भैया बहनी थोड़ा सा चेती जाए और अपने खेते में भाई हरी खाद के या कंपोस्ट के खाद के, और नहीं तो हम तो कहा कि वर्मी कंपोस्ट के अगर प्रयोग करत हैं, तो निश्चित रूप से उनके खेते के जन उर्वरा शक्ति बाटे वो बढ़ जात है। दूसर बात ये बा कि जो माटी की संरचना बा वो भी भैया बनी रहत है। तो वर्मी कंपोस्ट का बाटे यही के बारे में जानकारी देव खाती आज भैया हमने बीचे में आए हैं श्री ब्रह्मदेव सिंह। ये भैया प्रगतिशील किसान हैं और बड़ा जानकार मनई हैं। तो ये बताइए हैं कि भाई बर्मी कंपोस्ट का बाटा है, एकर बनावे के तरीका का बाटा है, और ऐसे का लाभ बाय हमारे किसान भैया बहन के। तो भैया क्या तन की फरियाई
1: बर्मी कंपोस्ट का मतलब है कि केचुओं द्वारा कंपोस्ट की खाद तैयार करना।
0: जी
1: हमारे इस प्रकृति में केचुए की तमाम प्रजातियां पाई जा

0: जाति हैं, उसमें कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे कृषि अवशेष को खाकर उससे खाद तैयार करती हैं
1: जी।
0: और हमारी ये खाद जो होती है इसमें अपेक्षाकृत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम आदि तत्वों की मात्रा अधिक होती है।
1: बिल्कुल, जैसे आप बताए हैं कि भाई मैग्नीशियम, पोटास,
0: नाइट्रोजन, फास्फोरस
1: जी जी मात्रा बढ़िया होता है। अब हम जानना चाहब कि भाई वर्मी कंपोस्ट है काय करे बारे में जानकारी लेक बाद कि अगर बनावे चाहत हैं हमारे किसान भैया बहनी वर्मी कंपोस्ट तो उन्हें भाई जानकारी ना बाटे और बनावे का तरीका ना मालूम है तो बनावे की विधि कैसे है भैया?
0: पहले तो हमको किसान भाइयों को चाहिए कि हम किस प्रकार के केचुओं का चयन करें। विश्व में केचुओं की हजारों प्रजातियां हैं लेकिन तीन चार प्रजातियां ऐसी हैं जो कि हमारे कृषि अवशेष को खाकर केचुए की खाद तैयार करती हैं। उन प्रजातियों में पहली है आइसेनिया फोइटिडा, यूडिलस यूजेनी और तीसरी प्रजाति है पेरियोनिक्स एक्सकेवेट्स।
1: तो ये भाई उन्नतशील प्रजाति हैं जौन केचुआ भाई जौन ऐसन पदार्थ खाए के खेती किसानी वाला वो भैया खाद में परिवर्तित कर देता है।
0: जी जी जी जी।
1: और दूसरा तरीका है भाई अगर ये पता चल गया कि कौन प्रजाति केचुआ उपयोगी बा है तो ओका लायन तो का तरीका बा बनवाए के तनी के बारे में बताऊं।
0: केचुआ वहीं जीवित रह पाएंगे जहाँ पर्याप्त नमी होगी
1: जी।
0: तो जिन पदार्थों को हम केचुओं को खाने के लिए देंगे उनमें कम से कम 35-60% तक की नमी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और इसी नमी में उनके जीवित रहने, इससे अधिक अगर नमी रहेगी तो केचुए हमारे सर्वाइव नहीं करेंगे, बचेंगे नहीं
1: जी। मतलब नमी एक सीमित मात्रा में होना चाहिए जितना उन्हें उपयोगी पाए।
0: जी जी, 35-60% नमी उनके लिए होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ।
0: और उनके लिए पर्याप्त भोजन जो है
1: जी,
0: जिस हमारे कृषि अवशेष में 20-40% कार्बन नाइट्रोजन वाले जो जैविक पदार्थ हैं वही उनके भोजन के लिए कार्य करते हैं।
1: भैया जैसे कि कौन कौन चीज, जैसे गोबर भी है
0: ना? हाँ, गोबर है, केले की पत्ती है, सूखी पत्ती है, पुआल है, लकठा है, जो भी हमारे कृषि के बेकार की सामग्री है जिसको कि हम उपयोग नहीं करते
1: जी,
0: जिसको हम उपयोग नहीं करते उन सबको सड़ा के हम इनको दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब कि जौन भाई कृषि अवशेष बाटे उसे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं।
0: अब ओकर निवेदन ही भाई कि ओकर तरीका यह है कि ई कृषि अवशेष, ई जौन हमार जैविक अवशिष्ट है एका उपचारित करके हम उनका देव, क्योंकि ई जैविक में जौन है जब ये प्रक्रिया शुरू होते है तो हमें तापमान बढ़ जाता है। ई तापमान 35-65 तक हो जाता है। तो जो 35-65 तक तापमान हो जाएगा तो इसमें हमारे केचुए जीवित नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें ये जैविक अवशेष को, जैविक अवशिष्ट को, हमें गोबर को घोल कर इसमें इस अवशिष्ट को फैला के गोबर के घोल और पानी के साथ इसमें छिट्टा पर्याप्त नमी बना के त्रिपाल से ढक देते हैं। और त्रिपाल से ढक देने के बाद इसमें फिर ये होता है कि इसका तापमान बढ़ता है। जब डीकम्पोज हो जाता है, ये आधा सड़न की स्थिति में आ जाता है और इसका तापमान 35-65 से घट के 35 के नीचे आ जाता है, तब हम वर्मी बेड में इसका इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा हम ये जानना चाहब कि भाई ये तो आप बताएं फरिया कि भाई वर्मी कंपोस्ट कैसे बनवे, का का डालें हमें, और दूसरी बात ये है कि वो हमें कुछ ईटा उंटा के जोड़े खोद है।
0: हाँ हाँ,
1: तो बड़े ओका कैसे बाटे, का तरीका बा बनवे का, का का डालें, कैसे खाद तैयार होते हैं?
0: तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि हमका ऐसी जगह का चयन करें चाहिए जहाँ नम हो, छायादार स्थान हो, या तो उनके लिए जहाँ हम ये बेड बनाएंगे उनके लिए शेड होना चाहिए। तो हमें नमी तथा छायादार स्थान होना चाहिए और केचुए के विकास के लिए अच्छा होता है पेड़ अथवा किसी शेड के नीचे हमको 3 मीटर बाई 1 मीटर लंबा, 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा और लगभग 2 फीट गहरा, 0.6 सेंटीमीटर गहरा आकार का बर्मी बेड बनाना चाहिए
1: जी।
0: नीचे हमें इसमें यह करना चाहिए कि ईंटे के टुकड़े या छोटे पत्थर कंकर पहली सतह बना देनी चाहिए, या तो हमको इसमें एक प्रकार से नीचे या तो बेड में घुलाई इत्यादि कर देना चाहिए और उसके बाद फिर हमें इसके ऊपर 3-6 इंच की एक सतह जो है चाहे केले की पत्ती हो, चाहे हमारी सूखी पत्ती हो, चाहे कृषि

0: सेसो घासो इसकी एक पत्ती हमको उसमें डाल देनी चाहिए
1: जी, जी।
0: और उसके बाद फिर हमें 9 से 12 इंच तक आधी सड़ी हुई जो हमारा अवशेष है, जिसको हम पहले आपसे निवेदन किए हैं कि जो कृषि अवशेष हमारा हम गोबर में घोल के उसमें पानी छिड़क के उसको 15 दिन 20 दिन में उसका तापमान कम करके हमारा जो सुरक्षित है, उस कृषि अवशेष को, उस अवशिष्ट को 12 इंच के मोटाई में उसको भर देते हैं
1: जी।
0: और भरने के बाद उसमें फिर कम से कम 2 किलो या अधिकतम 5 किलो तक केचुआ, 1 किलो में लगभग 1000 केचुआ होते हैं, तो 2 किलो से लेके 5 किलो तक केचुआ या 2000 से कम 5000 केचुआ हम बेड पे पूरा छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद हम पूरी बेड को जो है बोरी से ढक देते हैं नमी मेंटेन करने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए हम उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर देते हैं
1: जी।
0: अनुकूल अगर हमारा आर्द्रता है, अनुकूल तापमान है, हवामय परिस्थिति है, तो 25 से 30 दिन में बेड के ऊपरी सतह पर 3-4 इंच मोटी केचुए की खाद एकत्र हो जाती है।
1: अच्छा, 20 से 25 दिन में।
0: हाँ, केचुए खाद एकत्र हो जाती है, इसे हमें ऊपर से हटा लेना चाहिए। हटाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खाद ही हटाएं, खाद के साथ केचुए न हमारे केचुए न उसमें एकत्र हों।
1: अच्छा, मान लो खाद भाई जैसे कि बताओ थे कि 20-25 दिन में ऊपर एक परत के रूप में तैयार हो जाता है।
0: हाँ जी, जी, जी।
1: तो खाद निकालत समय का सावधानी बरतें?
0: खाद निकालत समय हमको खाद को ही हटाना चाहिए, खाद के नीचे ये केचुए अपना मल नहीं छूते, तो जो खाद तैयार हो जाती है इसको ये नहीं छूते, इसके नीचे रहते हैं, उसी खाद को हमको हटा लेना चाहिए। जहाँ केचुआ दिखाई पड़े वहीं हमको रुक जाना चाहिए और उस खाद को उठा के हमको एकत्र करके फिर हम उसके ऊपर हमको जो हमारे पास कृषि अवशेष बचा हुआ है उसी कृषि अवशेष को फिर हम उसमें ऊपर 3-4 इंच मोटा डाल देते हैं। मोटा डालने के बाद फिर हम उसपे बोरा वही ढक देते हैं। बोरा ढकने के बाद फिर हम उसमें नमी बना देते हैं और इस ढंग से फिर 7 दिन बाद हमको फिर खाद 3-4 इंच की मोटाई में फिर हमारी खाद तैयार हो जाती है। और फिर हमको यह प्रक्रिया हमको लगातार करीब 45 से लेकर 50 दिन तक करती रहने चाहिए और इस करते रहने में हमें कम से कम 8 बार कम से कम हमें खाद निकालने का अवसर मिलेगा। और 7-8 बार जब हम खाद निकालेंगे तो नीचे थोड़ा सा बच जाएगा।
1: जी जी जी,
0: जो नीचे हमें थोड़ा सा बच जाएगा तो उसमें केचुए की अत्यधिक मात्रा रहेगी, उनके अंडे, उनके कोकून ये सब रहेंगे, तो उनको हमको सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और इसी ढंग का जो दूसरा बेड हमारा तैयार हो इसमें पूरा का पूरा उसको डाल देना चाहिए, तो हमारा दूसरा बेड फिर इसी प्रक्रिया से शुरू हो जाएगा।
1: मतलब जो पहला बेड बना बाटे वह में खाद बने के बाद
0: जी, जी
1: भाई जब केचुआ अवशेष बच जाते हैं
0: हाँ जी,
1: भाई अपन फिर दूसर गड्ढा बनवे, दूसर बेड बनवे,
0: हाँ जी,
1: वो तैयार
0: जी जी जी,
1: और वही में फिर केचुआ का डाल
0: जी जी,
1: तो दूसरे गड्ढा का भाई खाद भी तैयार हो जाएगी।
0: जी जी, फिर यही प्रक्रिया उसके साथ होगी, फिर यही कृषि अवशेष जो हम गोबर से सड़ा के फिर हम उसमें डालेंगे, फिर हम केचुए की खाद निकालेंगे, ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी।
1: अच्छा अच्छा, एक बात ये बात कि भाई मान लो खाद तैयार हो गए, तो उकर पहचान का बात है कि अब ये खाद पूरी तरीके से बर्मी कंपोस्ट हुई है
0: जी। ओकर पहचान है कि जब बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है तो बिल्कुल चाय के सूखी पत्ती की तरह रहती है
1: जी।
0: और चाय की सूखी की पत्ती की तरह जब खाद हो जाए तो उसको जो है हम HDPC या प्लास्टिक के थैले में उसको हम बढ़िया सील पैक कर देते हैं कि जिससे उससे अधिक न सूखे। उसके पहले एक प्रक्रिया हम और अपना सकते हैं कि जो हम 85% खाद निकालते हैं केचुए की, तो अगर उसमें अधिक नमी हो तो उसको हमें पक्के फर्श पे फैला देना चाहिए। और पक्के फर्श पे फैलाने के बाद उसमें अगर जब नमी जो है 30 से 40% रह जाए, तो 30 से 40% नमी रह जाए तो हमको वही जैसे हमने आपसे निवेदन किया कि हमारे किसान भाई उसको प्लास्टिक के या HDPE सील में पैक करके उसको रख लें जिससे कि उसमें नमी कम ना हो।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप बताओ थे कि भाई अगर ज़्यादा नमी पाए तो फर्श पे उसका सुखवा लें और एक निश्चित मात्रा में जब नमी रही है तो उसका भैया पैकेट बना के रख लें।
0: जी जी,
1: सिंह साहब हम आपसे अब जानना चाहब कि जौन किसान भैया बहनी हमरे बर्मी कंपोस्ट तैयार करे चाहते हैं उन्हें बदे आप का सलाह देवे चाहते हैं, का इन्हें लाभ बाटे, का इन्हें हानि बाटे और खेती बदे कहाँ तक लाभदायक बा, थोड़ा सा हमारे किसान भाई बहन के

0: अपने हम अपने किसान भाइयों से बहनों से निवेदन करेंगे, पहली बार बर्मी कंपोस्ट की सफलता के लिए हमें कई गड्ढों का निर्माण करना चाहिए, कई बर्मी बेड का निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारे खाद बनाने की ये प्रक्रिया सतत चलती रहे। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है कि हमारे किसान भाई बहन जो हमारा कृषि अवशेष होता है, चाहे वो पुआल हो, चाहे लट्ठा हो, चाहे जो भी हो कृषि अवशेष, चाहे केले की पत्ती हो, तो अधिकतर हमारे यहाँ स्वभाव ये है कि हम उस कृषि अवशेष को जला देते हैं, तो उसको जलाना नहीं चाहिए, उसको सड़ा के उसमें हमें गोबर के साथ उसमें बेड में इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमारी खाद की मात्रा बढ़ जाती है।
1: जी जी बिल्कुल, जैसे कि आप बताओ थे कि जौन कृषि अवशेष बा ओकर निश्चित रूप से बर्मी कंपोस्ट बनवाए और ई खेत खाती बड़ा उपयोगी बात है। तो श्री ब्रह्मदेव जी सिंह बिल्कुल भाई, जैसे कि आप बताया है कि निश्चित रूप से हमारे किसान भैया बहनी एक एक करी हैं, इसे लाभ ले हैं। तो श्री ब्रह्मदेव सिंह जी आप यहाँ आएं और बर्मी कंपोस्ट का है और कैसे बनावें एक बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी है, ये कुल बताओ बदे आपके बहुत बहुत।
2: भैया
3: जी भैया,
2: देखा बर्मी कंपोस्ट तैयार करने के विधि का बा, बहुत बढ़िया ढंग से ब्रह्मदेव सिंह जी बताएं और देखा फरियाए फरियाए के अपन अवधेश भैया
3: पूछबो
2: की है बातचीत के। निश्चित तौर पे हम कहें कि देखा यह तरह का जो प्रगतिशील खेती किसानी का तौर तरीका बा, हर किसान भाई के अपनावे के चाहिए और अपने खेती किसानी में ओके अमल में लावे के चाहिए, यही से आपन पैदावार ज़्यादा बढ़ी। साथे साथे देखा जौन बर्मी कंपोस्ट का अगर लोग प्रयोग करिए ना, तो माटी का अपन गुणवत्ता भी बढ़िया बना रही, पैदावार भी बढ़िया हुई, साथे साथे भाई हम कहीं कि देखा खेती का लागत कम हुई।
3: मन्नू भैया एक बात जाना ना कि चाहे बर्मी कंपोस्ट हो और चाहे गोबर वाली खाद हो जौन घूरे में बनत, हम कहते कि दोनों में लागत ना के बराबर।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और घर ही का कूड़ा कबाड़ जोन बा और घर ही पे वही खाद बन जात बने, तो वोमेन ढोवाई देख बन खरीदवाई देख ब अपने हिसाब से खेते में डाल, रासायनिक उर्वरक का जरूरत एकदम न के बराबर हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और लागत भी कम हो, उपज भी बढ़िया
2: बढ़िया हो। भैया हम कहीं कि देखा हो अपन कार्यक्रम कैसा लगा पंच भैया के, किसान भैया के, अगर कुछ प्रतिक्रिया दिहा चाहत हो के अपन, सुझाव दिहा चाहत हो के,
3: हाँ या और कुछ जाने चाहत,
2: हाँ जाना चाहत हो के, तो देखा ओकरी खाती नंबर है बराबर बतावा जात है, तो नोट कर लें लोग 800-49-2650।
3: जी एक बार और बता दे भैया,
2: 800-49-2650। हम कहें कि देखा ये नंबर पर कौनो भी अपन सुझाव दे सकते हैं, कौनो भी अपन प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अब चले चलाओ के बेरा हो गए, तो पंचन से आगे लिया जाए, पंचों राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है देशगान।

अभी आपने सुना देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 92 स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

0: भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही KGMU पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
2: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज

0: सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं बरेली इज्जतनगर पीलीभीत पूरनपुर मैलानी गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर सीतापुर सिधौली मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया गोरखपुर संत कबीरनगर कुशीनगर महाराजगंज सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजेश मिश्र की वार्ता, स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य तिलक का योगदान।
1: लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महान राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, शिक्षक, अधिवक्ता, जन नेता तथा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रारंभिक और प्रमुख नेताओं में से एक थे।

जिन्होंने अपने मत एवं विचारों से न केवल स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी, अपितु उन्होंने तत्कालीन भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। वह स्वराज के प्रबल समर्थकों में से थे। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रभावित किया। तिलक एक महान विद्वान और दूरदृष्टा थे जिसे राष्ट्र लोकमान्य के रूप में जानता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। तिलक बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र थे। शिक्षा पूरी करने के उपरांत तिलक ने सरकारी नौकरी के लाभप्रद प्रस्तावों को ठुकरा दिया और राष्ट्रीय जनजागरण के महान कार्य के लिए स्वयं को समर्पित करने का निर्णय लिया। वर्ष 1890 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान करते हैं। 1900 से 1908 तक का समय भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जन्म का समय था। विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें इतिहास में लाल बाल पाल के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, हमारे राष्ट्रीय क्षितिज पर उभरते सितारों के रूप में सामने आए। इन तीनों ने जनता में एकता के बंधन को मजबूत कर भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इनके दल को गरम दल अथवा उग्रवादी दल कहा गया, जो कि उदारवादी दल की नरम नीति का विरोधी था। इनके उग्रवादी विचारों के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसके लिए इन्हें जिम्मेदार भी ठहराया गया। लोकमान्य तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की। उनके शब्दों में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने देश के कोने कोने में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्तेजना की एक नई लहर पैदा कर दी। यह उन्हीं और उनके सहयोगियों के प्रयासों का प्रतिफल था कि 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य का 4 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को विभिन्न क्रियाकलापों में शामिल किया गया तथा स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान के लिए उन्हें सक्षम बनाया गया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा, जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तिलक उपनिवेशों में प्रचलित स्वशासन की प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, वह तो स्वराज्य चाहते थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास रखते थे और उनमें सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था कि कांग्रेस गुड़ गायक संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। जहां पहले स्वायत्तता की मांग होती थी, अब स्वराज्य की मांग होने लगी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही मानती थी। इन्हीं में से एक सर वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट अर्थात भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। लोकमान्य तिलक की राजनीतिक विचारधारा अन्य समकालीन विचारकों से भिन्न थी। ये भारतीय अंतःकरण में आमूल परिवर्तनवादी थे। इन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अंग्रेज सरकार को चुनौती दी तथा त्याग, बलिदान तथा कष्ट सहने के नए अध्याय का श्री गणेश किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित किया। इस मामले में वो गांधी जी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। इन्होंने शिवाजी उत्सव व गणपत त्यौहार प्रारंभ किया, जिससे जनता में राष्ट्र सेना की भावना जागृत हो। लोकमान्य तिलक ने अपने विचारों के प्रसार तथा जनता को आंदोलन से जोड़ने के लिए 2 साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया, जिनमें से एक अंग्रेजी में द मराठा तथा दूसरा मराठी भाषा में केसरी नाम से था। इन दोनों ही साप्ताहिक पत्रिकाओं ने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक प्रथम कांग्रेस नेता थे जो स्वतंत्रता संघर्ष में कई बार जेल गए। 1882 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 4 माह की कैद की सजा दी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा
कोल्हापुर।

0: राज के प्रतिष्ठता करने पर कड़े शब्दों में अंग्रेज़ों की निंदा की थी। इसके पश्चात 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा दो अंग्रेज़ों की हत्या करने पर उनका समर्थन किए जाने के कारण 18 माह के कड़े कारावास की सज़ा दी गई। तिलक इस अग्नि परीक्षा से अधिक शक्तिशाली देशभक्त के रूप में सामने आए। वर्ष 1907 में तिलक ने केसरी में दो लेख द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून अर्थात देश का दुर्भाग्य तथा दीज रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग लिखे, जिसमें यह मांग की गई कि सरकार को देश में बदली परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। इन लेखों में सरकार के अत्याचार की नीतियों की कट आलोचना की गई, जिनके प्रति ब्रिटिश सरकार द्वारा रोष प्रकट किया गया। तदंतर राजद्रोह के आरोप में वर्ष 1908 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 6 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल में कैद कर दिया गया। यह पहला अवसर था जब किसी क्रांतिकारी को राजद्रोह के आरोप में जेल हुई थी। मांडले जेल में रहते हुए तिलक ने विशद दार्शनिक पुस्तक गीता रहस्य लिखा, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता का संदेश और उनकी अपनी व्याख्या शामिल है। और तिलक प्रथम टीकाकार थे जिन्होंने गीता के प्रवृत्ति मार्गी स्वरूप को सामने रखा। वर्ष 1914 में मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक होम रूल आंदोलन से जुड़ गए। जब एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की तो तिलक उनके साथ जुड़े। एनी बेसेंट के साथ तिलक ने जो संयुक्त रूप से आंदोलन चलाया वह उनकी जन आधारित राजनीति का अंग था। होम रूल का प्रचार करने के लिए उन्होंने एनी बेसेंट के साथ पूरे राष्ट्र का दौरा किया। 1915 में तिलक ने हिंदू स्वराज संघ शीर्षक के अंतर्गत अनेक संपादकीय लिखे, जिसके माध्यम से उन्होंने होम रूल की संकल्पना को प्रस्तुत किया और इसे प्राप्त करने की योजना रखी। वर्ष 1918 में तिलक ने होम रूल के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की तथा वहां जनसभाओं को संबोधित करके एवं ब्रिटिश लेबर पार्टी के प्रमुख नेताओं से संपर्क करके होम रूल आंदोलन को तेज किया। साथ ही लेबर पार्टी के नेताओं का विश्वास जीतने में भी सफल रहे। वर्ष 1919 में भारत वापस आए तथा पुनः स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। तिलक हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे और इस बात के प्रति सजग थे कि जब तक देश एक नहीं होगा तब तक विदेशी शासन को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर 1916 में लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों समुदायों के बीच सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जो आगे चलकर भारतीय एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देने में सहायक साबित हुआ। लोकमान्य तिलक का संपूर्ण जीवन कर्मयज्ञ था। वह राष्ट्र को निद्रा से जगाने के लिए निरंतर निस्वार्थ रूप से कार्य करते रहे। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, संगठित करने की अद्वितीय क्षमता और इन सब से बढ़कर अपने में तथा अपने विचारों में प्रगाढ़ विश्वास द्वारा उन्होंने जनता और राष्ट्र के लिए सदैव बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। इस प्रकार देश के राजनीतिक क्षितिज पर लोकमान्य तिलक का उदय सचमुच देश के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। भारतीय इतिहास के संकटपूर्ण दौर में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नए प्रकार का नेतृत्व प्रदान किया जो बौद्धिक शक्ति संपन्न था, जिसका दर्शन सुस्पष्ट था और जो देशभक्ति से ओतप्रोत था, किंतु इसकी जड़ें और शक्ति अशिक्षित और निर्धन जन समूह में निहित थी। अभिजात्य, पाश्चात्य और कुछ शिक्षित वर्ग राजनीतिक परिदृश्य से चलाए जा रहे स्वतंत्रता संघर्ष को करोड़ों गरीबों और दलितों से शक्ति प्राप्त कर इसे जन आंदोलन में परिवर्तित करना लोकमान्य तिलक द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को दी गई नई दिशा के कारण ही संभव हुआ। अतः निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि तिलक युग हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी युग था।
1: स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य तिलक का योगदान, अभी आपने सुनी इस विषय पर राजेश मिश्र की वार्ता। इसी के साथ

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
1: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
2: पहली बार
3: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीता भारद्वाज के स्वर में भजन और गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सूरदास की इस रचना के साथ।

संगीता भारद्वाज के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं जब वी मेट फिल्म का गाना, जिसे गाया है उस्ताद राशिद खान ने। गीत इरशाद कामिल का है और संगीत है प्रीतम का।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म का गाना, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। गीत इरशाद कामिल का है और इसे सुरों में पिरोया है सोहेल सेन ने।

एक पहेली लीला। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना, जिसे गाया है तुलसी कुमार, आलम खान, ऐश्वर्या मजूमदार ने। गीत है कुमार का और संगीत है उजैर जायसवाल का।

0: राब्ता फिल्म में अभी आपने सुना अरिजीत सिंह, शादाब और अल्तमश फरीदी को। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का था और संगीत तैयार किया था जैम्ब ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर। प्रस्तुत कार्यक्रम विज्ञान जगत, इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह से दीपक राय की बातचीत। विषय है 12वीं के बाद मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के अलावा करियर संभावनाएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विज्ञान कार्यक्रम में। श्रोताओं आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि हमारे देश में विज्ञान की दिशा में जो स्कूल हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उसमें एडमिशन कैसे मिलता है, उनकी पढ़ाई किस तरह होती है। कोई भी छात्र जो कि 12वीं पास करता है, हर व्यक्ति, हर छात्र, हर उस पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बेटा

0: का पुत्र, उसका पुत्री, या वो छात्र देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़े, उस स्कूल से शिक्षा प्राप्त करे और अपना करियर आगे की तरफ ले जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए जो एज होती है 12वीं क्लास की, जनरली 15 से 17 साल के बीच के उम्र के होते हैं, जो कि एक टीनेजर उम्र को कह सकते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारा डिसीजन लेने में उनको जो है दुविधा का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस तरह अवेयर नहीं है कि उनको अपने बेटे को, पुत्रों को या पुत्रियों को किस दिशा में भेजना चाहिए, किस तरह के कोर्सेज का चयन करना चाहिए। ये आज भी हमारे लिए हर घर में एक चैलेंज है कि क्या तय किया जाए कि हमारा बेटा, हमारा पुत्र या छात्र स्वयं क्या पढ़े और किस दिशा में आगे जाए। आज हम बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के भौतिकी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह को। आपने लंबे समय तक विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया है, अभी भी कर रहे हैं, और आपने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। आपका देश के बाहर भी एक संस्था में अनुभव रहा है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का विज्ञान के क्षेत्र में करियर, और विज्ञान के इतर, क्योंकि भारत में एक प्रीमियम सर्विस है सर, विज्ञान और मेडिकल में जाना। प्रत्येक छात्र, या फिल्में भी उस पर बन चुकी हैं कि जैसे ही घर में बच्चा पैदा होता है, कह दिया जाता है कि बच्चा या तो मेडिकल करेगा या तो नीट की तैयारी करके वो डॉक्टर बनेगा। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इनके इतर भी कोई करियर है जो कि बेहतर ग्राफ दे सकता है किसी भी छात्र को या किसी भी पेरेंट्स को कि हाँ, उनका बेटा सही दिशा में जा रहा है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि जो हमारी प्रीमियम संस्थाएं हैं, प्रीमियम एग्जाम्स है, जिसको हम IIT और नीट कहते हैं, इसके बारे में हमें बता दें कि ये किस तरह के एग्जाम्स होते हैं, किन किन विश्वविद्यालयों में से एडमिशन होता है, और इनका जो कैरियर ग्राफ है वो क्यों इतना हाई है।
1: धन्यवाद दीपक जी। देखिए, अब तो मुख्यतः दो ही एग्ज़ाम हैं, IIT JEE और नीट। नीट से आप पूरे इंडिया में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, और IIT JEE के थ्रू उनके दो चरणों का एग्ज़ाम है। उसमें जो दूसरा चरण है, जिसको हम एडवांस कहते हैं, उससे जो है आप IITs में जगह पा सकते हैं, और उसके पहले वाले जो चरण से बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आप जगह पा सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: जिसको हम NIT
1: हाँ,
0: NIT कहते
1: NIT
0: हैं।
1: है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो भी मिल जाए,
0: अच्छा
1: मेंस और एडवांस के तर्ज पे होता है। तो अब इसको बहुत सरल कर दिया गया, आपको दो एग्जाम देना है, आप अपनी मेरिट देखिए और मेरिट के हिसाब से आप प्रवेश प्राप्त करिए। अब यहाँ भी एक समस्या ये है, जैसे हम कहते हैं कि जो भी फील्ड है उसमें स्किल्ड लोगों का होना और अच्छी जगह से पढ़ाई करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको अच्छी जगह पढ़ेंगे तो आपको अच्छे शिक्षक मिलेंगे, आपको एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कहा जाता है कि आप इंजीनियर बन जाओ, काम चल जाएगा, ऐसा है नहीं। हमारे पास एक बेरोजगार इंजीनियरों की बहुत बड़ी फौज तैयार है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी छात्र है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल है, ये आपका प्रूफ हो चुका है, थ्योरेटिकली प्रूफ है। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग करके ही जीवन करेगा, मेडिकल करके ही जीवन यापन करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि उसका किस में उसके इंटरेस्ट है, उसका स्किल किस में है। तो जैसा मैंने बताया कि एक IIT का एग्ज़ाम दीजिए तो इंजीनियरिंग में पर चल जाता है, नीट दे लीजिए तो मेडिकल में एडमिशन होता है, लेकिन अच्छे रैंक आने चाहिए, अच्छी जगह पर आपका प्रवेश होना चाहिए। भरते सब लोग हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों को पता होता है कि मैं इसमें जाने लायक हूँ या नहीं हूँ। ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती नहीं आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सारे और भी स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, उसमें प्रवेश लेना चाहिए।
0: आपने स्किल ओरिएंटेड कोर्स की बात की, तो अगर जो प्रीमियम एग्जाम्स जो आपने बताया कि नीट और मेडिकल, हर पेरेंट्स को भी यही सपना होता है कि उनका बेटा या तो इंजीनियर बने और या जो है डॉक्टर बने। ये हमारी समाज ने एक तरह से धारणा भी गढ़ दी कि अगर आप इन दोनों एग्जाम्स में फेल होते हैं या इनको नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप उतने मेधावी छात्र नहीं माने जाएंगे। इस धारणा को बदलने की ज़रूरत है, तमाम तरह के कोर्सेज आ गए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी इस अपनी धारणा को, उनकी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे बदला जाए।
1: आप तो इंजीनियरिंग और मेडिकल पे चले गए, उससे और पहले आइए, क्लास 10th के बाद कितने लोग आर्ट्स लेते हैं।
0: जी
1: जनरली आर्ट्स उन्हें लेने के लिए कहा जाता है, वही लोग लेते हैं जो जिनकी मैथमेटिक्स एकदम वीक होती है, जिनको नहीं पढ़ने आता है। कई लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद, जिनको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो BA करने चले जाते हैं, उनको भी एक समाज का एक सेक्शन जो है बहुत कमज़ोर छात्र मानता है। लेकिन सोचिए, जो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होगा उसकी क्या क्वालिटी है, कितना शानदार है। जो हिस्ट्री का प्रोफेसर, उसकी क्वालिटी कितनी शानदार है। तो किसी भी जब फील्ड में आप जाएंगे, आप हायर स्टडी लेते हैं तो आप मूल्यवान हो जाते हैं, आपके पास नॉलेज हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट हो, आप उसमें खूब इन्वेस्ट करिए, पढ़ने में खर्च करिए, अच्छी जगह से पढ़िए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे देखिए, बच्चा BA भी कर रहा है अगर,
0: जी
1: तो जब वो BA करने जा रहा है तो इसलिए BA नहीं करे कि उसको साइंस नहीं आता है, वो इसलिए BA करे ताकि क्योंकि उसके पास मानविकी विषयों की समझ अच्छी है, उसके पास इमोशंस हैं उसके पास।

0: वो हिंदी विषय कब कोई पढ़ना चाहेगा? जब उसके पास इमोशंस होंगे, जब उसके पास साहित्य की समझ होगी। संस्कृत वो तभी पढ़े, इकोनॉमिक्स वो तब पढ़े जब उसको ये समझ हो कि कैसे आपका अर्थव्यवस्था में किन किन कारणों की जरूरत होती है, उसके अर्थव्यवस्था के प्रति उसका लगाव हो। पॉलिटिकल साइंस भी सब्जेक्ट वो तब पढ़े। अब अगर उनको केवल विषय के रूप में पढ़ता है कि अच्छा उसको मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती तो लो हम बीए कर लें, फिर आगे तैयारी कर लेंगे, और बीए में उसको कोई 3 सब्जेक्ट मिल गया, तो बहुत बेहतरीन करियर नहीं बनता। संभवतः तो एक नौकरी मिल जाती है, जो कि हमारा सेट पैटर्न पे एग्जाम्स होते हैं, तो नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन करियर रुचकर नहीं होता है।
1: जो आजकल नए कोर्सेज आए हैं देश भर में, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग राष्ट्रीय स्तर पर उनकी परीक्षाएं होती, आप उनके बारे में बताएं कि वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कौन कौन से संस्थाएं हैं जहां पे प्रवेश लिया जा सकते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के इतर।
0: दीपक जी, आप कंपेयर करिए प्रयागराज के किसी बच्चों को और दिल्ली के बच्चों से कंपेयर करिए। आप एक सैंपल लेके देखिएगा, दिल्ली के अधिकतर बच्चे एक अपनी कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी कर रहे होंगे। यहाँ हमारे बच्चे कोर्स पूरा करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, और आप देखेंगे कि जो दिल्ली के बच्चे हैं वो एक समय के बाद अर्निंग उनकी बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वो स्किल बेस्ड करते हैं। उनको नए नए कोर्सेज पता चले, नए कोर्सेज को उन्होंने पढ़ा, मार्केट भी उनके यहाँ उपलब्ध है, उनको पढ़ते हैं और तुरंत नौकरी में आ जाते हैं।
1: वो सर, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जरा विस्तार से
0: जैसे
1: हमारे।
0: देखिए, मान लीजिए किसी को कंप्यूटिंग जिसकी अच्छी है, एनालिटिक्स जिसका बढ़िया है, वो साइबर सिक्योरिटी में काम कर सकता है, डेटा साइंस में काम कर सकता है, तो हम जो कोर्सेज पढ़ते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स पैकेज एक अलग है, लेकिन अगर उसमें आप डेटा साइंस स्पेशली पढ़ें, आप उसमें साइबर सिक्योरिटी स्पेशली पढ़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस समय आया हुआ आप उसको स्पेशली उसको पढ़ें, कैसे उसका उपयोग हो रहा है, किस प्रकार उसका टेक्नोलॉजी में उपयोग कर सकते हैं आप एक डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये मार्केटिंग आना चाहिए जो हम एमबीए में पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ आप देख, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोर्स होता है। अच्छा, इन कोर्सेज को करने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर बने हैं, आप वहाँ मत जाइए, डेडिकेटेड सेंटर्स हैं इसके लिए। आईआईटीज बहुत सारे कोर्सेज चल करा रही हैं, आप इसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे कोर्सेज आईआईटीज करा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि स्किल इंडिया के प्रति, तो स्किल इंडिया के प्रति जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने क्लासरूम कोचिंग के अलावा ये कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे आईआईटी दिल्ली, आईआईसी बेंगलोर सिलिकॉन के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे कोर्सेज वो पढ़ा रहे हैं, तो इन कोर्सेज को आप वहाँ से कर सकते हैं। आप LLB एक ट्रेडिशनल कोर्स है, देखिए उसी कोर्स को BLLB का टर्म आया, BLLB के से जो बच्चे हैं वो अधिकतर कॉरपोरेट में जा रहे हैं, तो इन कोर्सेज को आप अच्छी जगह से करेंगे। फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स है जिसका इतना बेहतरीन एग्जाम आपका होता है,
1: नहीं, निफ्ट नाम
0: निफ्ट
1: से
0: होता है,
1: एग्जाम जो
0: तो
1: है।
0: वहाँ से आप जो बड़े बड़े इंडस्ट्री को जो फैशन डिजाइनर मिलते हैं, आपके अंदर कला होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो MITJEE का एग्जाम होता है उसी में एक पोर्शन आर्किटेक्चर के लिए भी होता है, आर्किटेक्चर का भी अलग से एग्जाम होता है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन है, IIT रुड़की इसके लिए बहुत ही फेमस है, इन जगहों से आप इन जगह कोर्स कर सकते हैं। हम लुटियंस दिल्ली की बात करते हैं, लुटियंस कौन थे जो उन्होंने दिल्ली को जिन्होंने
1: जिन्होंने
0: आर्किटेक्ट क्या
1: डिजाइन किया,
0: बनाया,
1: जिन्होंने
0: तो
1: राजा
0: आर्किटेक्चर बहुत बड़ा चीज़ होता है।
1: जी। जैसे अक्सर पेरेंट्स जब भी IIT का या नीट का नाम लेते हैं तो वो टॉप कोर्सेज जो उसमें हैं, ज्यादातर समझ पेरेंट्स की या छात्र की होती है कि अगर हमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिला और या उसके एक दो नीचे जो कोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला तो उनको लगता है कि ये कोई मतलब नहीं है करने का, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। आपने बताया कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो कि एक बेहतरीन जो है कोर्स माना जाता है आर्टिफिशियल
0: हाँ, जरूरी नहीं
1: इंटेलिजेंस।
0: कि वो इंजीनियरिंग फिर पढ़े ही पढ़े, दूसरी जगह चले
1: इसके
0: जाए।
1: अलावा जो है हम अक्सर अखबारों में भी पढ़ते हैं कि होटल मैनेजमेंट में भी जो है नए नए पेशेवर लड़कों की जो है एंट्री हो रही है और वो एक अच्छा सैलरी पैकेज और एक अच्छी लाइफ स्टाइल अवेल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह के एग्जाम्स कैसे होते हैं और कौन इनको आयोजित करता है?
0: अब देखिए, होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है ये बहुत ही बेहतरीन, और इसमें बहुत सारा पैकेज है। आप कई सारे मेरे साथी हैं, जूनियर्स हैं, अगर आप इलाहाबाद के ही परस्पेक्टिव में देखेंगे तो आपको एक दो होटलों के अलावा बढ़िया होटल नहीं दिखेंगे। कारण यह है कि वो केवल होटल चला रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं है उसमें।
1: मैनेजमेंट
0: जब आप भोजन करने जाते हैं, आप रहने जाते हैं, और अगर वो एक थ्रू द प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू आपको जो सर्विस मिलता है आप उसको एंजॉय करते हैं, तो आप पे ज़्यादा करते हैं, तो ये पूरा इंडस्ट्री होटल मैनेजमेंट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक टूर एंड टूरिज्म की यूनिवर्सिटी इस समय चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे जगहों पे वोकेशनल कोर्सेज चला रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जो आपका ये JB पंत इंस्टीट्यूट है
1: जी
0: उसके
1: झूसी में
0: हाँ झूसी में, उसके डायरेक्टर प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सर बता रहे थे, वो भी एक कोर्स खोलने जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन लोग स्किल्ड होने चाहिए और प्रोफेशनल होने चाहिए, ये बड़ा

0: पढ़ा, प्रोफेशनलिज्म आएगा आपके नॉलेज से, आपके अंडरस्टैंडिंग से।
1: आपने बार बार स्किल का जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है 2015-16 के दौर में स्किल इंडिया प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया कि देश की जनता जो है जिनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है, तो उस स्किल को बढ़ाने के लिए इस तरह के कोर्सेज लॉन्च किए। कुछ बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट का सर आप हमें नाम बताएं जहां से जो बच्चा अगर 12वीं के बाद उसको इंजीनियरिंग नहीं करना है लेकिन उसको एक स्किल सीखनी है, उसको पूरा कंप्यूटर नहीं जाना लेकिन कंप्यूटर की कोई स्किल सीखनी है या आर्किटेक्चर की कोई स्किल सीखनी है, डेटा साइंस की कोई स्किल सीखनी है, तो वो क्या करना चाहिए, उसको कहाँ पर संपर्क करना चाहिए, कौन कौन सी साइट्स पर उसे जाके चेक करना चाहिए?
0: देखिए आजकल तो जितने भी प्रीमियर आईटीज हैं सभी ने एक कोर्सेज कर दिया है, ये गवर्नमेंट का चूंकि डायरेक्शन है तो उन्होंने कोर्सेज जो है वोकेशनल कोर्सेज के रूप में, स्किल कोर्सेज के रूप में यूनिवर्सिटीज़ को नई शिक्षा नीति में ऐसा कर दिया। जैसे आप हमारे यहाँ आएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ ने, उसने भी वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए हैं, हम उसमें भी आपको ट्रेनिंग देंगे। आप अगर इस डिज़ाइंड और स्पेसिफिक कोर्सेज की बात करेंगे तो जैसे IIT रुड़की आर्किटेक्चर के लिए कोर्स चला रही है, मैंने बताया IIT दिल्ली आपके सिलिकॉन इंडस्ट्री के लिए कोर्स चला रही है, आपके फोटोनिक्स के लिए कोर्स चला रही है, तो अभी आप IIT गुवाहाटी में चले जाए, IIT गुवाहाटी दो स्पेशल कोर्सेज चला रही हैं, वो माइनिंग का एक कोर्स चला रहे हैं आपके धनबाद में, ये वो कोर्सेज है जिनके लिए आपको IIT पास करने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं आप उनका शनिवार रविवार में कोर्सेज पढ़िए, हाँ वीकेंड प्रोग्राम में उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप, क्योंकि ये मानते हैं कि आप मार्केट में जा रहे हैं। आप देखेंगे MBA करते हैं लोग, एक एग्जीक्यूटिव MBA होता है, वो लोग जो नौकरी कर रहे होते हैं और अपने आप को स्किल्ड होना चाहते हैं, वो इसी तरह का ये मेथड है। आप जैसे अब देखिए प्रोडक्ट डिज़ाइन, अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मुझे मार्केट में बेचना, मार्केट हमारा इतना बड़ा हो गया कैसे हम बेचेंगे, उसकी एक डिज़ाइनिंग, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। हम सभी लोग 2014 के चुनाव के बाद से ही प्रशांत किशोर का नाम सुन रहे हैं, देखिए उन्होंने एक नया मार्केट खड़ा कर दिया है। अब कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव को व्यवस्था को संभालने के लिए चुनाव एजेंसी आ जाती है, ये इसमें भी लोग होने चाहिए जिनके पास नॉलेज हो, जिनको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, जिनको डेटा की अंडरस्टैंडिंग हो। तो देखिए इसमें आपको डेटा भी आना चाहिए, डेटा को आप कैसे एनालाइज करेंगे, और आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दो चीज़ें मिक्स करके आपका हो गया कोर्स। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आजकल बढ़ रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है भाई, आपको स्पोर्ट्स की भी मालूम है और आपको ये भी पता है कि उसका जो प्रॉब्लम होता है, इंजरी होती है, उसको कैसे सही है, तो आपके अंदर वो मेडिकल नॉलेज भी होना चाहिए।
1: अपने जो है अलग अलग स्किल पे बात की, इसमें मैं एक चीज़ और आपसे लेना चाहूँगा कि जो ज़्यादातर युवा हैं या जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि ये जो करियर है बहुत टिकाऊ नहीं है, ऐसा जो है उनको मिथ है कि ये करियर बहुत टिकाऊ नहीं है, अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट डिजाइनिंग में जाएगा तो शायद उतने स्थायित्व उसके करियर को नहीं मिलेगा, ये वो ग्रोथ नहीं मिलेगा जो IIT और नीट से करने के बाद बच्चों को मिल रहा है, तो इस धारणा को छात्रों में और पेरेंट्स में कैसे बदला जा सकता
0: है? देखिए जब हम IIT और नीट कर रहे हैं तो हम टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं, वो नो डाउट वहाँ पर ग्रोथ भी है और वहाँ स्थायित्व भी है, लेकिन अगर आपका बच्चा इन जगहों पे नहीं जा पा रहा तो उसको कहीं किसी जगह से इंजीनियरिंग मत कराइए, किसी जगह से मेडिकल मत कराइए। आप जो कह रहे थे ग्रोथ है स्थायित्व, ग्रोथ तो बहुत है, आप अपने आसपास देखिए जो बच्चे इन कोर्सेज को कर रहे हैं ग्रोथ बहुत है, स्थायित्व के बाद भी कंपेरिजनली करते हैं, हम क्यों कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर उन नौकरियों सरकारी नौकरियों से करते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत स्थायित्व है। कितनी सरकारी नौकरियाँ हैं आप देखिए कि कितना लोगों को दे सकती, वही एक मुझे लगता है कि एक तरह का हॉलो क्रिएट कर रहा है, हर कोई उधर आ रहा है अपना प्राइम टाइम वहाँ खर्च कर रहा है और फिर उसके पास ज़्यादा समय बचता नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो इन्वेस्ट करें। आप साउथ में चले जाइए, साउथ में लोगों के नौकरियों के प्रति बहुत क्रेज नहीं है, वो स्किल्ड बेस्ड नौकरियाँ ज़्यादा करते हैं।
1: मेरा आपने साउथ को जब आपने नाम लिया तो ऐसा क्यों है कि उत्तर भारत में जो ज़्यादातर छात्र या पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर पारंपरिक पढ़ाई या पारंपरिक शिक्षा की तरफ ज़्यादा जाते हैं और साउथ इंडियन दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर स्किल पे जोर देते हैं, ये जो है डिवाइड जो है क्लियर देखने को मिलता है।
0: उनके
1: आपने भी साउथ में समय बिताया है तो आप अपने अनुभव से बताएं कि क्यों उस तरह के लोग वहाँ की मानसिकता ऐसी क्यों है और उत्तर भारतीयों में ऐसी मानसिकता।
0: मुझे लगता है कि उनके यहाँ इंडस्ट्री आ गई थोड़ा, उनके यहाँ जो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ और जो प्रोफेशनलिज्म उनके यहाँ बेहतर आ गया, हमारे यहाँ वो चूंकि इंडस्ट्री है नहीं तो हमारे जीविकोपार्जन का एक ही ऑप्शन दिखता है कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें, इस कारण से ही ऐसा है और हम इसी में रच बस गए हैं और ये बहुत गलत ट्रेंड है, इसको सुधारने की ज़रूरत है।
1: हम आखिरी में जाते जाते जो है आपसे वो जानना चाहेंगे कि जो भी छात्र या पेरेंट्स सुन रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनका बच्चा नीट इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है तो वो किस दिशा में और किस तरह अपने छात्रों को समझाएं और स्वयं को भी समझाएं कि नीट और IIT के अलावा भी कैरियर है जो बच्चे को

0: जीवन में स्थायित्व प्रदान करेंगे, एक अच्छा ग्रोथ प्रदान करेंगे।
1: मुझे लगता है कि उन्हें इस समय बहुत जरूरत है कि काउंसलर से मिले, बहुत सारे न्यूमरस कोर्सेज इस समय हैं,
0: जी
1: और आप ये मत समझिए कि उससे, मैंने कहा कि ग्रोथ नहीं, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में को जो पैसा दिलाएगा वो पैसा मिलेगा,
0: जी
1: आपकी इन नौकरियों से बहुत ज़्यादा पैसा, सरकारी नौकरियों से बहुत ज़्यादा पैसा है। स्थायित्व की जो आप बात करते हैं, वो भी जब आपके पास अर्निंग आती है, मेहनत, आज का जो युवा पीढ़ी वो केवल मेहनत करना जानता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब फ्री टाइम की ज़रूरत है नहीं, वो मेहनत करता है और फिर अपना काम करता है, इंजॉय करता है, तो लाइफ धीरे धीरे उसी तरफ से जा रही है। तो मुझे लगता है कि बच्चे पर छोड़ दीजिए, उसका क्या इंटरेस्ट है, और उसके अलावा ज़रूरी है कि उसको आप नए कोर्सेज के बारे में आप काउंसलर से आइडिया लीजिए और उसको उतरने दीजिए, ज़बरदस्ती उसको किसी कोर्स से मत भेजिए। जीवन 5 या 10 साल का नहीं है, बहुत लंबा जीवन होता है, उस जीवन उसी के साथ उसको जीना है, इस बात का विशेष ध्यान, अपनी इच्छाएं मत थोपिए।
0: आपने जो है वार्ता में आपने सारी बातों को शामिल किया, और आपने जो बात कही कि अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पे ना थोपे, जो भी कोर्स उपलब्ध हैं, जो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, दुनिया बदल रही है, तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग है, अलग अलग कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमें स्किल युवा चाहिए, तो हम स्किल के कोर्सेज भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने लॉन्च किए हैं, तो उनसे भी जुड़ के हम
1: अभी
0: अपना
1: इंटरनेशनल रिलेशन का एक कोर्स डिजाइन लॉन्च
0: जी
1: किया है जेएनयू ने
0: जी
1: आईआईटी
0: इंटरनेशनल
1: दिल्ली के साथ।
0: IIT दिल्ली के साथ। तो अब लगातार हम यही क्या बताना चाह रहे हैं अपने छात्रों को कि जो भी नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से, वहाँ पे छात्र जाकर एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं, वहाँ भी एक अच्छा ग्रोथ और एक अच्छा ग्राफ उनके जीवन में दिख सकता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: 12वीं के बाद मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के अलावा करियर संभावनाएं, आपने सुनी इस विषय पर डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह से दीपक राय की बातचीत। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
2: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
1: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
0: पहली बार हुआ।
2: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: ब्रेकिंग न्यूज, आज के सफर पर पापा हैं ड्राइवर और मैं उनकी नेविगेटर, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सीट बेल्ट ऑन। गाड़ियों का शोर एक दूसरे से आगे निकलने की हो, अभी अभी हमको गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए गुजरी है एक मोटरसाइकिल, 3 पैसेंजर और वो भी बिना हेलमेट। हम चल रहे हैं सीधे आगे क्रॉसिंग पर, हम लेंगे राइट टर्न, स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अरे हमारे सामने से हमारी लेन में क्यों आ रही है ये स्कूल वैन जिसमें है बच्चे जरूरत से ज्यादा, और ड्राइवर का ध्यान है विंडस्क्रीन पर नहीं मोबाइल स्क्रीन पर। अब सामने नजर आ रही है क्रॉसिंग और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है ग्रीन, पर समय है कम तो हमें बढ़ानी होगी अपनी रफ्तार इससे पहले कि सिग्नल हो रेड, पर ये होगा खतरनाक इसलिए हम चलेंगे नॉर्मल स्पीड। लीजिए आ गई क्रॉसिंग और अब सिग्नल भी हो गया है रेड, तो अब वक्त है रुकने का, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो अब हम लेते हैं ब्रेक।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों

0: को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
1: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी भविष्य में न घटे इसके कड़ी कार्रवाई करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सके।
0: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर

0: नियुक्ति की घोषणा की गई है।
1: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बच्चन मुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी

0: ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ended nearly 0.4% up today, buoyed by growing optimism over progress in US-Iran talks in Switzerland aimed at ending the months-long conflict in West Asia. We have a report.
1: The Sensex rose to 91 points to close at 77,094, while Nifty jumped 90 points to settle at 24,103. In the forex market today, the rupee depreciated by 35 paise to close at 94 rupees 68 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.2% up at 1,49,360 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% higher at 2,39,260 rupees per kilogram a short while ago. With Intakhab's report, Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
0: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Center in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निज़ाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टामर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज से पहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाक़े एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC लखनऊ में दाखिल कराया गया है। ज़्यादातर अमवात घुटन के सबब हुई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: बताया जा रहा है कि ये आग इंस्टीट्यूट की इमारत के अंदर लगी और तेजी के साथ फैल गई और लोग अंदर फंसे रह गए। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। आग बुझाने वाले अमले की टीमें, पुलिस अहलकार और जिला इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग बुझाने वाले अमले के अफराद ने दीवार को तोड़ कर और इमारत में दाखिल होकर लोगों को बचाया। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने कहा

0: के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर मुश्तमिल आला सतह की एक टीम इस मामले की तहकीकात करेगी और आग लगने की वजह का तयन करेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसे न हों।
1: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों के अपने दौरों को बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। उन्होंने जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में वफात पाने वाले अफराद के तई अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने महलुकीन के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और ये एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गईं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरान पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबरान पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबरान असेंबली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नज़रियात को महफूज रखना और पार्टी के हिंदुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबैन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमूई दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अज़्म से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के

अपने हम मनसब बदशिक्षक बदमुख से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादले ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी, कुव्वत और मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाहियत साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान तरफैन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और ज़रई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौकों के बारे में भी बातचीत की। बीजेपी की क्यादत वाली मगरबी बंगाल सरकार ने आज 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में समाजी फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोजगार पैदा करने पर खास जोर दिया गया है। बजट में ख्वातीन पर मरकूज कई इकदामात का ऐलान भी किया गया। 6,070 करोड़ रुपए के खसारे वाला बजट पेश करते हुए वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने इसे एक तरक्की याफ्ता बंगाल बनाने के लिए एक रोड मैप करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत का बकाया कर्ज 8,00,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। इसमें माली नज्म व जब्त को अव्वलीन तरजीह दी गई है। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की हिफाजत और रेलवे के कामकाज की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की खातिर मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर रूट पर ट्रेन की हिफाजत के खुदकार निज़ाम कवच को नस्ब करने की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मशरकी साहिली रेलवे के 6 अहम रेलवे सेक्शन पर मुश्तमिल है, जिनमें बघवापाल बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बालनगीर, गुन्नूपुर नौपाड़ा, लांजीगढ़ जूनागढ़ और बबीली सलूर शामिल हैं। इन रास्तों पर कवच निज़ाम की तंसीब से रेलवे के कामकाज के हिफाजती मेयार में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि ये खुदकार निज़ाम ट्रेन की हिफाजत और ट्रेनों की टक्कर से बचाव के लिए जदीद सलाहियतें फराहम करता है। वजारत ने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट से उड़ीसा और मशरकी साहिली रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों दोनों किस्म की ट्रेन खिदमात को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के उस जारी मिशन को भी तकवीत देगा, जिसका मकसद ज़्यादा मसरूफ़ और कलीदी अहमियत के हामिल रेलवे रास्ते पर कवच निज़ाम की कवरेज की तौसी करना है। ये आकाशवाणी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टेमर ने अपने ओहदे से और लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह खुद अपनी ही पार्टी के बढ़ते हुए दबाव के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर उनकी मुद्दतकार का इख्तिताम हो गया। अपने इस्तीफे के मुतालिक बयान देते हुए जनाब स्टैमर ने 2 साल कबल डाउनिंग स्ट्रीट पर अपनी आमद को अपनी जिंदगी का फख्र से भरपूर एक लम्हा करार दिया और कहा कि उन्होंने सियासत में लाखों अफराद की जिंदगी को तब्दील करने के मकसद से कदम रखा था। इधर सीनियर सियासतदान एंडी बर्नहम ने केयर स्टार्मर की जगह लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने की अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के अगले अहदेदार के तायुन के लिए दौड़ अगले माह शुरू होगी। लेबर पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 9 जुलाई से नामजदगियां कबूल करना शुरू करने का ऐलान किया है। दोहा में भारतीय सफारतखाने ने कल रैस लेफन सनती शहर में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में कई लोग जख्मी हो गए और कुछ अफराद लापता हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सफारतखाने ने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में कतर की हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। किसी भी तरह की मदद और पूछताछ के लिए सफारतखाने से हेल्पलाइन नंबर +97455564752 या +97455384683 और ईमेल cons.doha@mea.gov.in पर रابطہ किया जा सकता है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोज़ा मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स के 11 मेंबर मुल्कों के सिक्योरिटी सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। इनमें भारत, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। मीटिंग के दौरान होने वाली बातचीत में कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेज़ी के साथ बदलती हुई नौइयत के अलावा उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल पर भी गौर खौस किया जा रहा है। इस मीटिंग के मौके पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी गदीर निज़ामीपुर से मुलाकात की। तरफैन ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के तहत तआवुन और भारत ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया।
نشانے بازی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی

0: चैंपियनशिप में भारत ने मजीद 4 तमगे जीतकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और वो तमगे के लिहाज से सरे फहरिस्त है। 9 उम्र निशानेबाज प्रीतम केंद्रे ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल जूनियर मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया। इस तरह उन्होंने चैंपियनशिप में भारत के लिए 5वां सोने का तमगा जीता। ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल टीम मुकाबले में अंजलि महेंद्र भागवत, परीक्षा गुप्ता और निथिला आईवी डार्लिंग प्रवीण क्रिस्टोफर पर मुश्तमिल टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। भारत ने मर्दों के 25 मीटर पिस्टल जूनियर टीम मुकाबले में भी कांस्य का तमगा हासिल किया। अभिनव चौधरी, राजचंद्र और जतिन पर मुश्तमिल टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांस्य का तमगा जीता। इससे पहले अनवी राठौर ने ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता। इस तरह भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 12 हो गई है। इसमें सोने के 5, चांदी का 1 और कांस्य के 6 तमगे शामिल हैं। फीफा आलमी कप 2026 में आज रात ग्रुप जे के एक मैच में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय मेयारी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। मैच अमेरिका के अर्लिंगटन में होगा। रात देर गए 2:30 बजे फिलाडेल्फिया में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा। इससे कबल आज सुबह मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 गोल से हराकर पहली मरतबा आलमी कप का कोई मैच जीता और इस तरह उसे ग्रुप जी में पहला मकाम हासिल हो गया। आखिर में बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना UBT के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निज़ाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टेमर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हरिहरन की गाई उस गजल से जो बीते हुए लम्हों की खुशबू और बिछड़ने की टीस को अपने अल्फाज में समेटे हुए है। कभी कभी जिंदगी की राहों पर कुछ निशान ऐसे बन जाते हैं जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाता। कुछ गलियां, कुछ मोड़ और कुछ यादें हमारे साथ उम्र भर चलती रहती हैं। मोहब्बत की दास्तान भले ही अधूरी रह जाए लेकिन उसकी गूंज दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। इन्हीं एहसासों को बयां करती हुई इस गज़ल को सुनते हैं जिसे गाया है हरिहरन ने।

कभी कभी मोहब्बत सिर्फ हंसी ही नहीं देती, वो चुपचाप कुछ आंसू भी दे जाती है, और वही आंसू दिल के सबसे सच्चे गवाह बन जाते हैं। फूलों पर ओस की बूंद हो या किसी दिल का भीग जाना, हर नज़ारा एक कहानी कहता है, और जब जुदाई का मौसम आता है तो हर चेहरा अपने भीतर छुपी उदासी को छिपा नहीं पाता। इन्हीं भावनाओं को समेटे हुए इस गज़ल को आपको सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है तलत अजीज़ ने।

और अब पेश नज़र है सुरों और एहसासों से सजी एक बेहद खूबसूरत गज़ल, जिसे अपनी जादुई आवाज़ से अमर बना दिया महान गज़ल गायक गुलाम अली साहब ने। गज़ल की दुनिया में श्रोताओं, कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। गुलाम अली साहब की गायकी भी ऐसी ही है, जहां हर सुर दिल के अंदर उतर जाता है और लफ्ज़ किसी पुरानी याद को जगा देता है। मोहब्बत, तन्हाई और मदहोशी के बीच झूलती ये गज़ल दिल को एक अजीब सी खुमारी में ले जाती है। आइए सुनते हैं और महसूस करते हैं उस खुमारी को।

जाते हैं और जब दिल टूटकर भी मुस्कराने की कोशिश करता है तब उसके भीतर एक अजीब सी तन्हाई बस जाती है। मोहब्बत जब अधूरी रह जाए तो शिकायतें भी धीरे धीरे खामोशी में बदल जाती हैं और इंसान बस इतना ही चाहता है कि उसकी तकलीफ को कोई और छूकर गहरा न कर दे। इन्हीं भावनाओं को बहुत सादगी और गहराई से बयान करती हुई गज़ल आपको सुनवा रहे हैं, जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है चित्रा सिंह ने।

चित्रा सिंह की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है चित्र फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवा रहे हैं जूली फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की गीत रचना। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और फिल्म का नाम है सागर।

कभी कभी, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की, गीत साहिर का है और संगीत है खयाम का।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना अभिमान फिल्म में। गीत रचना मजरू की थी और इसकी धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उमराव जान फिल्म का गाना, जिसे गाया है आयशा भोसले ने। रचना है शहरयार की और संगीत है खयाम का।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और इसकी धुन बनाई है आर डी परमन ने।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म अनामिका के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित उमा शंकर मिश्र का सितार पर बजाया राग हेम बिहाग। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं श्री लतीफ़ अहमद खान।

अभी आपने सुना पंडित उमाशंकर मिश्र का सितार पर बजाया राग हेम बिहाग। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे श्री लतीफ अहमद खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।